आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। हर अच्छी चीज को समय लगता है। अगर आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिला है तो निराश मत होइए, शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। धैर्य वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है।

सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। जीवन में कई बार हम परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी परेशानी या मौसम हमेशा साथ नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। उम्मीद वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है।

दोस्तों, धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर उठ रहा है। पंछियों की चहचहाहट अब और मधुर लग रही है। प्रकृति पूरे सौंदर्य के साथ अब नए दिन का स्वागत कर रही है। हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद, नया विश्वास और नई संभावनाएं लेकर आती है। इसी सुविचार के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आपसे कुछ

देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, प्रस्तुत करेंगी पूजा कपूर। 6:45 पर कार्यक्रम होगा श्री रामचरितमानस का।

सुबह 10:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रेखा रानी। तस्वीर, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 11:10 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फूलों की घाटी उत्तराखंड पर जानकारी, और कार्यक्रम पेश करेंगी रेखा रानी। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सीनियर सिटीजन्स पर एक स्पेशल कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता राम प्रकाश वर्मा। दिन में 1:10 पर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आप सुनेंगे निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी पर कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे राम प्रकाश वर्मा। दिन में 2:30 कार्यक्रम उन्नत किसान, प्रस्तुत करेंगी सीता, सीमा, सती और विनोद कुमार। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution grids, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthy lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
3: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों से ज्यादा हृदय से होनी चाहिए, और हृदय से जब हम ईश्वर और परम शक्ति को याद करते हैं तो हमारी आवाज उस तक जरूर पहुंचती है। भगवान कृष्ण के योगी रूप की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन और भजन करते हैं, मैं उनके योग अर्थात जो चीज उनके पास नहीं है उसे प्रदान करना, और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना, इनका दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। और वही कान्हा जब मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। कहते हैं कि जब वृंदावन में कान्हा की मुरली बजती थी तो केवल गोपियाँ ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यमुना की लहरें भी मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। मन मंदिर में बस जाएं श्याम, मन मंदिर में बस जाएं श्याम, हर सांस में गूंजे उनका नाम। ऐसे ही कुछ भाव हर दिल में, हर हृदय में रहते हैं हमेशा जब कान्हा और उनकी मुरली आसपास होते हैं। आइए कुछ पल संसार की भागदौड़ से दूर होकर हम भी श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित करें।

पूरी द्वारिका मथुरा देखी, देखा तीर्थ काशी। द्वारिका मथुरा का जिक्र आते ही जिक्र होता है श्री कृष्ण की लीलाओं का, क्योंकि उनकी लीलाएं बड़ी न्यारी हैं। उनका योगेश्वर रूप हमें एक तरफ जीवन में कर्म का महत्व बताता है, तो वहीं उनका नटखट बाल रूप सबके मन को भाता है। माखन चुराकर उनका ये कहना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन का आयो, ये अपने आप सबका दिल चुरा लेता है। मटकी फोड़े माखन खाए, गोकुल में धूम मचाए। मटकी फोड़े माखन खाए, गोकुल में धूम मचाए। नंद के घर का वह लाला सबके मन को खूब भाए।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

साथियों कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा दीपक है जो सारे अंधकार को मिटा देता है, और ईश्वर तक यदि पहुंचने की आकांक्षा है तो फिर उसका रास्ता आस्था और भक्ति के जरिए ही जाता है। 6:33 और 22 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूं मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

कहते हैं कि मोतियों की आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है कि सबको पिरोए रखना है। लेकिन गालिब ने ये कहकर तोड़ दी वो माला कि गिन कर क्यों नाम लूं उसका जो बिना गिने मुझे बेहिसाब देता है। 6:38 और 50 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर साथियों, अब वक्त हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय गान का। आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ का।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

साथियों, कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, इसी राम नाम का अमृत श्रवण हमने किया अभी रामचरितमानस के इस सुंदर संगीतमय पाठ में गान के जरिए। आज जो प्रसंग आपने सुना इसे बालकांड से लिया गया था और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चला है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब समय हो रहा है देश और दुनिया का हाल लेने का समाचारों के जरिए। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर अब आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन, और उसके बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल

सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनाब कहते हैं कि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का रंग तय करता है, इसलिए आज अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट जगाइए, किसी का धन्यवाद कीजिए, किसी को मुस्कान दीजिए और अपने आप से ये वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो, जो भी हो, आज का दिन खुशियों के नाम रहेगा, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन तय किया जाने वाला एक रास्ता है। 7:11 और 33 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब, दिल हथेली पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन जान हथेली पर लेकर चलते हैं जो लोग बिना हेलमेट के अपने टू व्हीलर्स को ड्राइव करते हैं। वैसे ये गाना 1959 में आई फिल्म चाचा जिंदाबाद से था। आवाज किशोर दा की थी, स्क्रीन पर भी वही थे, म्यूजिक दिया था मदन मोहन ने और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। और जहां तक बात है बिना हेलमेट टू व्हीलर ड्राइविंग की, तो फिर सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन है, जिसके लिए चालान भी हो सकता है, होता भी है। लेकिन इन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट और चिंताजनक बात क्या है? वो बात ये है कि इससे जान को खतरा रहता है। और बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में हम देखते हैं कि कैजुअलिटी की एक बड़ी वजह भी यही होती है कि ना तो टू व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति ने हेलमेट पहना होता है और ना ही उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने। अब सॉल्यूशन तो यही है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हेलमेट पहनकर ही ड्राइव करें, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा डिफॉल्टर्स को, जो ईश्वर न करे कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम तो यही चाहते हैं कि आज की जो हमारी ये बातचीत आपसे हो रही है, कम से कम इसको ध्यान में रखते हुए इसका असर अपने ऊपर अगर हम अप्लाई करना चाहें तो आज से ही ये वादा कर लें कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर टू व्हीलर ड्राइव करेंगे या फिर पिलियन राइडिंग करेंगे तो ज़रूर हेलमेट पहन कर रहेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। और फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं गोल्डन म्यूज़िक को, और अभी फोकस करते हैं उसी पर, यानी गोल्डन म्यूजिक पर। और आपको सुनवाती हूँ 1957 में आई फिल्म रानी रूपमती से लता जी और रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ों में ये क्लासिक सॉन्ग।

7:24:21 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर यह है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बातों के बारे में लेकिन अब हम चूंकि वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आज दिन भर में आप 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर क्या क्या सुन पाएंगे लेकिन उससे पहले ये जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि मौसम बड़ा सुहावना दिखाई दे रहा है यहाँ गोल्ड स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखने पर बादल छाए हुए हैं कभी कभी बीच में धूप की किरणें आती हैं थोड़ी सी अटखेलियां करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं और ऐसा ही रहेगा आज का मौसम। मौसम विभाग कुछ इस तरह की भविष्यवाणी कर रहा है कि धूप छाव का ये खेल चलता रहेगा। हालांकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और हवा की गति रहेगी करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कहीं अगर मौसम थोड़ा आप पर मेहरबान हो जाए तो दिल्ली के जिस इलाके में आप हैं हो सकता है कि वहाँ थोड़ी बहुत आंधी या तेज़ हवा या फिर कहीं दो चार बूंदें आप पर मेहरबान होकर गिर भी सकती हैं लेकिन ओवरऑल ये जो मौसम है ये धूप छाँव का रहेगा ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। और बात अब हम करते हैं आज के हमारे कार्यक्रमों के बारे में तो फिर आपके साथ रहूंगी मैं 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में जिसमें हम आज बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में और म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट आपके साथ रहेगा 9:10 पर जिसमें आपके साथ होंगी रेखा और वो बात करेंगी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और भी बहुत सारी बातें और खूब सारे गाने आपके साथ रहेंगे इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। 10:30 का समय रहेगा दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे तस्वीर जिसमें आज आपको उत्तराखंड में फूलों की घाटी की सैर पर लेकर चलेंगे। 12:10 पर एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 पर कलाकार बेमिसाल जिसमें आज हम निर्देशक और पटकथा लेखक वासु चैटर्जी के बारे में बात करेंगे और 2:30 to 3 तक का समय रहता है प्रोग्राम उन्नत किसान का जिसमें आज का विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और इसमें शामिल होंगे स्टूडियो से हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर शिव प्रसाद जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान नई दिल्ली में और 3:30 दिन में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रंग यादों के संग जिसमें आज हमारी गेस्ट होंगी श्रीमती उषा भसीन जो पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन हैं। 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का। 10:30 आप सुनेंगे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां का भाग 4 और 11:10 पर आप सुनेंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज के अंतर्गत 12 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट और 11:45 का समय रहेगा गीत मेरे मन मीत का और ये बहुत कुछ जो जानकारियों से भरा इन कार्यक्रमों के जरिए आप तक पहुंचेगा उसके साथ रहेगा बेहतरीन गोल्डन म्यूजिक ऐसा ही एक गाना गीता दत्त की आवाज में आपको यहाँ भेंट करते हुए फिलहाल आपसे लेती हूँ मैं विदा क्योंकि कार्यक्रम का समय अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह जुड़े रहिए 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ और इसके बाद आप सुनेंगे न्यूज सर्विसेज डिवीजन की प्रस्तुति प्रोग्राम आज सवेरे 8:45 पर आपसे फिर मिलती हूँ एक बार दोबारा गोल्ड स्टूडियो के जरिए प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली में। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय टेक केयर।

0: अजीब दास्तां है ये, अपने पेड़ पौधे फूल पत्तियों को काट कर छांट कर नोच कर फेंक कर बड़ी बड़ी इमारतों से प्रकृति को दरकिनार कर विकास की सीढ़ियों पर जोरों शोरों से आगे बढ़कर तुम दूर देश दूर दराज पहाड़ों पर जाते हो सिर्फ एक पेड़ एक नदी एक फूल को निहारने इस प्रकृति में बिखरी असीम शांति को पाने। क्या अजीब दास्तां है जब तुम ही नदियों को नाला बनाकर कारखानों के कचरों से उनकी शुद्धता छीनकर उनका कल कल बहता हुआ पानी रोककर उनकी वास्तविक आकार से उन्हें संकरी बनाकर काशी की वरुणा प्रयाग की गंगा को मैला कर कोशी की शुद्धता को ढूंढते हो उत्तराखंड में। अजीब दास्तां है ये। जी हाँ, अक्सर छुट्टियों में हम दूर दराज पहाड़ों पर जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं रोजमर्रा के तौर पर जहाँ हम सांस लेते हैं, क्या हम आज उस वातावरण को सुरक्षित रख पाए हैं? तो आज इस सुबह एक निर्णय लें कि आप अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे, और सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की जगहों को अपने आसपास के वातावरण में भी हरियाली लाएंगे। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest national and international news, metro city updates,

0: 70 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: That's right. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
2: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: The appeal came as Ahmedabad hosted the first World Yogasana Championship, which has attracted more than 400 competitors from over 60 countries. The event is being held from the 4th of June to the 8th of June and is regarded as a landmark effort to develop yogasana as a structured international sport. Akarshita, aap bhi yoga karte hain?
0: जी मैं करती हूँ और अभी छोड़ दिया है, पर पहले ज्यादा करती थी।
1: जी मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे को कुछ एक दो साल पहले कुछ आंखों की प्रॉब्लम हो गई थी
0: जी।
1: ऑब्वियसली विद एडवांसिंग एज
0: विद टाइम,
1: तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, मैं वापस घर आया तो मुझे फिर मेरे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग योगा। फिर मैंने योगा करना शुरू किया एंड शीर्षासन से मेरा जो आई पावर है वापस सही हो गया और अब मुझे स्पेक्स की जरूरत नहीं है।
0: वाओ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगा कि आपको एक तरीके से मेंटली भी वो बहुत ज्यादा जो आप प्रेशर फील करते हैं आजकल के टाइम में भागा दौड़ में, वो उससे भी एक निजात पाते हैं आप और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी बहुत बेनिफिट करता है।
1: तो आई थिंक योगासना जो इंडिया की देन है, आई थिंक द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड इट,
0: योग गुरु
1: ऑल ओवर द कंट्री, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं सिंगापुर गया था, वहां पे भी लोग काफी योगा करते हैं। But the thing is that Indians, I think, कम करते हैं, बाहर के लोग ज्यादा करते हैं।
0: They do not know the importance, पर right now मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसको काफी प्रमोट कर रहे हैं और अब लोग भी इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं।
1: Exactly.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है।
1: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. He was 97. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan has expressed grief at the passing away of Dr. Kashyap. In a social media post, Ms. Radhakrishnan said that Dr. Kashyap made invaluable contributions to the understanding of India's constitution and parliamentary democracy through his scholarship, writings and public service. In his condolence message, Prime Minister Modi said that Dr. Kashyap was one of India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society.
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। और प्रमोद, जैसा कि हमने शुरुआत ही की पर्यावरण पे, किस तरीके से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि हमने बात की कि हम जो है अक्सर छुट्टियों में घूमने निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि पहाड़ों पर जो है अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम रहते हैं 90% ऑफ द टाइम, जहां पे हम, मान लीजिए मैं दिल्ली की हूं और मैं उत्तराखंड घूमने जा रही हूं, तो हम अपने वातावरण को सुरक्षित नहीं रख पाते, हम वहां पे हरियाली जो है नहीं मेंटेन कर पाते और अपने आसपास के जो चारों तरफ जो है हमारे जो पेड़ पौधे हैं

0: उनको नहीं संरक्षित कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने को छोड़ करके किसी दूसरी चीज को पकड़ रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, बल्कि हमारे आसपास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं। हमारे आसपास भी दिल्ली में ही आप देखिए संजय वन है और बहुत ढेर सारे ऐसे इन्वायरमेंटल आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास भी हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैंने ये शुरू किया है मेरे ही कॉलोनी में, वेयर आई स्टे इन गुड़गांव। मेरे बच्चे और उनके फ्रेंड्स, वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम एवरी वीक एक हम पौधा
0: लगाएंगे,
1: पेड़ प्लांट करेंगे, विच इज वेरी गुड।
0: और एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री का अभियान जो रहा वो जी, भी जी, काफी सराहनीय रहा और लोगों ने जो है लगाया। और हमने कई बार सुना कि कई गांव में जब बच्चियां होती थी तो वो पेड़ लगाते थे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने जन्मदिन पर या किसी और को तोहफे में आप जो है एक पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। वेरी
1: स्मॉल इनिशिएटिव्स, लाइक व्हेन आई गो, आई एम फ्रॉम केरला, तो जब मैं जाता था केरला इन गर्मी की छुट्टियों में, तो माय नानी यूज्ड टू ऑलवेज टेल ऑल द ग्रैंडचिल्ड्रन कि यू हैव टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री। तो हम जाते थे यू नो गर्मियों की छुट्टियों में, एंड वी यूज्ड टू प्लांट वन मैंगो ट्री और वन जैकफ्रूट ट्री, कटहल जिसे बोलते हैं आप, एंड नेक्स्ट डे वी वुड गो एंड सी, अरे वो पेड़ इतना लंबा हो गया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू सी दैट यू नो ट्री ग्रोइंग ऑल्सो, प्लस इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट।
0: पेशेंस ऑल्सो, जब हम उसको देखते हैं तो एक तरीके से पेशेंस भी आता है, धैर्य आता है हमारे अंदर। आजकल लोग शिकायत करते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे तो इतनी स्पेस नहीं है, हम कहाँ पे प्लांट्स लगाएं। तो जैसा कि आपने बात किया कि आप गांव गए, अपनी नानी के यहाँ गए, फिर आपने वहां पे एक प्लांटिंग की, तो जरूरी नहीं कि हमें कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि अरे ये है नहीं तो हम कैसे लगाएं। आप अगर देखें तो आप एक छोटे से जो है बॉटल में भी, जो एक प्लास्टिक का बॉटल है, छोटा सा पौधा लगा सकते हैं।
1: इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिमल दाम बुलाता मैं उनको, बिमल मोहपात्रा हमारे एडिटर भी हैं यहाँ पे, उनका किचन गार्डन है, उनका टेरेस गार्डन है बहुत ही बढ़िया सा
0: जी,
1: एंड आई एम रियली अमेज्ड जो वो क्या क्या उसमें उगाते हैं।
0: तो वही हम देख सकते हैं कि अगर
1: तो जहाँ पे चाह है
0: वहाँ राह है,
1: बस दैट्स इट। इसी बात पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द सिटीजंस ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट डॉक्टर जयशंकर सेड दैट इंडिया रिमेन स्टेडफास्ट इन एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन एंड एनकरेजिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल्स थ्रू इनिशिएटिव्स सच एज मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एंड कोवलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ही एनकरेज्ड एवरीवन टू वर्क टुवर्ड्स अ ग्रीनर, cleaner and more sustainable future।
0: नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
1: Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. He said that India's economic growth is the result of the hard work that the government of India has been doing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the United States does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. He said that India is a great nation and democracy and Russia will continue to expand its relations with it. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to the Prime Minister. The Department of Personnel and Training informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year.
0: आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं प्रमोद।
1: That's right, Akarshita. A long-time important member of the India bloc has announced that it will no longer be a part of it. The DMK party spokesman T.K.S. Elangovan has said that the party would not be attending the alliance

0: meeting to be held in Delhi on the 8th of June. The state sports minister, Adav Arjun, has appealed to the union government to permit Tamil Nadu to host the 2029 National Games. He met the union minister for youth affairs and sports, Dr. Mansukh Mandavia, in Delhi and submitted a memorandum highlighting the state's track record of hosting major national and international events. He said that the state has 1,076-kilometer-long coastline, making it suitable for setting up a national center for excellence for beach sports in Nagapattinam district, which is known for its unique coastal landscape and availability of local talent. He also requested for setting up of an international standard indoor cycling velodrome and a national cycling high performance center in Coimbatore, and urged center to expand the Khelo India ecosystem by setting up centers across the state such that at least two priority sports disciplines are covered in every single district.
1: Aur aaiye ab jante hain Delhi ki khabrein. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। साथ ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर बल देने और बैंक खातों में ट्रांसफर करने तथा सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल साकेत की मैक्स हॉस्पिटल का दौरा किया और मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में कल घायल हुए लोगों से भेंट की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और इलाज कर रहे डॉक्टरों से इलाज की समीक्षा भी ली। साथ ही अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने का निर्देश भी दिया। वहीं आईआईटी दिल्ली जेईई एडवांस्ड 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए आज से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। इस 3 दिन सत्र का आयोजन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में किया जाएगा। इस ओपन हाउस में छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों से बातचीत करने का मौका मिलेगा।
0: Moving on to Bangalore, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board is working on making Bengaluru City a globally recognized hub for water innovation, urban water security and sustainable infrastructure development. It wants to establish Bengaluru Global Water Innovation Network, a global collaboration platform to bring together leading water utilities, government agencies, universities, research institutions, industry leaders, startups, incubators, investors and civil society organizations to collectively address emerging challenges in the water and wastewater sector. Bengaluru Global Water Innovation Network wants to foster innovation, accelerate technology adoption, promote international collaboration and build a future-ready ecosystem capable of addressing the growing challenges posed by rapid urbanization, climate change and resource scarcity.
1: और अब जानते हैं मुंबई से खबरें। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा फिर से सुन लें। महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों के नाम कल वापस लेने के बाद भाजपा की एक और एनसीपी और शिवसेना के 2-2 सहित 5 महायुति गठबंधन उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो गया है। शेष 12 सीटों पर चुनाव 18 जून को होंगे और मतगणना 22 जून को होगी। वहीं इतिहास में सबसे अधिक मासिक आगंतुकों की संख्या दर्ज करते हुए राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय ने मई 2026 में 17,000 से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये उपलब्धि संग्रहालय द्वारा सभी आयु वर्ग के दर्शकों को जोड़ने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
0: Moving on to Hyderabad, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla called upon central and state public sector undertakings to support the modernization and expansion of Salar Jung Museum. The governor, who is chairman of the museum, chaired a meeting with PSU representatives at Lok Bhavan on Thursday. The museum will celebrate its platinum jubilee from this year, from June 14 to June 21st. The governor said the celebrations will feature special exhibitions, cultural programs, educational initiatives, publications,

0: and public engagement events. He emphasized the need to develop the museum into a modern institution of international standards over the next 5 years. The governor appealed to PSUs to contribute through their corporate social responsibility programs towards the museum's development.
1: और आइए अब जानते हैं कोलकाता से खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना को आधिकारिक तौर पर अपना लिया है, जिससे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली देश की 33वीं विधानसभा बन गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को संसद भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। और प्रमोद, जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में आजकल मौसम बड़ा सुहाना हुआ हो रखा है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और थोड़ा सा तूफान वाला मौसम है, लेकिन कुल मिला के हमारे लिए तो काफी अच्छा मौसम है।
0: करेक्ट। मेरे बच्चों ने बोला कि भगवान ने खुद ही एसी कर दिया, कल इतनी अच्छी बारिश हुई। हाँ एग्जैक्टली, गुड़गांव में कल काफी बारिश हुई है
1: जी। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आंधी तूफान आने और हल्की बारिश होने की संभावना है, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं
0: जी।
1: आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आज आसमान आंशिक रूप से, वहां पे बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। तो प्रमोद, कुल मिलाकर हर जगह मॉनसून का जो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है प्रभाव।
0: एग्जैक्टली, इनफैक्ट मॉनसून जो मई 26 को हिट करने वाले थे केरला, वो अभी हिट कर गए हैं और सुना है अच्छी बारिश हो रही है केरला में। एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव हैवी रेनफॉल। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म अकॉम्पनीड विद लाइटनिंग। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म अकॉम्पनीड विद लाइटनिंग। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस।
1: और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ। आज के दिन ही 1981 में अमरीकी संस्था CDC ने एड्स बीमारी पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
0: एंड इन 1967 ऑन दिस डे द 5th ऑफ जून द 6-डे वॉर बिगन इन द मिडल ईस्ट एज इजराइल लॉन्च्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स फॉलोइंग ट्रूप मूवमेंट्स बाय इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया।
1: और आज के दिन ही 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हुई थी, ये शुरू हुआ था।
0: एंड इन 1944 एलाइड फोर्सेस ड्रॉप्ड ओवर 5,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन जर्मन गन बैटरीज ऑन द नॉर्मैंडी कोस्ट, सेटिंग द स्टेज फॉर द D-Day इन्वेजन।
1: और आज के दिन ही 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज में मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।
0: And in 1968, U.S. Senator Robert F. Kennedy was fatally shot by Sirhan Sirhan at Ambassador Hotel in Los Angeles shortly after his California primary victory speech.
1: और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। पान, घोड़ा और मन, तीनों को समय समय पर फेरना चाहिए, अन्यथा वे एक रस होकर सड़ने लगते हैं। आज हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा ललित निबंध के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध लेखक कुबेरनाथ राय की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक निबंध लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और साहित्य संस्कृति की दुनिया में काम करने वाले लोगों के बीच काफी सराहे गए। कुबेरनाथ राय की अब तक 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कामधेनु निबंध संग्रह पर ज्ञानपीठ की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण मूर्ति देवी पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मराल, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादर, निषाद, बांसुरी आदि।
0: Today is the death anniversary of Stephan Crane, a poet, novelist and short story writer. Prolific throughout his short life, he wrote notable works in the realist tradition as

0: well as early examples of American naturalism and impressionism. Today is also, we also remember Melvin Howard Torme on his death anniversary. He was a musician, singer, composer, arranger, drummer, actor and author. He composed the music for the Christmas song Chestnuts Roasting on an Open Fire and co-wrote the lyrics with Bob Wells. Torme won 2 Grammy Awards and was nominated a total of 14 times. For jazz musical form, often improvisational, it was developed partially from ragtime and blues and is often characterized by syncopated rhythms, polyphonic ensemble playing, varying degrees of improvisation, often deliberate deviations of pitch and the use of original timbres.
1: आज मास्टर मदन की पुण्यतिथि है। वे भारत की आजादी से पहले के एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे। मास्टर मदन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में एक किशोर के रूप में ख्याति प्राप्त करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1940 के दशक में ही स्वर्गवासी हो गए। ऐसा माना जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए ऊंची रकम दी जाती थी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उनका ये गीत।

0: Today we are remembering John Maynard Keynes, the first Baron of Keynes. Today is his birth anniversary. He was an economist and philosopher whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles. One of the most influential economists of the 20th century, he produced writings that are the basis for the school of thought known as Keynesian economics and its varying offshoots. His ideas, reformulated as New Keynesianism, are fundamental to mainstream macroeconomics. He is also known as the father of macroeconomics.
1: आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता विजय राज का जन्मदिन है। विजय ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने अभिनय के दम पर खास पहचान बनाई। फिल्म रन का मशहूर कौवा बिरयानी सीन उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। ये सुनते हैं ये डायलॉग।
2: मारा गायब है, टाइम ही तो पूछ रहे थे।
3: क्या हुआ भाई?
2: दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं,
3: अच्छा,
2: कौवे का आवाज आ रहा है भाई।
3: क्या खाए थे?
2: Well, I had a malanch.
3: ए भाई, क्या बोल रहे हैं? I had.
2: दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे।
3: 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा।
2: कौवा बिरयानी?
1: आज मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की जयंती है। उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की थी। उसके बाद 2 वर्ष तक वे यहां वहां अध्यापन कार्य भी करते रहे। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनूदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी मुख्य रचनाएं हैं साहित्य कौतुकम, विश्व दर्शनम, लेखमाल, जीवन संगीतम, संध्या आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज ही भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता नारायण मल्हार जोशी की जयंती है। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और 1929 तक उसके सचिव रहे। कांग्रेस में साम्यवादियों के प्रभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक नया संगठन बनाया था। वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे थे।
0: Today is the birthday of Mukesh Bhatt. He's an Indian film producer and actor who's produced several Bollywood films. He's the younger brother of Mahesh Bhatt and also the co-owner of the production company Vishesh Films, set up

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और प्रमोद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
1: That's right, stay tuned for coming up next समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे,
0: नमस्कार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट।

0: आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों

0: के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन।

0: मुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej and Sarigam GIDC, modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote health.

0: आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसीतर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपने दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। छह अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज तीन रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सरकार ने इफराते जर की शरह पर मबनी अशियाए सारेफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशियाए सारेफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशियाए सारेफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आराई की वजह से इफराते जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉ कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉ कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लियामानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरां कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राब्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और न ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम

0: जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: फितरत और कुर्राए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वुजराए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियां करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज, शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबो हवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इआदा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। सीएसआईआर आईआईएम की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहेली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद किफालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

0: मिशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरीत को रोका। तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

93.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: छोटे से दिल की छोटी सी आशा यही है कि हम इस जीवन दायिनी प्रकृति और पर्यावरण की सुंदरता और उपयोगिता को इसी तरह बरकरार रखने में अपना योगदान देते रहे। जी हाँ, 5 जून 1972 का ही दिन था जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी और पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1973 को मनाया गया था। उद्देश्य यही था कि वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें इस बारे में जागरूक किया जाए, ताकि सरकारों के साथ साथ आम जनता और समुदाय भी पानी बचाने, पेड़ लगाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित हों और इस दिशा में प्रयास करें। जी हाँ जनाब, ये तो हुई वो भूमिका, वो छोटी सी भूमिका जो आपको हमने दी आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सुबह से हम कई बार ये बात सुन चुके हैं, बता चुके हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बारे में, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आज का ये दिन जब हमें पता है क्यों मनाया जाता है और क्या करना चाहिए, तो फिर हमने क्या इस बारे में कुछ करने का इरादा किया या फिर कोई ऐसा संकल्प लिया जिससे हम ये बात पूरे गर्व और सम्मान के साथ एक्नॉलेज कर सकें कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम इसमें ज़रूर सुधार करेंगे। अगर ये बात हम आज समझ जाते हैं और समझ गए हैं, तो इस दिन को मनाने का और याद दिलाने का जो उद्देश्य और जो मकसद है वो यकीनन पूरा हो गया है। फिलहाल 8:52 आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज ये संकल्प हमको लेना है कि हमें जो हरी भरी धरती अपने पुरखों से विरासत में मिली है, उसे हम अपनी नई पीढ़ियों तक इसी तरह पहुंचाने का काम करेंगे और हर वो चीज़ करेंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, तब जाकर बनेगी कोई बात। चलिए फिलहाल बातों पर ब्रेक लगाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और फिर हम सुनेंगे एक और ए आर रहमान क्लासिक सॉन्ग। फिलहाल 8:53 और आप ट्यून इन है म्यूजिकल दिल्ली में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल।

0: और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

8:56 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली की और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की शानदार आवाजों के साथ इस गाने के साथ फिलहाल मुझे आपको छोड़ना होगा। म्यूजिक एआर रहमान का एंजॉय करते रहिए गोल्डन म्यूजिक को और जुड़े रहिए 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। योर रेडियो वाली फ्रेंड पूजा सेज़। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय की योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक वर्षों के अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया था और 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव भी रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगा हारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की है। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम का सामना भारतीय समयानुसार आज 9:30 बजे चीन से होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, केरल और माही, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championships to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, "Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities."
2: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide. Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions taken by the Monetary Policy Committee at 10 this morning in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and UK's Foreign Secretary Vet Cooper held first annual meeting in New Delhi yesterday to review India-UK Vision 2035. Both ministers reviewed the progress made under all five pillars of India-UK Vision 2035, including growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy and education. The ministers welcomed opportunities unblocked by the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and looked forward to its early entry into force. They expressed satisfaction at the progress on various initiatives under India-UK Technology Security Initiative, including in the fields of artificial intelligence and critical minerals. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of

दोस्तों कहते हैं कि सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ और ये सफर है म्यूजिकल दिल लगी का। 9:11:32 हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ, ये आकाशवाणी है। 90 वर्षों का हमारा आपका सफर, हम सफर आकाशवाणी के साथ। हम रहे हैं हमेशा और पल पल का साथी आकाशवाणी। दोस्तों, आकाशवाणी अपने अनेक मशहूर कार्यक्रमों के जरिए अपने श्रोताओं का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन हमेशा करता रहा है और आज भी कर रहा है। आकाशवाणी का नाम भले ही बदला हो, लेकिन आकाशवाणी का काम कभी नहीं बदला। हमेशा से आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं का मनोरंजन किया, ज्ञानवर्धन किया और ये काम हमेशा चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। आकाशवाणी का इतिहास यादगार कार्यक्रमों का संग्रह रहा है, जिन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी किया है। विविध भारती की प्रतिष्ठित कार्यक्रम हवा महल अपने लघु नाटकों और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हुआ था और अमीन सियानी जी की जादुई आवाज से सजा बिना का गीतमाला हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक लेकर गया। वहीं अगर बात करूं जयमाला छाया गीत की, भूले बिस्तरे गीत और संगीत सरिता जैसे कार्यक्रमों की, तो घर घर में ये कार्यक्रम लोकप्रिय हुए थे। साल 1969 में युवाओं को मंच देने के लिए युववाणी की शुरुआत की गई। आज सवेरे, परिक्रमा और इसके अलावा स्पोर्ट्स कैन, मार्केट मंत्रा जैसे कार्यक्रमों ने समसामयिक चर्चाओं, खेल और बाजार की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का काम हमेशा किया है। तो अब पारी है उस सवाल की जो आपको मुझे बताना है, जो मैं आपसे पूछने वाली हूं। तो चलिए, आपको बताना है मुझे एक सवाल का जवाब, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं आप में से किसी एक श्रोता को, एक लकी श्रोता को लगाऊंगी फोन और फिर हम करेंगे सीधे उनसे बात। तो चलिए ध्यान से आज का सवाल सुन लीजिए। पहले नंबर बता दूं, कहां पर भेजना है आपको जवाब। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9868868753 पर, यानी 9868868753 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। अब सुनिए सवाल। भारत का राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपको इस सवाल का जवाब मुझे लिखकर भेजना है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए वो तारीख जिस दिन ये मनाया जाता है। और अब इससे पहले कि कुछ और बातें करूं, फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ। गीत के उस पार बहुत कुछ है जानने के लिए। जुड़े रहेगा म्यूजिकल दिल लगी में आपकी दोस्त के साथ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और 9:29:44 हो चुके हैं। तो मैं हर बार की तरह मैं आपको कुछ ना कुछ काम की योजनाओं के बारे में जरूर बताती हूं। तो आज की जिस योजना की बात मैं करने जा रही हूं उसे हम जानते हैं पीएम स्वनिधि योजना के नाम से। जी हां, ये भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यापार फिर से शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के किफायती लोन यानी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की एक विशेष सूक्ष्म ऋण योजना है। इस योजना से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता दूं कि ऋण राशि योजना के तहत लोन किश्तों में दिया जाता है जिसे समय पर चुकाने पर राशि बढ़ा भी दी जाती है। यानी पहला लोन मिलेगा 10,000 रुपए का, दूसरा 20,000 और तीसरा 50,000 रुपए तक। ब्याज दर और सब्सिडी 7% ब्याज सब्सिडी भी मिलती है अगर मैं इसकी बात करूं, जिसे समय पर चुकाने पर सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है और ये लोन बिना किसी जमानत के आप पा सकते हैं। इसलिए ये और भी खास हो जाता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने पर हर महीने ₹100 तक का कैश बैक भी प्रदान किया जाता है। ये योजना उन सभी रेहड़ी पटरी पर अपना व्यापार करने वाले यानी ठेला लगाने वाले, खोमचे वाले, फेरी वालों के लिए उपलब्ध है जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों या टाउन वेंडिंग कमेटियों द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र हो। आपको आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। आप योजना के आधिकारिक पोर्टल पीएम स्वनिधि के माध्यम से या नजदीकी बैंक शाखा और कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आप खुद ऐसे व्यापारी हैं तो आप जरूर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल, बातें तो होती ही रहेंगी लेकिन गीतों का साथ भी बना रहे, इसलिए ये रहा एक और प्यारा सा गीत आपके लिए आशा जी रफी साहब की आवाज में।

0: मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

दोस्तों आज है 5 तारीख यानी 5 जुलाई और 5 जून। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज का दिन जो है वो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज के दिन भी इतिहास में बहुत सारी चीजें दर्ज हैं। 5 जून का दिन जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए जाना जाता है, यानी अवैध, अनाधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2015 में FAO के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने अवैध, अनधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए एक पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा। व्यापक विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव को FAO की मत्स्य पालन समिति के 32वें सत्र के समक्ष पेश किया गया। मत्स्य पालन समिति ने 5 जून को अवैध, अनाधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और ये दिन उस दिन को दर्शाता है जब बंदरगाह राज्य उपाय समझौता आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुआ था। इस समझौते का लागू होना एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो खास तौर से अवैध, अनधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई के लिए समर्पित है। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में 5 जून को अवैध, अनधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और तब से आज तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 को पारंपरिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जिससे विश्व के मत्स्य पालन कार्यबल के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे पैमाने के मछुआरों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तो भाई ये तो हुई बात 5 जून की, लेकिन फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ और गीत के बाद उस सवाल की बात भी जरूर करेंगे जो मैंने आपसे पूछा था। बहुत से सही जवाब हम तक पहुंच रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं, लेकिन आज देखते हैं कि लकी श्रोता

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल आपको याद है या भूल गए हैं? वो तो मैं बता दूंगी, याद दिला दूंगी, लेकिन हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे मैं इसका जवाब जरूर पूछूंगी। तो चलिए, हमारे साथ कौन है उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मेरा नाम वैभव शाह है, मैं मुंबई से हूँ।
0: वैभव शाह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भाई वैभव जी, पहले तो हमारे उस सवाल का जवाब हमारे बाकी श्रोताओं को भी बता दीजिए जो मैंने पूछा था, कि भारत का राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है।
1: हाँ, ये है 23 जुलाई, 23rd जुलाई।
0: क्या बात है, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और आप आज के लकी श्रोता हो गए। कैसा लग रहा है आपको जुड़ के गोल्ड के साथ?
1: नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपका कॉल भी आ गया और मेरा आंसर भी सही हो गया। इसका एक छोटा सा स्टोरी है, मेरे पापा मुझे काफी रेडियो के फैन थे, तो उन्होंने मुझे एट मेनी पॉइंट्स बताया था कि ये दिन आता है।
0: तो आपको याद है तब से? हाँ
1: यस।
0: तो अभी आप रेडियो के कितना सुनते हैं? हर वक्त रेडियो के साथ जुड़े रहते हैं या कोई खास टाइम है, कोई स्पेशल टाइम है जब आप ऐसा करते हैं?
1: नहीं, स्पेशल टाइम है मॉर्निंग और इवनिंग ड्राइविंग करने के टाइम पे, और पर्टिकुलरली आकाशवाणी सुनने के लिए बहुत ही शांति फील होती है। थोड़े अच्छे सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं तो मैं सुबह और शाम सुनता हूँ।
0: क्या बात है, तो ये आपका ड्राइविंग का हम सफर है ना?
1: यस।
0: अच्छा ये बताइए कि आपको क्यों गोल्ड इतना पसंद है? कुछ तो वजह होगी ना, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं हो जाती है।
1: नहीं, मैं अगर सच्ची कहूँ तो गोल्ड के जो आपका प्रेजेंटेशन है, काफी जो रेडियो ब्रॉडकास्टर है उनसे सुनने मिलता है, ना कि एड्स या लाउड म्यूजिक सुनने मिलता है। तो आप जो बात करते हो, जो टॉपिक सिलेक्ट करते हो, वो भी सुनने को अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर सॉन्ग्स भी काफी अच्छे होते हैं, तो टाइम काफी अच्छा जाता है और नॉइजी फील नहीं होता है।
0: तो मतलब जानकारी के साथ आपको ज्ञान का वर्धन भी हो ही जाता है। हाँ, आज हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि गोल्ड सुनिए, जो आप जानकारी देते हैं वो भी बहुत ही काफी रेलेवेंट है, आप जो नए टॉपिक्स है वो भी कवर करते हैं कितनी बार। सो वन ऑफ द बेस्ट यू नो ट्रैवल कंपेनियन, आई वुड से। सुनते रहिए।
0: तो वैभव जी, कभी आपने ऐसा सोचा कि बस मैं गोल्ड से बोर हो गया हूँ, आप कुछ और सुनना है, ऐसा तो नहीं आता कभी ख्याल?
1: नहीं, कभी कभार जो दूसरी चैनल्स है वो भी मैं लगाता हूँ, ऐसा नहीं है टू बी फेयर, बट अदरवाइज ज्यादातर इस पे ही रहता हूँ।
0: तो भाई ज्यादातर मजा हमारे गोल्ड के साथ ही आता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा गोल्ड सुनते हैं और गोल्ड के साथ। कितने साल से जुड़े हैं वैभव?
1: बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, जितना मैं याद कर सकता हूँ 15-20 साल से, मतलब जब भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो सुबह तो लगता ही है।
0: तो मतलब गाड़ी में तो लगेगा ही। तो भाई हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आप कार में अगर इसे सुन रहे हैं तो हम आपके साथ ही बने रहें और आपका वो सफर जो है वो खूबसूरत रहे हमेशा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, हमें अच्छा लगा कि मुंबई तक आप हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई वैभव शाह से हमारी आज हो गई बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: हमारे और भी बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब भेजे हैं, तो चलिए उनके नामों को भी शामिल कर लेती हूँ जल्दी से। रमनपाल सिंह जी ने हमें भेजा है दिल्ली पुलिस सोसाइटी से, ग्रेटर नोएडा से, और रेणुगोपाल ने रोहिणी से हमें मैसेज भेजा सही जवाब, और हेमंत साखर तांडे जबलपुर से हमें सही जवाब लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें सही जवाब भेज रहे हैं। सतप्रकाश सनोठिया ने हमें सही जवाब लिखा, इसके अलावा कैलाश शर्मा ने गुरुग्राम से सही जवाब भेजा, रंजिता जांगड़े ने बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब लिखा, और इसके अलावा श्रीमती मनीषा साखर दांडे ने जबलपुर से सही जवाब लिखा है। रामकृष्ण चेतलवर चातलेवार जी हाँ, और पनवेल नवी मुंबई से हमें सही जवाब भेज रहे हैं। संतोष सक्सेना ने मुंबई से हमें सही जवाब भेजा, और इसके अलावा राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद का सही जवाब हमें मिला। प्रद्युम्न वर्मा ने खतौली शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमें सही जवाब लिखा है, और इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई सारे सही जवाब पहुंचे। प्रकाश चंद्रकांत दिल्ली से, पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता का सही जवाब और नवीन भाटिया का मोती नगर से सही जवाब, एसके खन्ना का विकासपुरी से, और ये हमें भेजा है किसने, नाम नहीं दिख रहा, मंजुला गंगराडे ने, और इसके अलावा हमारे पास योगेश जांगड़े का भी बेमेतारा छत्तीसगढ़ से, हेमा का गुड़गांव से, और भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का हमें सही जवाब मिला, महावीर खत्री का गुरुग्राम से सही जवाब, और शैलजा ने हमें निमराना से सही जवाब भेजा है, बाजार सीताराम से प्रकाश चंद ने सही जवाब, मोहन गार्डन से उत्तम नगर मोहन गार्डन से राजेश कुमार ने सही जवाब भेजा है, और रमन डोगरा ने दमताल हिमाचल प्रदेश से सही जवाब भेजा है, ग्रेटर नोएडा से अंशु भार्गवा ने, और आप सभी के सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। तो भाई जान तो लिया ही है आपने कि 23 जुलाई का वो दिन था जब भारत का राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और आज तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 23 जुलाई के दिन। तो भाई जो श्रोता है वो

तो जानते ही हैं, अब वो भी जान गए जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है या जो हमें बहुत कम सुनते हैं लेकिन फिर भी सुनते तो हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे आप सफ़र में सुने, चाहे आप रात का हम सफ़र हमें बनाए, जब आप रात में धीमी धीमी नींद में जा रहे होते हैं और उस वक्त रेडियो आपके कान के पास बज रहा होता है, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है ना। और फिर सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है और हम फिर से आपका स्वागत करते हैं खूबसूरत सुबह में, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। दोपहर के समय जब आप काम से कहीं थोड़ा सा विराम लेना चाहते हैं, तब भी हम आपके साथ ही होते हैं। मतलब 24 घंटे कौन सा ऐसा समय है जब हम आपके साथ नहीं जुड़ते। वेल, फिलहाल तो एक गीत आपको सुनवाती हूँ और उसके बाद आगे के सफर में क्या है जरूर बताऊंगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है म्यूजिकल दिल्ली के सफर में। 9:50 11 सेकेंड हो चुके हैं।

भाई लकी तो वही हो गया जिसने सबसे पहले बाजी मार ली, सबसे पहले सही जवाब भेज दिया। तो आज के वो लकी श्रोता तो हमसे आज जुड़ चुके, बात भी हमने कर ली, लेकिन आप भी लकी हो सकते हैं। आपका भी पसंद का गीत हम आपको सुनवा सकते हैं अगर आप 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाए दिल का मेल बॉक्स के जरिए, जब आप अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं और कुछ श्रोताओं की फरमाइशों को हम पूरा भी जरूर करते हैं उस वक्त, क्योंकि वक्त कम रहता है इसलिए कुछ ही श्रोता शामिल हो पाते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाता है ना, कभी ना कभी तो आप लकी हो ही जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, 10:30 बजे लेकर आऊंगी दिल का मेल बॉक्स। और फिलहाल आपको बता दूं कि आज क्योंकि शुक्रवार है तो शाम 5:10 पर स्पेशल कहानी का भी वक्त रहता है, तो पानी पर लिखी कहानी आज जरूर सुनिएगा। और इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी सुरतिया, जिसे लिखा है वंदना अवस्थी दुबे ने, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनिएगा शाम 5:10 पर आज ये कहानी, पानी पर लिखी कहानी सुरतिया। जी हाँ, और मुझे पता है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। वेल फिलहाल तो अब वक्त नहीं बचा है कि और ज्यादा बातें आपसे करूं, तो अभी म्यूजिकल दिल लगी के इस सफर से इजाजत जरूर लूंगी आपसे, लेकिन एक प्यारे से गीत के साथ। इस गीत को एंजॉय कीजिए और फिर से मिलूंगी 10:30 बजे हिंदी अंग्रेजी समाचारों के बाद, विश्व दर्पण और बहुत सारी चीजें हैं, तो सुनिएगा जरूर, सुनते रहिएगा। 10:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल ये गीत आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। अहमदाबाद में 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का एक अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं।
2: प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। श्री पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। श्री पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र और लोकतंत्र है और रूस उसके साथ संबंधों का विस्तार करना जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में

0: भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है।
1: दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। साथ ही एआई और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थानों में सैन्य प्रशिक्षकों के आदान प्रदान सहित नई प्रगति का स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने हरित विकास पर भारत ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल सहित भारत ब्रिटेन जलवायु साझेदारी के महत्व को भी स्वीकार किया। यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लिवरपूल विश्वविद्यालय को बंगलुरु परिसर खोलने के लिए स्वीकृति पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किंग्स कॉलेज लंदन और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन रहे हैं। 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस। और फिलहाल ये वक्त है दिल का मेल बॉक्स का, यानी अपने दिल के मेल बॉक्स में भेज दीजिए वो गीत लिखकर जो आप सुनना चाहते हैं। कोशिश रहेगी आज किसी न किसी का गीत तो जरूर ऑन एयर हो ही जाए बढ़िया से, और सबका ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे की पसंद सुनना भी तो मजेदार लगता है ना। तो सुनकर तो देखें अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9868867 यानी 9868867 और ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या का मतलब पता है ना, एक ही चीज़ करिए काफ़ी है और एक ही बार करिए काफ़ी है, एक ही मैसेज भेजेंगे तो चलेगा। मैं आपका नाम ज़रूर कोशिश करूँगी शामिल हो ही जाए, और 10 बार भेजेंगे ना तो फिर मैं आपका नाम शामिल नहीं करूँगी, ये भी याद रखिएगा। कोशिश करिए सिर्फ एक मैसेज भेजें। अब मैं कुछ मैसेजेस हमें पहुँच चुके हैं उन्हें शामिल कर लेती हूँ और फिर आज का पहला गीत इस सफर का जरूर सुनाऊंगी। रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हमें उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने मैसेज लिखा है। कमल बालूजा

मधु बालूजा और सागर बालूजा ने मजनू कटीला से और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेजा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का मैसेज मिला है और हमें हमें लिखा है किस्ती श्रीपाल गोयल ने हरियाणा से बहादुरगढ़ से मैसेज और इसके साथ साथ गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामी, वामिका और वाणी थांदी ने हमें लिखा है नवाशहर पंजाब से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब पल्लीमारान से हमें लिख रहे हैं और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने सनावद मध्य प्रदेश से लिखा है। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप ने हमें मैसेज भेजा। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजानिया ने हमें लिखा है सिरसा हरियाणा से। गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम का मैसेज और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और पूरे परिवार ने हमें मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से लिखा है। धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज और हमें लिखा है उत्तम नगर होली चौक से जयराम खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने और बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी आराध्या ने, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामणि शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने का ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से मैसेज और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज हमें लिखा है। भूषण खेरा ने फजिल का पंजाब से वैशाली, विशाल खेरा और विष्णु के साथ साथ में लाडे खेरा और शालानी खेरा और भी तिवांशी खेरा का, वानी खेरा के साथ मैसेज हमें मिला है। थोड़ा सा क्लियर अगर आप नामों को लिखेंगे और फॉन्ट थोड़ा बड़ा लिख करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा पढ़ना। सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर का मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग के साथ। अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से हमें मैसेज लिखा है और हमारे पास ये मैसेज मृदुल राज शर्मा का सीताराम बाजार से, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का मैसेज अलीगढ़ से हमें मिला है और मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति भूमिका का मैसेज श्रीगंगानगर राजस्थान से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती अंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें मध्य प्रदेश से मिला है और हमें लिखा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने शेरवानी स्कूल गंज रणवाड़ा से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी वर्मा का मैसेज हमें मिला है जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से और ये मैसेज है काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का। भगवती पुल प्रहलादपुर से हमें लिख रही हैं, राजश्री नासिक महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। हेमा का गुरुग्राम से मैसेज, लेकिन फिलहाल तो एक गीत सुना देती हूं, चलिए शुरू कर लेते हैं इस सफर को और ये गीत किसकी पसंद है? कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की पसंद, तो ये रहा आपकी पसंद का गीत। आशा जी और रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत गीत तीसरी मंजिल से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

हाँ जी, कैसे हैं? इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। 10:45:46 हो चुके हैं। आप हैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन क्या करूँ कि वक्त बहुत कम होता है ना इस सफ़र में, तो जितने मैसेजेस को शामिल कर पाती हूँ करती ज़रूर हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ बिना वक्त गंवाए। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मैसेज हमें मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और हमें लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से, एसके खन्ना ने विकासपुरी से, इंदिरा नगर भवपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज। और हमें लिखा है कि गीत सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। गौरी शंकर ने नांगलोई से हमें लिखा है, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से मिला है। और राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार ग्राम फ्रांसी हिसार, जिला हिसार से लिख रहे हैं। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का मैसेज हमें मिला है गांव चाहौलदा बागपत से। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव हमें देवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से लिख रहे हैं। और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मेघा का मैसेज हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मिला है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशोरिधान खुराना का मैसेज। और इसके अलावा खतौली शहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रद्युम्न वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, दिनेश चौहान ने रामदेवरा से, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने। शिवकन्ना विकासपुरी से हमें लिख रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा।

कुणाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। सतप्रकाश सनोथिया ने हमें रोहिणी से लिखा, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी, फराज फरहीन, फरहान फायरा, फारिया और ताहिरा का मैसेज। और हमारे पास ये मैसेज है कैलाश चंद का महिंद्रा पार्क से। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल का मैसेज और कुछ बात तो है गोल्ड में। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं गोल्ड में और कुछ बात तो है, ये बात अपने आप में कुछ खास है। गुरमीत सिंह मीदा ने साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज किया है, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम बेबी, अरीबा हबीबा ने पटियाला रोड गंज डुंडवाना उत्तर प्रदेश से मैसेज लिखा है और जय हिंद कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा हमें द्वारका नई दिल्ली से लिख रहे हैं। और इसके अलावा आप देश सेवा में लगे हैं और हम भी तो एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं, बस हमारा अंदाज थोड़ा अलग है, आपका अंदाज अलग है और अपने अपने अंदाज में हम इसी तरह से जुड़े रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है जल्दी से ये भी बता दूं। ये गीत सुनना चाहा है अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से और ये गीत सच कहूं तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मौका मिल रहा है तो बजा देती हूं। अनीता जी, ये रहा आपकी पसंद का गीत। लता जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज।

पनांगलुई से और ये मैसेज वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावसार का और विशाल गवली सोनाली समर्पण भक्ति का मैसेज नाशिक ढिंडोरी से सागर कटक ऋषिकेश से हमें लिख रहे हैं ऊषा वसानी संतोष वसानी तिरुपति नगर नांदूरा से और ये मैसेज हमें लिखा है प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा ने जनकपुरी से भगवती ने पुल प्रहलादपुर से राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पारुल अद्वैक समयपुर बादली से अतर सिंह के साथ हमें लिख रहे हैं और हमें लिखा है किसने महेश अग्रवाल मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश प्रज्ञेश प्रीतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज और टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर सिंह अमन डॉक्टर अमनदीप का हमें मैसेज चंडीगढ़ मोहाली से मिला कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बेटा बजाज का मैसेज और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल ठाकुर का और ये जो आप करते हैं ना काफी सारे लोग कि बार बार कभी किसी नाम से अलग अलग मेल्स करते हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए सिर्फ एक ही मेल करिए और सही नाम के साथ करिए वही काफी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं और आप हैं कि बस शैतानी पर रहते हैं हमेशा ऐसा मत करिए क्योंकि आप ही के मेल्स बार बार हमें अलग अलग नामों से मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों के तो ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती का हमें मैसेज मिला कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी के साथ और हमें लिखा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी ने पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचाया है हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा का दंतगेरी दतरेंगी भाटापारा से मैसेज और हमारे पास मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और सादिया का मैसेज गिरी डीह झारखंड से और नसरीन अंसारी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ राशिद हुसैन का जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज है पंजाब से गांव नथाना से हमें लिखा है हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता ने और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू मधु का टिल्लू नायक और मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मैसेज है और सुखराम सिंह मरावी का सूरजपुर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से मैसेज ये मैसेज हमें लिखा है गांव फ्रांसी हिसार से फिर से देखिए रिपीट मैसेज ये बात हमें थोड़ी सी बुरी लगती है जगदीश जोहरी प्रवीण सोनी पूजा पायल का गुजरात गांधीग्राम से मैसेज है पश्चिम विहार दिल्ली से हमें लिखा है नीरज अग्रवाल सचिन और डी के अलवी ने और जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस का मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से राजपाल सोनू सुरेश काजल मानवी लक्ष्य मोहिनी बलवीर और मुकेश कश्यप शीतल कश्यप का मैसेज दूलापुर उत्तर प्रदेश से और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बार बार हमें मिल रहे हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का मैसेज है। अब देखिए मैं बार बार स्क्रॉल करती रहती हूँ और पता चलता है कि सेम मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें पढ़ने में। मास्टर खिलू परवेज बेगम इमरान अनाज नवाजिश शेख दानिश अमन और राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैसेज है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर अंसारी मेहराजहां आजाद लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं और इसके साथ साथ खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा और पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का का मैसेज हमें मिला है। भाई पापाजी तो वो आपके हैं तो इसलिए पापाजी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा सिर्फ नाम लिख दें काफी है ऐसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है समझ नहीं आता कि नाम क्या है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है ये भी देख लेते हैं। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार ने रामदेवरा से दिनेश चौहान ने और डांगरी से बाबूराम जयपाल ने खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने तो ये रहा आप सभी की पसंद का गीत फिल्म हमजोली से।

ज्यादा नहीं बचा है वक्त, तो जल्दी से इसी गीत के साथ आपसे इस सफर से लेती हूँ इजाजत, लेकिन वापस मिलूंगी लेकर तस्वीर 11:10 पर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस दिल का मेल बॉक्स से लेती है इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं और 11:11:18 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये सफर है तस्वीर का। भाई कहते हैं घूमना फिरना सचमुच इतना आसान नहीं होता, ये वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा ऐसी चीजों में रहता है, जो कुछ नया जानना चाहते हैं, जो नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जिन्हें अच्छा लगता है कि बस घर में रहें, किसी से बात ना करें। वो लोग घूमने फिरने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और अगर आप अपने आप को एक बार बाहर निकाल कर कहीं चले ही जाते हैं, घूम ही आते हैं, तो सच मानिएगा, यकीन मानिएगा कि आपका जो मूड है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा और सचमुच ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही। आप नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे और फिर आपका मन तो बिल्कुल नहीं करेगा कि आप घर के अंदर बैठे रहें। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपना बैग उठाकर निकल चलेंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे हर बार मैं अपना थैला उठा के निकल जाती हूँ कि भाई चलिए कहीं घूम आते हैं। और आज भी मैं चली हूँ फूलों की घाटी देखने, तो आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आ जाइए जल्दी से। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है फूलों की घाटी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर है, पृथ्वी की सबसे जादुई अजूबों में से एक है और ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी है और इस घाटी की खोज फ्रैंक एस स्मिथ ने 1931 में की थी। ये लगभग पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है और इसलिए यहाँ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फूलों की घाटी वनस्पति विज्ञानियों, फूल प्रेमियों और निश्चित रूप से ट्रैकर्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जिनके लिए किसी जगह पर पहुंचना सिर्फ एक बहाना होता है और वहां पहुंचकर शुरू हो जाती है उनकी ट्रैकिंग। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो आपके लिए जगह बहुत ही खास है। फूलों की घाटी में लगभग 650 तरह की विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां होती है वो पाई

जाती हैं। और यहाँ कुछ बेहद दुर्लभ पौधे भी मिलते हैं, जैसे कि ब्लू पॉपी, लेडीज स्लीपर आर्किड और ब्रह्म कमल जैसे फूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये घाटी भोजपत्रों के घने जंगलों से घिरी हुई है और पुष्पावती नदी के एक किनारे पर स्थित है। तो अगर आप भी इस घाटी का आनंद लेना चाहते हैं, इस फूलों की घाटी में घूमना चाहते हैं, तो ये मौसम बहुत ही खूबसूरत है यहाँ जाने के लिए। एक और वजह भी है यहाँ क्यों जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जाने का जो मौका है वो इस वक्त खुला है। आप आसानी से यहाँ पर पहुंच जाइए और इस जगह को देखिए। इस जगह के बारे में क्या खास है, क्यों यहाँ जाएं, आपके सवाल जरूर हम भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि ये जगह क्यों इतनी खूबसूरत है, इतनी खास है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा 11:13 और ये हुए पूरे 14 मिनट। तो भाई चलिए तस्वीर का सफर शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और फूलों की घाटी की सैर हम यूं ही करते चलेंगे। तो लीजिए ये रहा खूबसूरत गीत अनमोल सजना फिल्म से।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

11:30 हो चुके हैं और हम चले हैं फूलों की घाटी की सैर करने। और उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल चुका है। यहाँ आपको 600 से ज्यादा तरह के फूल और दुर्लभ जानवर देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए खुला है और समुद्र तल से ये लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये घाटी सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ ही ये एक जादुई दुनिया में बदल जाती है। ये घाटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसे अगर खूबसूरती की मिसाल कहा जाए तो ये सचमुच कोई गलत बात नहीं है और जिसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। अगर आप इस साल फूलों की घाटी को करीब से देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसके बारे में जानने को, जिसे फ्लावर ऑफ वैली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। और ये नेशनल पार्क 87 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस घाटी को सबसे पहले एक ब्रिटिश ट्रैकर फ्रैंक एस स्मिथ ने 1931 में खोजा था। दरअसल वो अपने दो साथियों के साथ ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटककर यहां पहुंच गए थे और रंग बिरंगे फूलों से ढकी इस घाटी की खूबसूरती को देखकर वो हैरान रह गए और इसलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी रखा गया। इस घाटी की खासियत, जैसा कि मैंने कहा, 600 से ज्यादा प्रजातियों के फूल हैं जिनमें ऑर्किड्स, पॉपी, प्रिमुलस, मेरीगोल्ड और एनिमोस जैसे बहुत सारे फूल शामिल हैं। सर्दियों में ये घाटी बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन मई से सितंबर के बीच ये पूरी घाटी रंग बिरंगी

ये फूलों से ढक जाती है। और इसके अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कस्तूरी मृग, ग्रील अंगूर, लाइम बटरफ्लाई, हिमाली वीजल्स और हिमाली भालू और स्नो लैपर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो भाई आपको हो सकता है कि इनके भी दर्शन हो जाए। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, और वो कैसे करना है जान लीजिए। पवित्र हेमकुंड साहिब के पास होने की वजह से सभी यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। यहाँ जाने के लिए घाटी में एंट्री के लिए उत्तराखंड वन विभाग से ई परमिट लेना होता है, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप घांघरिया में बने फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ट्रैक की एक शाम पहले ही ऑफलाइन परमिट ले लें, ताकि खराब मौसम या किसी देरी की वजह से डेट्स लॉक ना हो। और इसे उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। ये परमिट 3 दिनों तक वैलिड होता है और भारतीय नागरिकों के लिए 150 के करीब और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपए के करीब इसकी फीस रहती है। आप खुद गोविंद घाट और घांघरिया में होम स्टेज या गाइड बुकिंग करके खुद भी यहां पर जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग भरोसेमंद ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए ही गाइडेड पैकेज चुनते हैं, और अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब 10 से 12 हजार रुपए के बीच हर व्यक्ति पर आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें बेस कैंप में रहना, खाना, गाइड और परमिट सभी कुछ शामिल रहता है। घाटी जो है वो 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए इस बार खुली रहेगी, तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस बीच आप यहां जाने के लिए सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आपका प्लान बने तो मुझे भी बता दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे फूलों की इस घाटी में घूमने पर। ये है रफी साहब की आवाज में एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं, ये लीजिए, फिलहाल इसे एंजॉय करिए, और इसके बाद इस घाटी में और भी लंबी सैर तक निकलेंगे हम।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

11:33 हो चुके हैं और हम सैर कर रहे हैं फूलों की घाटी की। अगर आप फूलों की घाटी देखना चाहते हैं तो अभी से आप ट्रैक की योजना बना सकते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, यहाँ ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। मई में जब बर्फ पिघलती है तो फूलों की घाटी घूमने के लिए खुल जाती है। मई के महीने में आपको बर्फ तो खूब दिखेगी लेकिन फूल बहुत कम खिले हुए नजर आते हैं। मई में घूमने का एक बड़ा फायदा यह है कि बारिश कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बारिश का मौसम जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाता है। जून जुलाई की बात करूं तो इन महीनों में फूलों की घाटी में झरने और खूबसूरत ग्लेशियर्स देखने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं। और इस महीने में घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बारिश बहुत कम होती है। अगर आप अगस्त और सितंबर में जाएं तो मई में बर्फ पिघलने लगती है और नए पौधे अंकुरित होकर अगस्त तक बढ़ते रहते हैं। मध्य अगस्त की बात करूं यानी अगस्त के बीचों बीच मिड अगस्त की, तो यहां बहुत सारे फूल खिले हुए देख सकते हैं आप। और सबसे ज्यादा फूल देखने का सबसे अच्छा समय है अगस्त और सितंबर। ये कहा जा सकता है कि फूलों की घाटी घूमने या यहां पर मजे या आनंद लेने के लिए फूलों का ये सबसे अच्छा और आखिरी महीना है। लेकिन पौधों और फूल सूखने लगते हैं इसके बाद और अगले मौसम के लिए अपने बीज धरती पर गिरा देते हैं। और अगर बात करूं तो यहाँ पर्यटकों को फूलों की घाटी में ठहरने का कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्क के अंदर कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस अद्भुत घाटी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किसी निजी लॉज या होटल में ठहरना होगा यहाँ से आने के बाद। और मैं यहाँ पहुँचने की बात करूं तो सड़क

मार्ग से आप चोपटा या बाकी मार्गों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। चोपटा उखीमठ रास्ते रोड का जो रास्ता है उसके उसमें ही पड़ता है ये रास्ते में, और उत्तराखंड के सभी प्रमुख रास्तों से बस और टैक्सी आसानी से बुक की जा सकती हैं। फूलों की घाटी गोविंद घाट से अच्छी तरह से जुड़ी है और यहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती है। गोविंद घाट उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों से परिवहन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और ऋषिकेश या हरिद्वार से कार, बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। रेल से अगर आप जाएं बाय ट्रेन तो फूलों की घाटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहां से आपको गोविंद घाट तक जाने के लिए कार या बस का इंतजाम करना होगा और फूलों की घाटी गोविंद घाट से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश शहर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों से रेल और सड़क से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एयर यहां पहुंचने की तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो यहां सबसे नजदीकी है, लेकिन सड़क मार्ग सिर्फ गोविंद घाट तक ही जुड़ा हुआ है। वहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। गोविंद घाट जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से लेकर 292 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और मोटर जो योग्य जो सड़कें हैं वो यहां पर हैं जो अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हवाई अड्डा यहां से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दिल्ली से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आप दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो जॉली ग्रांट के लिए आप प्लेन ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात यहां पहुंचने की। बहुत सारी चीजें और भी हैं जानने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद बताऊंगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल

जी हाँ, हम सभी का कुछ ऐसा ही नाता है आकाशवाणी के साथ, क्योंकि हम दिन रात इसके साथ जुड़े रहते हैं और इतनी सारी चीजें हमें जानने के लिए मिलती हैं। आप देखिए ना, जैसे मैं आपको ले चली हूँ फूलों की घाटी और आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर और घूमने के लिए क्या क्या है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो तो आप देख ही लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे और इसके अलावा अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग तरह के खिले हुए घाटी के अंदर फूल और उनके रंग देखकर सचमुच आपका मन बहल जाएगा और फिर आप कहेंगे कि भाई मैं तो यहीं पर रह जाऊं, कहीं ना जाऊं। इसके अलावा आप चाहें तो घाघरिया जा सकते हैं, ये घाटी का बेस कैंप है। फूलों की घाटी जाने के लिए आपको यहीं पर रुकना होगा और यहां के चारों ओर के नजारे और हरियाली आपका दिल जीत लेगी। हेमकुंड साहिब भी है, यहां सिखों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल है ये, जो कि बहुत ही देखने लायक खूबसूरत तो है ही, आपको एक अलग ही धार्मिक वाइब भी देता है। यहाँ का बर्फीला झील जो है वो भी एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। अगर आप यहाँ पर जाएं, गुरुद्वारा तो है ही जिसके अंदर आप दर्शन करने जा सकते हैं। पुष्पावती नदी का भी आप नजारा ले सकते हैं। अगर ये नदी सीधे फूलों की घाटी के बीच से होकर गुजरती है तो फिर सोचिए कि कैसा मजा आता होगा। सचमुच ये वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगी और इसका जो पानी है वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको सचमुच नजारे का आनंद लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आप यहां पर आराम से इस जगह को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और आसपास के नजारे देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं तो घाटी के रास्ते में बद्रीनाथ मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर और इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा माणा गांव, जो भारत का पहला गांव माना जाता है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो फिर यहां पर भी आप जरूर जाइएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं यहां पर देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये खूबसूरत गीत लता जी और रफी साहब की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

और ट्रैकिंग गियर मिल सकते हैं आपको। आप अपनी इस खूबसूरत यात्रा के दौरान कुछ चीजें खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। स्थानीय जड़ी बूटियां और मसाले यहां पर मिल जाएंगे। यहां के पहाड़ों में उगाई जाने वाली शुद्ध जड़ी बूटियां, शहद और मसाले जैसे जाखिया और बहुत से काला जीरा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद कर ला सकते हैं। आपका घर का बना हुआ अचार भी आप यहां पर ले सकते हैं और रोडोडेंड्रोन यानी बुरांश का जूस या जैम और स्थानीय शहद आप खरीद सकते हैं। और ये चीजें एकदम शुद्ध होती हैं क्योंकि यहीं पर उगाई जाती हैं, यहीं पर बनाई जाती हैं। और उन्हीं वस्त्रों की अगर बात करें तो रास्ते में जोशीमठ या घांगरिया जैसे पड़ावों पर स्थानीय बुनकरों द्वारा बुने गए स्वेटर, शॉल, मफलर और टोपी भी आप खरीद सकते हैं। हस्तशिल्प की बात करूं तो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले लकड़ी के शोपीस, पेंटिंग्स और बहुत सी ऐसी यादगार चीजों को आप यहाँ पर अपने घर लेकर आ सकते हैं ताकि आपकी ये यात्रा आपको हमेशा याद रहे। वोकल फॉर लोकल बनिए, वहां के लोकल लोगों से कुछ ना कुछ जरूर खरीद लीजिए क्योंकि यही उनकी आजीविका का एक खास जरिया होता है। अगर आप ट्रैकिंग के दौरान कोई जरूरी सामान भूल गए हैं तो बेस कैंप से ट्रैकिंग पोल, रेनकोट, बैग और वाटरप्रूफ दस्ताने खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी यात्रा के लिए आपके काम आएंगे यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कचरा बिल्कुल मत फैलाइएगा, प्लास्टिक की चीजों से बचिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको याद दिला दूं कि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे गंदा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और जोशीमठ सबसे अच्छी जगह है जहां से आप जरूरी सामान या फिर कोई भी चीज ऐसी खरीद सकते हैं जो आपको यहां पर जरूरत हो। और अगर मैं बात करूं तो फूलों की घाटी का जो मेन ट्रैक है नेशनल पार्क के अंदर, कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। यहां जाने से पहले आप बेस कैंप या नजदीकी गांव जैसे कि गोविंद घाट और घांगरिया में पहाड़ी और पारंपरिक गढ़वाली व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं जैसे फाणू, कंडेली का साग, गहत की दाल और स्थानीय मंडुआ या झंगोरा की रोटी, आप इसे यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। गर्म आलू के गुटके और कचौड़ी भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। और मीठे की बात करें तो झंगोरा की खीर एक पहाड़ी मिष्ठान है, इसका भी आप टेस्ट यहां पर ले सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप 10-15 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पैदल सफर करना पड़ता है, इसलिए अपने बैग में एनर्जी के लिए कुछ स्नैक्स को आपको जरूर रख लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट अगर आपके पास हो तो इन्हें आप रख लीजिएगा। ORS रख सकते हैं आप अपने साथ और ग्लूकोज पाउडर को आप हो सके तो जरूर रख लीजिएगा। पानी में मिलाकर आप पियेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों को आप देखकर जब आपका मन मुग्ध हो जाएगा तो फिर सचमुच आप मुझे याद जरूर करेंगे कि भाई ऐसी इतनी खूबसूरत जगह हमें बताई और हम यहाँ पहुंच गए। वैसे आपको बताऊं कि पौराणिक महत्व भी है इस जगह का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने आए थे। तो आप समझ सकते हैं आपकी कितनी खास है ये जगह। और अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के फूल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप देख पाएंगे। कौथिक या मेले की बात करूं तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में लगने वाले पारंपरिक मेलों को कौथिक कहा जाता है और इनमें स्थानीय संस्कृति और संगीत और पारंपरिक उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाते हैं। चैत्र महीने की शुरुआत में यानी मार्च के बीचों बीच सुबह यहां पर घरों की देहली पर फूल और चावल चढ़ाए जाते हैं, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मेला जो है ये फूल मेला, संक्रांति और ये सभी त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। फूल दही कहा जाता है इसे, फूल संस्कृति संक्रांति भी कहते हैं इसे। और ये उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध फूलों का त्योहार है। अगर आप इस दौरान यहाँ जाएं तो इस त्योहार का आनंद जरूर लीजिएगा। वैसे बहुत से मेले भी लगते हैं यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं के बदलाव के समय पर, यहाँ आप उन मेलों का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल तो आप किस इस गीत का आनंद लीजिए जो आप तक मैं पहुंचाने वाली हूँ, ये रहा आपके लिए लता जी और रफी साहब की आवाज़।

0: तो भाई अगर आपको वक्त मिले तो पहुंच जाइए फूलों की घाटी, ट्रैकिंग कीजिए। 3-4 दिन का समय आपको यहाँ पर बहुत मजेदार ट्रैकिंग का मौका मिलेगा। गोविंद घाट से घाघरिया तक आप जाएंगे, ये भी एक ट्रैक है जहाँ पर चढ़ाई है, फिर घाघरिया से फूलों की घाटी और फिर घाघरिया वापसी, और यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा चलना है घाघरिया से हेमकुंड साहिब, और चौथे दिन घाघरिया से गोविंद घाट तक की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत मजेदार यात्रा होने वाली है, तो जब भी आपको मौका मिले पहुंच जाइए यहाँ फूलों की घाटी की सैर करने के लिए। लेकिन अब तो वक्त नहीं बचा है, मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल वक्त है हिंदी अंग्रेजी समाचारों का। आज के लिए मेरा और आपका सफर इतना ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।

0: 0.25%.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore.

Sweden. श्रोताओं, जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नए अनुभव देता है और कुछ ऐसी स्मृतियां सौंप जाता है जो जीवन भर हमारा साथ निभाती हैं। समय के साथ मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन परिवारों को जोड़कर रखने वाला प्रेम, अपनापन और संस्कार कभी नहीं बदलते। ये वो मूल्य हैं जो हमारे घर को केवल एक मकान नहीं बल्कि एक सजीव और खुशहाल घर आंगन बनाते हैं। इन्हीं रिश्तों और संवेदनाओं को लेकर हम रोज आपके साथ आते हैं। और नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ श्रुति बुरी और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, इंद्रप्रस्थ 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शुक्रवार का ये अंक एक कदम बुजुर्गों की ओर सभी वरिष्ठ जन को समर्पित है, जहां हम बात करते हैं उनके स्वास्थ्य, सुख, सम्मान, सुरक्षा और जीवन से जुड़े सभी विभिन्न पहलुओं पर। यदि आप इस कार्यक्रम के विषयों पर अपनी कोई राय, सुझाव या अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। तो आइए मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम अपने बुजुर्गों की ओर इस गीत के साथ। कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और साथियों, अब समय है सुविचार का। बदलते समय में सोच और कर्म दोनों का रूप बदलता है और यही हमारे समाज को आगे बढ़ाता है। आज का सुविचार हमने कवि नागार्जुन से लिया है, जिन्होंने कहा है कि परंपराओं को तोड़ना ही एक परंपरा है। परिवर्तन न तो विद्रोह है न केवल नूतनवाद, ये सहजता, जागरूकता और समय के अनुसार बेजान और पुरानी हो चुकी रीतियों को बदलना है। जब कोई परंपरा लोगों को इज्जत और स्वतंत्रता देती है तो उसे अपनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि कोई परंपरा मानवता को चोट पहुंचाती है या विकास को रोकती है तो उसे बदलना या छोड़ना ही एक सकारात्मक और जिम्मेदार कदम है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि कल हिंदी फिल्म जगत ने एक ऐसे निर्माता को खो दिया जिसने व्यावसायिक सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में दी। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का कल 4 जून को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1982 में हथकड़ी से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और इसके साथ ही इल्ज़ाम, आग ही आग, पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना, शोला और शबनम, आंखें और अंदाज जैसी

सफल फिल्मों का निर्माण भी पहलाज निहलानी ने किया। आपको बता दें कि सिनेमा के नियमन और प्रमाणन की प्रक्रिया में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2015 से 2017 तक CBFC के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया। अपने लंबे फिल्मी अनुभव, स्पष्ट विचारों और सिनेमा के प्रति समर्पण के कारण पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म उद्योग में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके निधन से हिंदी सिनेमा ने अपना एक महत्वपूर्ण अध्याय खो दिया है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शत शत नमन करते हैं। और श्रद्धांजलि स्वरूप आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत। इल्जाम फिल्म में ये हैं आशा भोसले और अमित कुमार।

खतरे में है। इसका असर सीधे हमारी सेहत, किसानों की कमाई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होता है। गंदगी हवा सांस की बीमारियां बढ़ाती है, गंदा पानी पेट की बीमारियां फैलाता है और कम होती जैव विविधता फसलों और खेती को नुकसान पहुंचाती है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इसीलिए हम बात करेंगे क्योंकि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसलिए स्थापित किया गया कि पूरी दुनिया प्रकृति की सुरक्षा के लिए जागे और मिलकर काम करे। पर्यावरण रक्षा रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां दुनिया के बड़े बदलाव बनती हैं। तो आज हम एक वादा करते हैं कि आज से हम हर रोज एक छोटी आदत बदलेंगे और जो आदत आप बदलेंगे उसे हमें लिख भेजिए, हम अपने अगले कार्यक्रम में साझा करेंगे। और श्रोताओं, आज अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। समुद्र हमें रोजाना हजारों टन मछली देता है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अगर मछली पकड़ने के नियम तोड़ दिए जाएं तो ये खजाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी खतरे को समझकर हर साल 5 जून को अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कई मछुआरे बिना परमिट के मना जगहों पर और मना औजारों के साथ मछली पकड़ रहे हैं, जिससे समुद्र के जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं और मछलियां कम हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और 2018 से इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये दिवस इस संदेश को पहुंचाता है कि मछुआरों को ईमानदारी और कानून के अनुसार मछली पकड़नी चाहिए, बिना छुपाए और बिना नियम तोड़े। इससे समुद्र स्वस्थ रहेगा, मछलियों का भंडार बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी ख्याल आया है कि वो पसंदीदा गाना जो आप सुबह नाश्ते के दौरान रेडियो पर सुनते हैं या गाड़ी चलाते समय सुनते हैं, वो आप तक कैसे पहुंचता है? इसका जवाब है कि जब 1993 में आकाशवाणी ने पहली बार निजी कंपनियों को अपने FM चैनलों पर प्रसारण समय किराए पर देना शुरू किया। 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई से शुरू हुआ ये कारवां कुछ ही महीनों में चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे शहरों तक फैल गया। इस नई योजना ने निजी निर्माताओं को पहली बार कार्यक्रम बनाने, विज्ञापन बुक करने और उन्हें आकाशवाणी के FM चैनलों पर प्रसारित करने की अनुमति दी, जिसने रेडियो की दुनिया में निजी संस्थाओं के प्रवेश का द्वार खोल दिया। इस क्रांतिकारी बदलाव के साथ रेडियो के चेहरे में बड़ा परिवर्तन आया। अब श्रोताओं को सुनने को मिलने लगा पश्चिमी संगीत, प्रायोजित कार्यक्रम, गानों का काउंटडाउन और मशहूर हस्तियों के चैट शो, और सभी कुछ शहरी जीवन शैली के अनुरूप। ये पहल भारत में रेडियो निजीकरण की नींव रखने वाली साबित हुई, जिसने बाद में और भी व्यापक बदलावों का रास्ता साफ किया। आज के FM स्टेशन न केवल संगीत और मनोरंजन देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य समाचार, ट्रैफिक अपडेट, मौसम की जानकारी और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। रेडियो आज भी सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम बना हुआ है, जो ग्रामीण भारत में भी लाखों श्रोताओं तक पहुंच रहा है। ये 1993 की छोटी सी शुरुआत आज एक विशाल मीडिया उद्योग में बदल चुकी है, जिसने भारत के मीडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

बंदिनी फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें योग के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन को संतुलित और ऊर्जावान बनाने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। आज जब जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक श्रम की कमी और बढ़ती उम्र के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं, तब योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग एक ऐसा सहारा बनकर उभरता है जो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सक्रिय जीवन प्रदान कर सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियों की शक्ति कम होने लगती है और शरीर की लचक भी पहले जैसी नहीं रहती। ऐसे में पीठ और गर्दन का दर्द बुजुर्गों की सबसे आम समस्या बन जाता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, गलत ढंग से उठना बैठना या वर्षों की शारीरिक थकान भी इन दर्दों का कारण बन सकती है। कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि दैनिक कार्य करना भी कठिन हो जाता है और व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होने लगता है। ऐसी स्थिति में योग एक प्रभावी और सुरक्षित उपाय के रूप में सामने आता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सरल योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, मकरासन, शशांकासन और मरजासन जैसे जो प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों की सलाह के साथ किए जाते हैं, वो काफी लाभप्रद होते हैं। इसके साथ ही प्राणायाम और गहरी श्वास लेने के अभ्यास से भी शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और मन भी शांत रहता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है श्रोताओं कि किसी भी प्रकार का योगाभ्यास आपकी स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है या आपका कोई दर्द अत्यधिक ज़्यादा है यानी ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आपको विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही योग अभ्यास करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि श्रोताओं, आप योग को अपनाएं और सुबह सुबह नीले गगन की जो एक छाया है, जो रोशनी है, उसमें आप किसी बाग बागीचे में जाएं और योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें।

आम्रपाली फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। साथियों, गर्मियों का मौसम अपने साथ धूप की चमक, आम की मिठास और सुबह शाम की हल्की सैर का आनंद लेकर आता है। यही मौसम हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता कम होने लगती है, इसलिए कई बार बुजुर्गों को एहसास ही नहीं होता कि उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है। ऐसे में डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। गर्मियों में शरीर को पसीने के माध्यम से पानी और आवश्यक लवण जो होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, और उनकी पूर्ति अगर समय पर न की जाए तो शरीर में कमजोरी, थकान और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि डिहाइड्रेशन की पहचान कैसे की जाए। तो कुछ संकेत हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, मुंह और गले का सूखना, चक्कर आना, सिर भारी लगना, अत्यधिक थकान महसूस होना और कई बार यूरिन यानी पेशाब का रंग जो है वो गहरा हो जाता है और उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। कई बार बुजुर्गों में भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन और अचानक कमजोरी भी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकती है। यदि ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें हल्के में

नहीं लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से पानी पिएं, केवल प्यास लगने का इंतजार ना करें। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, बेल का शरबत है और ताजे फलों का रस भी आप पी सकते हैं, जो शरीर को तरोताज़ा रखता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं, वो भी शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। गर्मियों में दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, उससे बचना चाहिए। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर पर टोपियां छाते से ढककर ही बाहर निकलें और अपने साथ बाहर जाते समय पानी की बोतल अवश्य रखें। घर के भीतर भी कमरे को हवादार बनाए रखें और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचें। परिवार के सदस्य समय समय पर बुजुर्गों के लिए पानी की याद उन्हें दिला सकते हैं, उन्हें पानी पिला सकते हैं और उनकी दिनचर्या पर भी ध्यान रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन का आधार केवल दवाइयां नहीं होती श्रोताओं, वो हैं सही आदतें जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं। गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और शरीर के संकेतों को समझना डिहाइड्रेशन से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। तो स्वस्थ रहें श्रोताओं, सतर्क रहें और अपने जीवन में हर मौसम का आनंद लेते रहें। Oh, oh, oh.

काला पानी फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह की पहली किरण के साथ एक प्याली गर्मा गर्म चाय दिन बना देती है। हमारे देश में चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। किसी मेहमान के स्वागत से दोस्तों की महफिल तक, परिवार की बातचीत से लेकर दफ्तर की छोटी सी ब्रेक तक, हर जगह चाय ही तो मौजूद है। चाय को अक्सर लोग दिलों को जोड़ने वाला पेय कहते हैं। एक कप चाय के साथ शुरू होती है बातचीत, कई रिश्तों को गहरा बना देती है और अनजान लोगों को भी अपना सा महसूस कराती है। भारत में चाय हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। गांव की चौपाल हो या शहर में चाय की दुकान का ठेला, चाय के आसपास हमेशा संवाद, विचार और अपनापन ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय का वो खास स्वाद और मन को मोह लेने वाली खुशबू आखिर आती कहाँ से है? इसका राज कहाँ छिपा है? इसका राज है चाय मसाले में। बाजार में कई तरह के चाय मसाले उपलब्ध हैं, लेकिन घर पर भी चाय मसाला तैयार किया जा सकता है जो न केवल शुद्ध होता है बल्कि उसकी सुगंध और स्वाद भी अलग ही आनंद देता है। घर पर चाय मसाला बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको लगभग 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम काली मिर्ची और 20 ग्राम सौंठ यानी सूखी अदरक जो होती है, और 5 ग्राम जायफल और एक छोटा चम्मच अगर आप सौंफ का ले लें, और आप चाहें तो उसमें गुलाब, सूखे गुलाब की पत्तियां भी मिला सकते हैं या खसखस का थोड़ा सा आप उसमें मिश्रण बना सकते हैं, वो भी चाय को बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। इन सभी मसालों को पहले आप हल्की आँच पर 1-2 मिनट के लिए भून लें ताकि उनकी प्राकृतिक सुगंध और भी निखर कर आए। इसके बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर मिक्सर या सिलबट्टे की सहायता से पीस लें। तैयार मसाले को किसी साफ और सूखे कांच के जार में भर कर रख दें। जब भी चाय बनानी हो, एक कप चाय में केवल एक चुटकी मसाला डाल दें। देखते ही देखते आपकी साधारण चाय जो है ना, वो एक सुगंधित और स्वादिष्ट मसाला चाय में बदल जाएगी। इलायची स्वाद बढ़ाती है, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शरीर को गर्माहट देती हैं, जबकि सौंठ पाचन में सहायक होती है। तो अगली बार जब भी चाय की केतली चढ़े ना घर में, तो उसमें अपने हाथों से तैयार किया गया ये चाय मसाला जरूर मिलाइए। यकीन मानिए, इसकी खुशबू केवल चाय में ही नहीं बल्कि घर में माहौल में एक मिठास घोल देगी। तो आखिर चाय तो वही है ना जो स्वाद के साथ साथ अपनापन भी परोसे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सौतन फिल्म में सुन रहे हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय भी थोड़ा सा समाप्त हो रहा है, तो क्यों ना आज फिर से हम अपने वरिष्ठ जनों के लिए एक अपनापन और सम्मान बढ़ाएं और आपसे कहें कि आप fmgoldga@gmail.com पर हमें अपने अनुभव, अपने विचार ज़रूर भेजें। तो कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है, मुझे

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मशहूर निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर बासु चैटर्जी के बारे में। जी हाँ, इनका निर्देशन और इनकी बनाई हुई फिल्में आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाए हुए टीवी सीरियल भी काफी मशहूर हुए।

बासु चैटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुई। यहीं पर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी की। बासु चैटर्जी को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था और 21 साल की उम्र में बासु चैटर्जी मुंबई चले आए। लेकिन ये मुंबई फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि एक मिलिट्री स्कूल में लाइब्रेरियन के लिए आए थे, क्योंकि इनकी यहां पर जॉब लग चुकी थी।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, लाइब्रेरियन की जॉब करते हुए बासु चैटर्जी ने साहित्य का अच्छा अध्ययन कर लिया था और

के बाद उन्होंने तकरीबन 15 साल तक ब्रिक्स मैगजीन के लिए एक कार्टूनिस्ट का काम भी किया। उसके बाद वो सन 1966 के करीब एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य के संपर्क में आए, जो कि उस वक्त फिल्म तीसरी कसम बना रहे थे। बासु चैटर्जी ने बासु भट्टाचार्य के साथ फिल्म तीसरी कसम में पहली बार बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद उन्होंने भट्टाचार्य के साथ ही फिल्म सरस्वती चंद्र भी डायरेक्ट की।

बासु चैटर्जी ने सन 1969 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था सारा आकाश। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में जहां एक तरफ कमर्शियल सिनेमा में एक ही तरह की फिल्मों का चलन था, वहीं बासु चैटर्जी ने उससे अलग हटकर अपनी फिल्मों में एक मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन की वास्तविक

फिल्मों की तो फिल्म छोटी सी बात, चित चोर, रजनीगंधा, पिया का घर, खट्टा मीठा, चक्रव्यूह, बातों बातों में, प्रियतमा, मनपसंद, हमारी बहू अलका, शौकीन और चमेली की शादी कुछ ऐसी चर्चित फिल्में हैं जो दर्शकों के बीच आज भी काफी पसंद की जाती हैं। बासु चटर्जी ने सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए ही नहीं बल्कि बंगाली में भी कई फिल्में लिखीं। उन्होंने कई चर्चित टीवी सीरियल की भी रचना की, जिनमें ब्योमकेश बख्शी, रजनी, काकाजी कहीन और दर्पण आदि बहुत ही फेमस टीवी सीरियल रहे हैं।

दोस्तों, मशहूर निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर बासु चैटर्जी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर बासु चैटर्जी के बारे में। दोस्तों, बात करें बासु चैटर्जी की उपलब्धियों की तो उन्हें फिल्म सारा आकाश, छोटी सी बात, चितचोर और फिल्म कमला की मौत के लिए टोटल 4 बार सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं फिल्म जीना यहां और रजनीगंधा के लिए उन्हें 2 बार सन 1975 और 1980 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1978 में आई फिल्म स्वामी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार और सन 1992 में आई फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। और सन 2007 में बासु चैटर्जी को आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया।
2: उठे सबके कदम, देखो रंग।

दोस्तों, बासु चैटर्जी की फिल्मों में जहां एक तरफ मिडिल क्लास की वास्तविकता का सजीव चित्रण देखने को मिलता था, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्मों के गाने भी उच्च कोटि के हुआ करते थे। ऐसे महान निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर बासु चैटर्जी ने 4 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा ही समाज को आईना दिखाती रहेंगी।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: जिंदगी सिर्फ अमृत ही नहीं, जहर भी है। और फिर जरा सोचो तो

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्कात में असासों के फायदों पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल की उम्र तक के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सड़क, बिजली और सनाती शोबों के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे जिनकी मालियत 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम हजीरा जाएंगे और सहपहर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करने से पहले सनाती और बुनियादी ढांचे की जारी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। बाद में शाम को वजीर आजम दमन का दौरा करेंगे जहां वो कौम के लिए हिफ्जान सेहत और हवाबाजी के बड़े बुनियादी ढांचे समेत दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो मरकज के जेर इंतजाम इलाके लक्षद्वीप के लिए अहमियत के हामिल बहरी प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है हमारे नामा निगार की रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और जदीद नमो अस्पताल की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे जिससे इलाकाई फजाई राब्तों को इस्तेहकाम हासिल होगा और मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में हिफ्जान सेहत तक मजीद रसाई हासिल होगी। वो बुनियादी ढांचे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे जिसमें आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस भी शामिल है। समुद्री तरक्की के लिए अहम कदम के तौर पर वजीर आजम मरकज के जेर इंतजाम इलाके लक्षद्वीप में बंदरगाह प्रोजेक्टों के लिए इजाफी तौर पर संग बुनियाद रखेंगे जिनकी लागत 885 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों से काला पानी और कदमत जजीरों की तरक्की में इजाफा होगा। मुसाफिरों और बहरी जहाजों की साल भर की आमदोरफ्त बढ़ेगी। इसके अलावा माही परवरी नीस कश्तियों की मरम्मत की सहूलियात में इजाफा होगा। सूरत से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफर को काबिल तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के इको निजाम में सरमायाकारी की सबसे बड़ी तजवीज है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की सरमायाकारी से क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की पोजीशन को इस्तेहकाम हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके योम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए उनका काम काबिले सताइश है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में लंकामुरा सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए सरहदी हिफाजत का एक जामे खाका पेश किया है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर जनाब शाह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों के माहौलियाती ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2019 में सी ए

0: पीएफ अमले ने तकरीबन 4,40,00,000 पौधे लगाए थे। वजीर दाखिला ने सरहदी हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के सरहदी इलाकों में गैर कानूनी आबादी में तब्दीली की रोकथाम की पाबंद है। उन्होंने बताया कि सरहद पर पुरानी बाड़ को हटाकर 119 किलोमीटर नई बाड़ की तामीर के लिए रकम की मंजूरी दे दी गई है।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की इदाराजाती सरमायाकारों और सरकारी तमस्सुकात में सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिल इतलाक होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि इससे पहले उसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फीन की कीमतों के अशारिये पर मबनी अफरात जर की शरह का निशाना अब 5.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरी न रुकावटों, बैन अल्अक्वामी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया है। RBI ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौकों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदन नितिन नबीन ने तमिलनाडु में BJP के चीफ के अन्नामलाई की तरफ से दिए गए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में अन्नामलाई ने BJP के सदर को अपना इस्तीफा पेश किया था। 12वीं जमात के तलबा की तरफ से CBSE के नतायज के बाद की शिकायतों के अजाले के अमल के लिए 70,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 3,314 दरखास्तें, नंबरों की तौसीक और दोबारा जांच के लिए 63,000 से ज्यादा दरखास्तें शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नेपाली वजीर खारजा नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तरफैन तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और अवाम से अवाम के राब्तों समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रे अर्थ पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का इफ्तिताह किया। जापान में 18 साल की उम्र तक के मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच काका मीगा हारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में एहसासों के फायदों पर गैर मुल्की इदाराजाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली ना करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी,

0: reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed. Government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास

0: पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
1: विनोद कुमार।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और विनोद, आज है खास तारीख यानी कि 5 जून है और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आज भी पूरे विश्व में इसे बड़ी ही जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। और इसका खास तौर पर उद्देश्य होता है कि खास तौर पर लोगों को आज के दिन तो पर्यावरण के प्रति जरूर सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए और उन्हें एक बार फिर से झकझोरा जाए कि सच में जरूरत है पर्यावरण को बचाने की।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, एक दिन तो ये ऐसा आता है कि जब हम बताते हैं कि भाई ये वाली चीजें, बीच बीच में भी हम जिक्र करते रहते हैं, तो इसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दिन की बजाय हम इसको पूरे साल सोच के चले। जैसे आज मुहिम निकाली है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, ठीक उसी प्रकार पेड़ हमने लगा दिया उसकी देखभाल हम करें, क्योंकि अभी देख रहे हैं मौसम जिस हिसाब से बदल रहा है, हीट वेव चल रही है, कहीं ना कहीं कारण यही है। खेतों से हमने अपने पेड़ पौधे हटा दिए हैं, तो उन चीजों पे ध्यान ज्यादा रखें। देख रेख जहां भी खेत के आसपास मेड़ पे पेड़ पौधा दिखे, खुले खेत जब हमारे होते हैं तो उसकी जो बाड़ मंदी करनी है वो हम जरूर करें। आसपास उसके गोल गोल जो हम शहर में देखते हैं, ये इस तरीके एक जाल बना के लगा दिया, उस पेड़ की रक्षा करना ही असली बात आती है फिर विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इस तरीके से हम उसको और अच्छा बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विश्व का जो पर्यावरण है बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, हो सकता है कि हम उस जिम्मेदारी को अलग अलग तरीके से निभाएं और हमें उस अपनी जिम्मेदारी को, अपने हिस्से के रोल को जरूर पूरा करना है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी और आज विषय है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण संरक्षण। और आज हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और जैसे कि सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो आज सबसे पहले तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई और इस बार की थीम क्या रहेगी?
2: विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई वो विशेष रूप से जो औद्योगिक विकास हुए, शहरीकरण हुए, तो उनका मानव जीवन पे या उनके स्वास्थ्य पे जब असर पड़ने लगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मानव पर्यावरण पे एक जो है स्टॉकहोम में सम्मेलन किया गया 1972 में, और उसमें ये रखा गया कि जो पर्यावरण से होने वाले नुकसान है स्वास्थ्य को या जीव जंतुओं को, उनको कैसे उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसके लिए पर्यावरण दिवस 5 जून, पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को शुरू किया गया, जिसका मकसद ये था कि लोग पर्यावरण के बारे में जानें और उससे होने वाले नुकसान जो हो रहे हैं उनके प्रति सतर्क रहें और कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो मेन उद्देश्य इसका जो है रहा। और इस संदर्भ में अभी जो इसका, चूंकि प्रतिवर्ष इसके कुछ न कुछ जब हम पर्यावरण दिवस मनाते रहे हैं, तो उसका एक थीम रहा है। इस बार जो थीम रखा गया है वो प्रकृति से प्रेरित जलवायु और हमारे भविष्य के लिए, उसमें जो ठोस कदम उठाए जा सकते हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक रखना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना या उनको उनकी भागीदारी या सहभागिता को सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन चीजें हो जाती हैं।
1: तो भैया रब साहब, अब एक दिन के लिए हम इतना यहाँ से भी जो हमारे किसान साथी हैं या फिर जो हमारे और दूसरे श्रोता हैं उनको बताते रहते हैं, और विषय भी आज हमारा है कि जो हमारे किसान साथी हैं कृषि वानिकी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें ताकि जो पर्यावरण का संरक्षण है वो हम कर सकें। तो इसमें रब साहब सबसे बड़ा चैलेंज एक बार आता है, जैसे हमारी जोत है, जमीन जो है वो बहुत कम होती जा रही है। जितना भी हमारा ध्यान है किसान साथियों का, वो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैदावार हम कैसे लें, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे कई बार उनका मानना है कि भाई ज्यादा छतरी फैल गई, इसकी बड़ा फैलाव हो गया है, तो हमारी जो पैदावार है वो कम हो रही है। तो क्या इसके अल्टरनेट हैं और कैसे हम अपने जो किसान

0: साथी हैं उनको बता सकते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, कितना खेती में असर पड़ेगा?
1: बिल्कुल, जैसा कि कृषि वानिकी, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक अपना जो भूमि है उसको प्रबंध कैसे किया जाए बेहतर तरीके से, उसका भी ज्ञान है, जिसमें विशेष रूप से जो फसलें हैं और पेड़ पौधे हैं उनको जो है एक साथ या उसके अलावा और भी पशुओं तक भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो कृषि वानिकी एक बृहत्तम स्तर पे ये अपना अस्तित्व रखता है। लेकिन जैसा कि आप पहले भी कुछ बता रहे थे कि पेड़ों के किनारे पौधों को लगाना, तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो खेत छोटे हो रहे हैं, पर्यावरण वानिकी के तहत कुछ पौधों का चुनाव वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौन सी फसल आप लगा रहे हैं, फसलों के साथ उसके जो कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जो पौधे हैं जैसे कि उनका पर्पज क्या है, जैसे आप कह लीजिए कि जो फसल है उसका संरक्षण पशुओं से करना या हवा से संरक्षण करना, विशेष रूप से गर्मी में गर्म हवाएं कई बार फसलों को झुलसा देती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके बड़े फायदे हैं। तो जैसे उसके जो लगाने के लिए पौधों का चयन करना है वो छोटे स्तर के हों और उसमें जो विधियां बताई गई हैं, विशेष रूप से कि खिमेड़ों के ऊपर लगाना, जिससे क्या होता है कि आपको फसल को संरक्षण भी मिलता है, दूसरा चीज है कि जो पर्यावरण से संबंधित लाभ है
0: जी
1: वो भी मिलते रहते हैं। विशेष रूप से अगर कोई बड़ी एरिया है तब तो बड़े पौधे चयन कर सकते हैं, और उसमें अगर वानिकी के तहत जरूरी नहीं कि आप बड़े पेड़ लगाएं, जो आपका कॉम्बिनेशन जो आपकी जरूरत के हिसाब से कहते हैं कि ऐसा फसलों का चयन या पौधों का चयन करें जिससे दोनों फसलों का भी लाभ मिल सके आपको और पेड़ों से भी जो लाभ है दो दो लाभ मिल सके।
0: तो वो किस हिसाब से चयन करें, अगर मैं अपने उत्तर भारत की अगर यहाँ बात करूँ तो एक तो ये डॉक्टर साहब मैं फसल का चयन तो एक बार ही करूंगा क्योंकि वो तो मेरा जो फसल चक्र है वो चलता ही रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: पौधे का जो मेरा है जो मैं पेड़ लगाना चाह रहा हूँ एक बार सोच सकता हूँ कि भाई मुझे इस तरीके का चाहिए, क्योंकि वो तो फिर मेरा 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा वो चीज।
1: बिल्कुल,
0: तो कैसे ऐसे पौधे हैं कौन कौन से जो भाई जिनसे मुझे कमर्शियल भी बहुत फायदा उसके अंदर पहुंचे कि भाई 5 साल के बाद ये जो मेरा पेड़ है इतना हो जाएगा, मुझे फिर अगर मेरी फसल कम भी हो रही है तो मुझे मुनाफा देके जाएगा, लाभ मुझे मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: वो चयन कैसे करें?
1: उसके लिए ये पहले ध्यान में रखना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, और विशेष रूप से जब आप पेड़ पौधों का चयन करें तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आपको 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर लाभ लेना है, जैसे पॉपुलर है, पॉपुलर एक ऐसी प्रजाति है वृक्ष पेड़ की जो 3 से 5 साल में आप उसको लगा करके उसका जो है कि कमर्शियल जो उपयोग भी उसका काफी है, तो 5 साल के लिए उसको लगा करके जो लाभ है आप खेती के साथ ले सकते हैं। लेकिन ऐसी जमीन जो जहां आपको लगता है कि इसमें लंबे समय तक आप मान लीजिए लकड़ी के लिए आपका उद्देश्य है कि हमको लकड़ी पैदा करना है बाजार के लिए, तब तो बड़े पौधों का चयन करें। लेकिन विशेष रूप से जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंडस्ट्री जिससे माचिस की तीली जैसे आज के सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली चीज है, तो पॉपुलर से आजकल पॉपुलर के पौधों का उपयोग जो कि तीली बनाने के रूप में बहुत कॉमर्शियल वैल्यू रखता है,
0: प्लाई के लिए, प्लाईवुड के इंडस्ट्री के लिए सारा पॉपुलर से
1: तो 3 से 5 साल में आप उसको मतलब हटा सकते हैं। तो लंबे समय तक अगर रखना है वुड मान लीजिए कि किसी को आप फर्नीचर के पर्पज से आप लकड़ी बेचना चाहते हैं तब तो बड़े पौधों का चयन करें और जो उसके लिए जो प्रजातियां संस्तुत की गई उनका चयन करें। लेकिन छोटे स्तर पे जैसे 3 साल 5 साल तो आपका पर्पज क्या है पहले ही निर्धारित करना जरूरत उसकी जरूरत है। और उनके साथ एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जब आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उस जमीन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन का एक तरीका है, तो भूमि से कैसे भूमि को प्रबंध किया जाए और कैसे उसका काम जो व्यवसायिक लाभ है लिया जाए, तो उसमें फसलों का आपके पेड़ों का चयन करना और आप निश्चित उद्देश्य के साथ उनका चयन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब अगर ठीक है ये तो व्यवसायीकरण की बात होगी, अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। भाई मेरा जिम्मेदारी है, मेरे पास खेत है, मुझे उसका

0: पर्यावरण के लिए अब चीजें करनी है, तो मैं अपने खेत से कैसे उसकी शुरुआत करूं और मुझे किन-किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई मैं पर्यावरण प्रेमी भी बन के रहूं और जो मेरा खेती में नुकसान है वो भी ना हो।
1: बिल्कुल, जैसा कि आप एक तरह से कह लीजिए कि पेड़ पौधे आज से नहीं, बहुत समय पहले से ही हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न
0: बिल्कुल,
1: अंग
0: प्रकृति
1: रहा
0: का
1: है,
0: एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: महत्वपूर्ण। और इसके एक कह लीजिए कि हरियाली जो कि सबको पसंद है, अगर आप कृषि वानिकी को लेते हैं तो हरियाली, इसके अलावा कहते हैं कि पेड़ पौधे जो है कि प्रकृति के फेफड़े के रूप में काम करते हैं, पेड़ विशेष रूप से। तो आपको जैसे कि जो पर्यावरण है, आज की समस्याएं भी उसी के साथ बढ़ती जा रही हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन जैसी ज्वलंत समस्या आज शहरों से लेकर के गांव तक बढ़ती जा रही हैं, और उनके प्रभाव भी लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब उजागर होने लगे हैं, कोई छिपाने का वो नहीं रहा। अब उस दशा में अगर आप जो है अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पेड़ पौधे एक तो एक तरह से जो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण है उनको कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन है, जैसा कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी का या हमारी जो जिस भाग में रहते हैं उसका तापमान बढ़ रहा है, तापमान गर्मी महसूस भी कर रहे हैं। तो जो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर मतलब कुछ इस तरह का प्रकृति कह लीजिए पारिस्थितिकी जो होती है, उस एरिया की पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उनको बहुत बढ़िया से चलाए रखने के लिए जो
0: एक
1: उसको
0: कम्बिनेशन
1: संतुलित
0: बना
1: एक
0: के रखना
1: संतुलित
0: होता है,
1: हाँ
0: संतुलित संरक्षण उस तरीके से करते हैं।
1: बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कहते हैं कि जो ऑक्सीजन हमको जो पौधों से ही ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है, और जितनी शुद्ध हवा उतना अच्छा जीवन। तो एक तरह से वो भी मान के चलिए कि आप अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको हवा से लेके बहुत सारी, इवन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो जल को भी प्रदूषित होने से बचाते हैं, यानी जल को प्रदूषित होने की समस्या को भी कम करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लाभ हैं। और एक तरह से ये भी है कि कुछ ऐसी एरिया जहाँ की भूमि कटाव ज्यादा हो रहा हो,
0: या जो मतलब नहर के
1: हाँ
0: आसपास, नदी के आसपास हैं, या
1: बिल्कुल
0: फिर हमारे तटीय क्षेत्र के आसपास की जो खेती है।
1: हाँ, उन क्षेत्रों में जो है ये एक तरह से मिट्टी को कटाव रोकने में भी बड़ा लाभकारी हो सकता है। तो पर्यावरण के जो एक तो जो प्रदूषण है, इसके अलावा जो पारिस्थितिकी है उसको भी संरक्षित करने का बहुत बढ़िया काम करते हैं। दूसरा ये है कि आज चर्चा हर जगह है कि पेड़ों की संख्या एक जो एरिया है निर्धारित रखी जाना जाना आवश्यक है पूरे धरती पे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे। एक श्रोता लाइन पे हैं, एक बार जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। लगता है संपर्क कट गया है, कोई नहीं, दोबारा हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से इस तरीके के पेड़ हैं, मैं खास तौर से फलदार अगर पौधों की बात करूं, क्योंकि फलदार में क्या है, किसान साथी मेड़ पे लगाएगा, उसको फल भी मिलेगा और जो हमारा बागवानी क्षेत्र है उधर भी चीजें अच्छी होंगी, और कृषि वाणी की तो एक अपना मुनाफे का सौदा है ही है, और
1: बिल्कुल
0: जल्दी मतलब उसको ये भी ना रहे कि भाई पेड़ की वजह से मेरी फसल खराब हो रही है। तो क्या इसमें हम देखें?
1: इसमें विशेष रूप से जैसा कि आपने पहले ही बताया, कई बार लोगों को लगता है कि पेड़ बड़े होंगे तो छाया होने से नुकसान
0: नीचे
1: भी,
0: फसल नहीं
1: एक
0: होगी
1: नीचे
0: उतना।
1: फसल नहीं होगी। तो जो फसलें और जो पेड़ हैं उनका तो आप फल वाले जो उस एरिया जिस एरिया में रहते हैं किसान भाई, वो उस एरिया के हिसाब से फलों का चयन करें जो वहाँ लोकल रूप से उपलब्ध है। लेकिन जहाँ छाया की समस्या है, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको हम कहते हैं कि छाया से बड़ा उनको प्यार होता है, जैसे हल्दी है, अदरक है, उसके नीचे वो बिल्कुल उसको उगा सकते हैं, जिसमें आप देखिए तो फसल का लाभ, पेड़ के फल का लाभ, हल्दी, अदरक, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका
0: अरवी भी इसी
1: कॉम्बिनेशन
0: का हिस्सा।
1: हाँ वो छाए में बहुत अच्छे से होती हैं। तो इस तरह का जो प्रजातियां हैं उनका चयन करें। कई बार अच्छी प्रजातियों के लिए जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हैं, तो वहां से भी जो रिसेंट जो अभी जो वेराइटियां उनका भी चयन वो कर सकते हैं।
2: जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता अगर चाहें और आज विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आज हमारे फोन नंबर्स काम कर रहे हैं, 2342-1081 और 2342-1083 पे आप सीधे जो भी आपका सवाल है

0: है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसी के संबंधित कृषि वानिकी द्वारा किस तरह से पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं, इससे जुड़े सवालों का स्वागत है। और अगर हम डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि कृषि वानिकी अपनाने वाले किसानों को क्या किसी प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, चुनौतियां तो आनी, अगर आप अगर प्लानिंग नहीं सही ढंग से करते हैं तो चुनौतियां तो आनी है। तो चुनौतियों को उनका समाधान ढूंढने से समाधान वही है कि आप प्लानिंग समय से करें कि अब जहां पौधे लगाने हैं पानी की उपलब्धता कितनी है, किस तरह की प्रजातियां वहां अच्छे से हो सकती हैं। अगर उनका चयन आप सही ढंग से करते हैं तो जो आने वाली चुनौतियां उनका समाधान बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो जो भी किसान भाई इस तरह के या जो भी लोग हैं जो पेड़ों से प्यार है अपने लगाना चाहते हैं, तो कुछ सावधानियां उनको पहले ही थोड़ा सा वर्कआउट कर लें कि उन समस्याओं से उनको आने से पहले ही रोका जा सके। अगर फिर भी आती हैं तो हमारे जो विशेष रूप से कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जिस एरिया में लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ दिल्ली क्षेत्र में रह रहा है तो दिल्ली क्षेत्र में भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या मान लीजिए कोई यूपी में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो हमारे केवीके भी काम करते हैं। तो जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से भी संपर्क करके उसकी जानकारी ली जा सकती है।
0: जी हाँ, तो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति या अन्य योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठाना चाहें तो किस प्रकार से उठा सकते हैं इस पर?
1: इसमें जो बहुत सारी जैसे कृषि कल्प, कृषि मित्र और वृक्ष मित्र करके बहुत सारी इस तरह की जो सरकार की स्कीमें चल रही हैं, तो उनको जो है कि निश्चित रूप से उनकी जानकारी ब्लॉक के माध्यम से, कई बार हमारे जो जिला कृषि जिला वानिकी अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय से समय समय पर जो पेड़ों को लगाने के लिए अनुदान या इस तरह की सहयोगी राशि मिलती है तो उसका भी लोग लाभ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो वानिकी विभाग से संबंधित आप अधिकारी हैं जो लोकल स्तर पे काम करते हैं उनसे भी संपर्क करके अच्छा लाभ लिया जा सकता है।
2: और इसमें अभी एक चीज और भी है कि ठीक है, कई बार हमारे किसान हैं उनको जानकारी नहीं होती और खासतौर से जो हमारे केवीकेज हैं वहां पे जाके वो जानकारी ले लेते हैं, लेकिन आपके माध्यम से अगर हम उनको बताएं कि भाई इस तरीके की चीजें हैं तो कहाँ कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं?
1: हाँ, उसके लिए जो जैसे मान लीजिए कि वृक्षों की जो उपलब्धता है, जो वृक्ष की प्रजातियों की उपलब्धता है, तो जिले स्तर से जो जिला वानिकी अधिकारी कार्यालय से भी उनको वृक्षों के बारे में बहुत सारी जानकारी, जिला कृषि अधिकारी और जो ब्लॉक से संबंधित हमारे जो अधिकारी होते हैं जैसे ग्राम विकास, जो आपका ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय, वहाँ भी बहुत सारी स्कीमें जो इस राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी उपलब्ध होती है, तो उनके माध्यम से भी लोग संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से जो तकनीकी सहयोग चाहिए तो उसके लिए जैसे हम फसलों संबंधित कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से जो है जानकारी ली जा सकती है,
2: ली जा सकती है।
1: बिल्कुल।
2: और डॉक्टर साहब अभी जैसे टाइम आएगा भी आगे, देखो आज भी हम बात कर रहे हैं और अभी जैसे बारिश होनी शुरू होंगी अभी क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, इसके बाद जब साढ़ स्टार्ट हो जाएगा तो साढ़ में खासतौर से सावन में तो फिर हम अपना पेड़ पौधे लगाने शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो सरकारी जो नर्सरियां हैं उनसे अगर हमें निःशुल्क पौधे लेने हो, क्योंकि किसान साथियों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वो चीजें देखते हैं कि यार मैं मतलब इतना पैसे किस लिए लगा रहा हूँ, एक दो पौधा तो वो लगा लेता है, उसके आसपास का क्षेत्र है कुछ बंजर क्षेत्र है या फिर मेड़ है, कोई आने जाने वाले रास्ते हैं, रास्तों के ऊपर पेड़ पौधे लगाने हैं, तो युवा साथी कई बार शुरुआत करते हैं लगाने की, तो निःशुल्क पौधे उनको किस तरीके मिल सकते हैं?
1: निःशुल्क पौधे कुछ जो प्रोग्राम सरकार के हैं गवर्नमेंट के उनके माध्यम से तो मिल जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो नर्सरी हैं उनका प्रबंधन करने के लिए उनको कुछ जो है कि जरूरत तो उनको भी रहती है, तो मेरे समझ से कुछ चार्जेज अगर पेड भी करने हैं तो वो नॉमिनल चार्जेज होते हैं, जिनको जो पेड़ लगाने वाले लोग हैं या जो वृक्ष प्रेमी हैं वो थोड़ा सा

0: उसमें अपना सहयोग, एक तरह से ये हमारे तरह से, एक तरह से कह लीजिए कि हमारी जो सहभागिता है, सहभागिता के लिए थोड़ा खर्च भी करना है तो लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और ये प्रोग्राम में जो जन सहभागिता है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें जो लाभ गवर्नमेंट द्वारा लिए मिल सकते हैं उनको तो लिया ही जाना चाहिए। तो निःशुल्क जो प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्ध पौधे हैं उनको तो लिया जा सकता है, लेकिन मेरे समझ से जन सहभागिता भी बढ़ चढ़ के इसमें होना जरूरत है। और लोग अगर पर्यावरण को बचाना है तो थोड़ा सा उसमें अपनी जन सहभागिता, मतलब अगर पैसे के
1: जरूरी
0: माध्यम
1: हमें
0: से अगर
1: दिखानी है।
0: जरूरत पड़ती है तो। लेकिन ये सब बड़े नॉमिनल होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत बहुत महंगे पौधे मिलते हैं, तो उसमें जरूर से लोग सक्रिय भूमिका निभाएं तो पर्यावरण को संरक्षित करने में हमारा बहुत अच्छा सहयोग हो सकेगा, हम पर्यावरण को बचाने में सफल हो सकेंगे।
1: जी
0: तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं।
2: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उन्नत किसान, और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल अंतराल।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं आज कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। अभी कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हमारे बीच एक श्रोता है, उन्हें ले लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर जी, मैं ये दिल्ली में रंगपुरी फाड़े से बात कर रहा हूँ। मेरा प्लॉट पटौदी में कुछ खेती एरिया है अपना, तो वहाँ 200 का प्लॉट जो कुछ कटे हुए लिए ले रखे हमने 5-7 साल से, फिलहाल खाली है। उसमें कुछ पौधे ऐसे लगाए जाए, जैसे अमरूद है, कई तरह के फल होते हैं। जैसे आगे सरकार उनको रुकावट करती है, कभी जगह बनने लग जाए मकान उकान तो उनको रोकती है, भाई काटे पेड़ नहीं जाए। तो 5-7 साल में कुछ फायदा मिल जाए और आगे जमीन बनाई जाए तो क्या लगाएगा सर जी? ऐसे में
2: नमस्कार जी, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी प्लानिंग, कि मान लीजिए आपको 5 साल बाद आपने सोचा है कि फिर उसको मकान बनाने या जो भी करने हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि जो पौधे 3 साल से 5 साल में हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू है या पपीता है या इस तरह के पौधे, जो छोटे फल वाले पौधे हैं जो कि कम समय में होने शुरू हो जाते हैं। अमरूद भी उसमें है, लेकिन अमरूद थोड़ा सा लंबा समय ले लेता है कई बार, तो जिसको कह लीजिए कि फल तो आने लगते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा समय आपको लगने लगता है, कई बार उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें आपको लेबर खर्च वगैरह बढ़ जाते हैं।
1: तो आज सरकार भी रुकावट डाल देती है, पौधे को नहीं काटना है।
2: बिल्कुल, कुछ देखिए इसमें, एक तो निश्चित रूप से जो सरकार और हमारे वानिकी विभाग के जो नियम है वो तो हमें मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपने प्लाट ले रखा है और उसको आप कुछ टेम्परेरी रूप से पौधों को लगाना चाहते हैं और उसका
1: आप आर्थिक, ये सफेदा पौधा हो रहा है, कितने दिन चलता है?
2: सफेदा, बिल्कुल सफेदा का पौधा भी ले सकते हैं, जो कि 3 से 5 साल में भी आपको काम लायक हो जाते हैं पौधे। तो अगर आपकी 5 से 7 साल प्लानिंग, 7 साल तक की प्लानिंग है, तो आप नजदीकी नर्सरी से आप संपर्क करके सफेदा के पौधों को लगा सकते हैं।
1: जिनको सर बहन, वो जैसे सर जी, वो कितने पौधे लग सकते हैं, थोड़ा ये अंदाज में हो
2: रहा है? उनकी दूरी आप अगर रखिए तो 3 से 3 मीटर और कई बार 2 से 2 मीटर भी आप संस्तुत की गई है।
3: और थोड़े टाइम के लिए तो डॉक्टर साहब जितना सघन खेती करे उतना सही, अपना जल्दी चीजें अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल।
0: तो बस डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बस चलते चलते ये जानना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए जल्दी से कोई आप संदेश देना चाहें तो।
2: बिल्कुल, जो आने वाली पीढ़ी है इस बात को समझे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरी चीज है कि पेड़ पौधे, जो आज का जो हमारा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, उसको कैसे भविष्य में रोका जाए और लोगों को जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन, उसको अच्छा अच्छा पर्यावरण दिया जाए, अच्छी जलवायु दी जाए, तो उसके लिए निश्चित रूप से एक कदम उठाएं।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और इसी के साथ कार्यक्रम उन्नत किसान से मैं सीमा सती
3: और मैं विनोद कुमार
0: लेते हैं विदा। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम दमन जाएंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम, हेलो, हाय, आय हाय, मन भावन आ गया आपके पसंद का कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और आज वो दिन है जो बहुत खास है। जी हाँ, आम दिन थोड़ी ना है, हालांकि गर्मियों में तो आम की बातें होती ही रहती, पर ये खास दिन है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और मित्रों, भारतीय वांग्मय में हमेशा से पर्यावरण को, नेचर को, मौसम को, धरती को बहुत महत्व दिया गया है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जी हाँ, यानी कि आपकी जो उंगलियों के जो पोर हैं, शुरुआत में वहां लक्ष्मी जी विराजमान हैं, हाथ के मध्य में सरस्वती जी और हाथ के मूल में गोविंद यानी भगवान विष्णु। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडलम, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, यानी हे लक्ष्मी माँ, आप ही धरती हो, नदियां और पर्वत भी आप ही हो। अब मैं उठकर पैर को, धरती को स्पर्श कर रहा हूं अपने पैर से, तो हे लक्ष्मी माँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। आप सोचिए कैसी विचारधारा होगी उस व्यक्ति की जो ये सोचेगा कि धरती अपनी पावन माँ है, लक्ष्मी माँ है। है ना सुंदर बात। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से आकाशवाणी पे आप बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम सुन चुके हैं इसी विषय पर। बात को आगे बढ़ाते हैं, आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं मन भावन में, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत। आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat.

0: join Indian Navy.
1: जय हिंद. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में. स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी. बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था. मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था. बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ढेर सारे संदेश। अब मेरे कार्यक्रम में रूमी मलिक के कार्यक्रम में अटेंडेंस लगती है, लगानी तो पड़ेगी। वादा किया है नहीं, क्या बोलते थे, मैंने प्यार किया में दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, खैर मकदम है आपका, स्वागत है बहुत बहुत। हमारे बहुत पुराने हर दिल अजीज लिसनर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही शाइस्ता। सीताराम कागरा जी हमारे साथ हैं, सुरेश नारंग जी, सुनील गायकवाड़ जी, जय हरजिंदर सिंह भाटिया, मास्टर अशोक कुमार, शंकरलाल जायसवाल, भूषण खेरा, मोहम्मद यूनुस खत्री, तुलसी मस्कीन जी। आगे बढ़ते हैं, शंकरलाल जायसवाल जी का नाम ले लिया ना, हाँ अब अगला पेज करो जी। आओ सकीरी, बोधराज खोरवाल जी हमारे साथ हैं, अनिल मोहन जी हैं, इतने रिपीट मिल जाते हैं ना, तो बार बार नाम नहीं रिपीट करना चाहते, आप खुद ही बोर हो जाओगे। नहीं, नारायण हेगे बोल रहे होंगे, नहीं हमारा नाम तो आता है। विजय सुरलकर, कुमकुम जी, आफ्ताब अंसारी, एच आर पांड्या जी, पुंजा जी नभंकर। आगे चलते हैं, देखते हैं और द नेक्स्ट पेज। भारत भूषण जी हमारे साथ में हैं और धर्मेंद्र छीपा जी भी हमारे साथ हैं, यूनुस खत्री जी तो हैं ही, ताज मोहम्मद, और कोई रह गया, रह तो नहीं गया, नाम सारे ले लेते हैं ना, क्योंकि आकाशवाणी एट 90, जी हाँ 90 वर्ष की हो गई आकाशवाणी, तो हम 3:30 बजे आपको सुनाएंगे बहुत कमाल का एक और इंटरव्यू। फनेश चंदन जी हमारे साथ है, बबलेश पवार हैं हमारे साथ में, सतीश अनेजा जी, फाइनली फाउंड योर नंबर ना द मैसेज, योर ऑफरिंग्स आर सो वंडरफुल दैट दे ब्रिंग अ स्माइल टू आवर फेसेस, कंग्रेचुलेशंस, शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन, ये इंदिरा नगर भवरपुर से लिखते हैं कि हमें वो गीत सुना दीजिए, कौन सा वाला, डफली वाले, सुने गीत, आओ जी आओ।

गफली वाले फरमाइश पूरी करने वाली आरजे गान बजा। प्यारी प्यारी रूमी मलिक बुआ जी को हम बच्चों का आदाब। आहा तस्लीम अल्तमर समीना मुदस्सिर फिरदौस जुम्मा नगर खंडवा से लिखते हैं, नमस्ते दिग्दर्शन कौर जी, आपका मैसेज आया था, कहीं पे खो गया पर मुझे याद है आपने लिखा था, कर लो अधिक मास है पुरुषोत्तम, सिर्फ 15 जून तक और हैं, 10 दिन रह गए, चाह लो पढ़ लो पाठ कर लो, जो दान पुण्य करना है अच्छे बन जाओ भाई, भगवान को बोलो। मैं तो भगवान को ये कहती हूँ, भगवान मुझे ना मेरा बेटर वर्जन बना दे, है ना, मैं सब कुछ सह पाऊँ कुछ ना कह पाऊँ। नहीं नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे आपके संदेश आए हैं और अभी बस कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जो के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। श्रीमती उषा भसीन हमारे साथ हैं जो पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन रह चुकी हैं, है ना। तो इसके साथ साथ और भी अगर कोई संदेश आए, अल्तमश खत्री जी का तो हमने संदेश पढ़ दिया आपको, ठीक है, और बाकी सब लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी बहुत अच्छे आप मेल भेजती हैं और हर बार आप एक नई फरमाइश करती हैं, एक ही कार्यक्रम में 5-6 बार, है ना, 5-6 अलग अलग गाने। तो बस आपसे यही कहना था कि खुश रहिए।

0: नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आप तक लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम जिसमें अनमोल आवाजें आप सुन रहे हैं। ऐसी आवाजें जो खुद एक याद का हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है उन हस्तियों से जिनकी ये आवाज है, तब उनकी यादों का पिटारा खुलता है और उसमें से भी अनमोल रत्न हमें मिलते हैं। आज एक ऐसी ही हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं स्वागत कर रही हूँ स्टूडियो में उषा भसीन जी का। आप अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन साथ ही आपने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर उच्चाधिकारी के रूप में कार्य किया है और एक व्यापक अनुभव आपका है प्रसारण से जुड़ा हुआ। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी इस विशेष हस्ती का कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज आकाशवाणी आकर और ये माइक देखकर, इसके आगे बैठकर, जिसके साथ मेरा तन मन सब रोमांचित हो जाता है।
0: जी, और आपकी खुशी जो है वो आपके चेहरे से दिख रही है और हमें ये खुशी एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत हो रही है कि हमने इस तरह के उच्चाधिकारियों की एक लेगेसी है जिसे और आगे लेकर जाना है और जिसे संभाल कर रखा हुआ है। आज जब आपसे बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उषा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी में जब आप कार्यरत थी, उससे भी पहले जो सबसे पहली याद रेडियो से जुड़ी हुई है वो कौन सी है आपकी?
1: जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं कोई बहुत स्टूडियस नहीं थी
0: जी,
1: और साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैं चोरी चोरी अपने किताब या बड़ा सा रजिस्टर लेके उसके पीछे रेडियो रख के ट्रांजिस्टर, और उस पे तब क्रिकेट भी सुनती थी
0: जी।
1: पर एक कार्यक्रम में सुनती थी तामीले इरशाद, अंजार अहमद थे जो उसको प्रस्तुत करते थे
0: जी।
1: उर्दू भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मेरे नाना, जिनके यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, वो हिंदी नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उनको सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू आता था और वहाँ उर्दू का काफी चलन है
0: जी।
1: और उसके बाद ये हुआ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में शिमला में पढ़ रही थी MSc में, तो सर्दियों में ये ह्यूमन राइट्स डे की बात है, 10 दिसंबर को वो मनाना चाहते थे
0: जी।
1: पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जा चुके थे, हमारा जो बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट था उसके लोग थे शायद कुछ, पर जब हम गए थे तो लोगों ने कहा कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, डिबेट्स कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं करते थे। तो अचानक मेरे हॉस्टल में आया कि आपकी वार्डन ने आपका नाम सजेस्ट किया है, जो हमारी प्रोफेसर भी थी बॉटनी की
0: जी,
1: तो कि आप वहां बोलें उस कार्यक्रम में, तो साथ में ही था यूनिवर्सिटी कैंपस, तो मैं चली गई और बोला। और मुझे नहीं पता था कि एक दो दिन के बाद ट्रिब्यून में काफी उस पे चर्चा वगैरह हुई और वो मेन अखबार था, उसके साथ हम पले पढ़े, यानी मैं बात खत्म हो गई। जब दोबारा यूनिवर्सिटी खुली तो एक दिन अचानक कोई आया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पर मैं छोटा करूंगी, तो वो मिलने आया कि आकाशवाणी से, तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं जानती। जब मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे उधर आए आकाशवाणी स्टूडियो और एक परिचर्चा होनी है, हमें राम चाहिए या रावण, तो उसमें आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उसमें भाग लें। और वहां बहुत अच्छा लगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे बाद में मेरे सीनियर कलीग हुए, तो बात खत्म हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद बहुत ज्यादा कोई वहां कंट्रोवर्सी हो गई, तो वाइस चांसलर को इंटरव्यू करना है तो कोई मान नहीं रहा है, तो आप करेंगी? मैंने कहा मैं कर दूंगी, तो मैंने वो इंटरव्यू कर दिया। तो इस तरह से मेरी आकाशवाणी से यात्रा शुरू हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद किसी ने कहा कि आपकी आवाज ऐसी है कि आप ना नाटक की परीक्षा, जो ऑडिशन है, तो मैंने दे दी, तो मेरे पास हो गई। तो पहला नाटक जो मुझे करने को मिला, बूढ़े की मौत, एक कर्नल विष्णु शर्मा थे, उन्होंने लिखा था। और स्टूडियो में आज भी मेरी आंखों में वो विजन है कि स्टूडियो के दो एंड में हम लोग दो लीड थे हम, और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि दूसरी लीड क्या थी, अनुपम खेर। वो तब नए नए NSD से आए थे और शिमला के निवासी थे, तो उसके बाद बहुत सालों बाद वो मुझे दूरदर्शन मिले तो बड़े हैरान हो गए
0: जी।
1: तो ये तो उसका मुझे 15 रुपया मिला था। उसके बाद पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे टीचिंग

0: करनी थी, तो मुझे कुल्लू मनाली वापस भी नहीं जाना था, मुझे शिमला बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कैसे रहूं। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी से जुड़ गई और बाद में उनकी पोस्टिंग निकली तो मैंने अप्लाई कर दिया और मैं आकाशवाणी में आ गई।
1: जी, बहुत ही रोचक बातचीत हमारी चल रही है और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मोड़ पर ये बताएं कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
0: गाइड फिल्म का गाना है ना
1: जी,
0: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है और हमेशा ही एनर्जी से भर देता है
0: जी।
1: तो लीजिए, आपको सुनवा रही हैं।

0: जब आप आकाशवाणी आई तब क्रिएटिविटी से जुड़ना मुश्किल रहा या इट वॉज इन योर वेन्स ऑलरेडी, वो आपके लिए बहुत सहज था?
1: देखिए, ईश्वर की कृपा और मेरा लालन पालन ऐसा हुआ है कि मुझे कभी भी सच पूछे कोई मुश्किल कुछ नहीं लगा
0: जी,
1: क्योंकि बचपन से एक ऐसा आत्मविश्वास दिया गया था। मैं छोटे से गांव की सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ जहाँ छठी जमात में ABC पढ़ाई जाती है, पर somehow एक कूट कूट कर भरा गया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा परिचय बचपन का, और बाकी तो फिर ये है कि छोटी जगह में ना आप सब कुछ ही कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो एक आत्मविश्वास बचपन में मिला वो आगे बढ़ने में वो ही एक बड़ा हथियार रहा
0: जी।
1: और आकाशवाणी का आप पूछ रही हैं तो यहाँ तो भाषा का ही बात है सारी, उन कलाओं से वो सब मैं अनभिज्ञ थी, साइंस स्टूडेंट थी तो भाषा की कोई ज्यादा बात नहीं होती थी। इट वॉज ऑल लर्निंग, कैसे बोलना है, कैसे कुछ रहा होगा बीच में पर उसको कैसे मांझना है। हम लोग ना छोटे स्टेशनों पे लोग बड़े अनुशासित होते हैं
0: जी,
1: तो बिना ऑडिशन के कोई एयर पे नहीं जाता। तो ड्रामा में तो ऑडिशन मैंने कर लिया था, बाद में वहाँ अंग्रेजी का भी हुआ तो मैंने वो भी किया, तो काफी मेहनत हुई है ना। आकाशवाणी शिमला ने मुझे इतने मौके दिए, मैं आपको बताऊं, सीमांत बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ जो ट्राइबल एरियाज है वहां से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तक
0: जी,
1: और प्रधानमंत्री के साथ सैनिक चौकियों पे खड़े होने से लेकर भारत उत्सव विदेशों में, ये सारे मौके मुझे आकाशवाणी ने दिए
0: जी।
1: तो आकाशवाणी ने मुझे एक नई दुनिया दी, जैसे कि पूरा आकाश मेरे सामने। और हाँ, ये भी हुआ कि जो चुनौतियों के साथ अवसर आए मैंने उनको छोड़ा नहीं।
0: बहुत विस्तृत अनुभव है उषा जी आपका। मैं इस बीच ये जरूर जानना चाहूंगी कि सिलेक्शन लेटर जब हाथ में आया आकाशवाणी का, तो वो अनुभव मैं चाहूंगी कि आप साझा करें और परिवार में क्या प्रतिक्रिया।
1: आप सिलेक्शन लेटर की बात कर रही हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जब मैंने अप्लाई किया
0: जी
1: और वो जो एक्नॉलेजमेंट आया UPSC का
0: जी,
1: तो ऐसा लगता था उसको मढ़वा के रख लें
0: जी।
1: हाँ, तो मैं एक ही पंक्ति बोलूंगी। और बाद में आप सोचें, मैं उस UPSC के सामने रहने लगी, मुझे वहां घर मिला
0: जी।
1: तो प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हम उस पर विश्वास करें
0: जी,
1: उस पर छोड़ दें और फ्लो में रहें तो जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं आई, हर तरह की चुनौतियां आई।
0: मैं चाहूंगी कि कुछ विशेष कार्यक्रम आप हमारे साथ जरूर इस वक्त उनके नाम साझा करें, उनके बनने की जो कहानी है और कैसे उस वक्त वो मुश्किल दौर रहा होगा, वो सब जरूर आप साझा करें।
1: जैसे वहां पर मुख्यमंत्री जो थे वो चाहते थे कि हम रिपब्लिक डे परेड जो है हिमाचल के शिमला की उसको लाइव करें जैसे दिल्ली से होती थी, तो हमने उनको बता दिया, काफी बात हुई पर वो माने नहीं, हम भी नहीं माने कि हमारा राष्ट्रीय प्रसारण है, हम इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो वो इतने अडिक थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना जो फंक्शन है रिपब्लिक डे परेड का वो तब शुरू करूंगा जब आपका दिल्ली का प्रसारण समाप्त हो जाएगा
0: जी।
1: तो उन्होंने वो आगे कर दिया, जो हुआ जी, रिज मैदान में बर्फ पड़ रही थी, कोई बूथ नहीं था, कुछ नहीं था, और एक हाथ में माइक लेकर बर्फ पड़ रही है और कमेंटेटर कोई नहीं था, तो हमारे डायरेक्टर ने माइक पकड़ा। बाद में जब मेरे हाथ ठंड से कांपने लगे और आंखों से नाक से पानी आ रहा था और वो आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा था, वो तो एक बात। अब कोई सैटेलाइट नहीं था
0: जी,
1: कोई और लिंक नहीं था कि आप रिज मैदान शिमला से, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है, वहां से आप चौड़ा मैदान जहां आकाशवाणी के स्टूडियो है वहां तक कैसे उनको करेंगे। तो हमने ये किया कि वो टेप्स पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और वहां तक गाड़ी भी नहीं आती थी आकाशवाणी की
0: जी।
1: तो प्रोडक्शन असिस्टेंट जब 20-25 मिनट हो जाते थे, टेप तोड़ा जाता था और निकाल के वो प्रोडक्शन असिस्टेंट के हाथ में, और वहां मॉल के एंड में घड़ी है, वहां पे हमारी जीप होती थी, तो वो उसमें बैठेगा और दौड़ाकर आकाशवाणी स्टूडियो जाएगा। अब चुनौती ये कि इससे पहले कि वो लाइव चल रहा है
0: जी,
1: वो खत्म हो जाए टेप, दूसरा टेप वहां पहुंचना चाहिए। तो वो सब हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। और जब हम स्टूडियो पहुंचे और हमने 2-3 बजे जितने भी दोपहर में पहला कप चाय का पिया, तो क्या मतलब अनवरत टेलीफोन कॉल्स डायरेक्टर के कमरे में आने लगे। अब फिर उनको आदत पड़ गई, अगले साल फिर उन्होंने किया, तब थोड़ा एक स्टेज बना दिया, पर कोई ऐसा कोई साउंड प्रूफिंग कुछ नहीं था। तो वो मैं एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी थी और मैं कमेंटेटर भी थी, बाकायदा सिलेक्ट हुई थी, जसदेव सिंह जी ने सिलेक्ट किया था नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए, तो वो किया। पर देखिए ये क्या था, वो टीम की प्रतिबद्धता, जो हमारी टीम थी, हर इंसान चाहता था कि वो कार्यक्रम सफल हो।
0: सही बात है। और मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि जिस टेप का बार बार जिक्र हो रहा है आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग्स स्पूल पर होती थी और पूरी टीम, चाहे वो 50 लोगों की है, 30 लोगों की है, उन सबकी मेहनत के फलस्वरूप वो टेप तैयार होता था। और वो टेप अगर सही समय पर स्टूडियो पहुंचकर नहीं चला, अगर प्रसारण नहीं हुआ, तो उन सबकी मेहनत खराब हो जाती थी। इसलिए उसकी बहुत वैल्यू थी उस टेप की, और उसे सही समय पर चलाना भी बहुत जरूरी था। और वही उषा जी बता रही हैं कि किस तरह से काम तो सारा हो गया, लेकिन टेप की अपनी एक जर्नी है। बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये बताइए कि आप कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: देखिए, हमारे तो जो गायक हैं और वो नहीं रहे, वो सब पूजनीय हैं
0: जी,
1: उनकी आवाजें पूजनीय हैं। एक गाना जो आशा जी का ले लेते हैं, वो है जाइए आप कहाँ जाएंगे
0: जी।
1: वो आज इसलिए कि आकाशवाणी से हम गए हैं
0: जी,
1: उठकर नौकरी थी, वापिस इस माइक पे आए।
0: आप कहाँ जाएंगे, इस गाने के बाद फिर से हम बातचीत जारी रखेंगे। आपको सुनवा रहे हैं प्यारा सा गाना।

0: वैसे तो हम हर विषय पर ही काम करते हैं रेडियो में, और हर तरह की ऑडियंस जो है हमारी टारगेट ऑडियंस है, लेकिन आपने सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, तो और उसकी विशेष तैयारी भी होती थी, हर उम्र के लोगों से जुड़ना, उन्हें समझना। मैं चाहूंगी कि ये भी आप जरूर बताएं ताकि श्रोताओं को अंदाजा लगे कि एक छोटा सा कार्यक्रम जब वो सुनते हैं 15 मिनट या आधे घंटे का, उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है।
1: देखिए, धारावाहिकों की शुरुआत हुई जीवन सौरभ से, और ये काम जो है महानिदेशक ने सौंपा था
0: जी।
1: अब मैं सबसे नीचे की पायदान पर खड़ी प्रोग्राम ऑफिसर और महानिदेशक सर्वोच्च, बीच में बहुत से लोग, तो उनको ये लगा कि युववाणी में तो चल रहा है पूरा चैनल, तो ये नया क्या यूथ के लिए करवा रहे हैं। और सामाजिक शास्त्र की तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, प्योर साइंस की स्टूडेंट थी, तो जो कुछ मैं कह सकती हूँ मैंने सीखा वो श्रोताओं से सीखा
0: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं, तो मैं उनके बीच कूद गई।
0: हाँ।
1: और सैकड़ों युवाओं से, किशोरों से, उनके माता पिता से, उनके काउंसलर से मैंने बातें की और दर्जनों टेप भर दिए। तो लंबी कहानी है जीवन सौरभ की, और फिर वो बना। उसमें एक एपिसोड अनवेड मदर्स पे था, कैसे होता है, और उसमें एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि कितना विभत्स है ये सारा
0: जी।
1: और आम है ये। उसके बाद एक एपिसोड उस बच्ची पे था, उस परिवार को कैसे मनाया होगा ताकि उनके जो संजीदगियां हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, वो भी हर्ट ना हो। पर पूरा एपिसोड बने कि उसने सुइसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। उसकी बहुत अखबारों में चर्चा हुई
0: जी।
1: और मंत्री जी ने महानिदेशक को खुद फोन किया कि कोई धारावाहिक तुम्हारे यहाँ चल रहा है, तो बहुत अच्छा उसका। पर मेरे दिल दिमाग पर जो असर हुआ कि उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कविता कहानी लिखती थी और वो छप रही थी राष्ट्रीय पत्रिकाओं वगैरह में, बहुत अच्छे आते थे पाठकों की प्रतिक्रियाएं। जब वो धारावाहिक की फीडबैक आने लगी, उन किशोरों ने ना अपनी जिंदगी का सारा जो कह सकती हूँ कष्ट है उन चिट्ठियों में उड़ेल कर रख दिया
0: जी।
1: आज भी वो मेरे पास चिट्ठियां हैं, तो हर जब मैं उनसे विशेषज्ञों की बात उनको बताती थी सुनाकर, तो वो बाद में मुझसे चिट्ठी में पूछते थे, उन सब की बात ठीक है पर दीदी आप क्या सोचती हैं, आप अपनी बात बताइए। तो मैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है सामाजिक चेतना की आप बात कर रही हैं
0: जी,
1: कि मैं नहीं वो आकाशवाणी है, मतलब उनकी कितनी गहरी आस्था इस लोक प्रसारण में है
0: जी,
1: है ना, कि वो चाहे विशेषज्ञ बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं, स्कूलों के काउंसलर्स बता रहे हैं, हॉस्पिटलों के साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं, लेकिन वो मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये जो एक

0: गहरा रिश्ता श्रोताओं के साथ जब आप बनाते हैं वो उनके दिल दिमाग पर असर करता है और उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सूचना और व्यवहार परिवर्तन के बीच में एक बहुत लंबा और बहुत संवेदनशील रास्ता है रिश्ता बनाने का, वो बना। उसके बाद डीजी ने कहा अब आप सेकंड एपिसोड बनाइए। उन्होंने मुझे कहा आप आगे आप हमारी शादियां होने वाली हैं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोताओं ने, तो आप हमें वैवाहिक संबंधों पे धारावाहिक बनाइए। तो मैंने जीवन सौरभ 2 बनाया। तो इसका सारा श्रेय मैं अपने सीनियर्स को देना चाहूंगी। पहली बात तो कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया
1: जी,
0: मेरी हर बात मानी। और दूसरा, उसी समय एक उप महानिदेशक थे, वो एक बहुत बड़ा नाम था लेखन में आकाशवाणी का, उनसे वो आलेख लिखवा के लाए जो दहलीज हमने बाद में नाम दिया धारावाहिक को उसका। मैंने वो पढ़ा तो मुझे तो वो तोता मैना की कहानी जैसी लगी। अब मैं तो जीवन सौरभ बना चुकी थी जो असली
2: असली मुद्दे
0: हैं और उनकी जुबान से। हाँ, जीवन सौरभ के उस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे बीबीसी वालों ने भी यहाँ से इंटरव्यू किया था। तो मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो देखिए उन्होंने एक बार भी इस चीज को अन्यथा नहीं लिया कि भाई तुम मेरी इतनी जूनियर हो और मेरे लाए हुए स्क्रिप्ट को मना करिए। तो सारा श्रेय उनका, क्योंकि क्या था, ध्येय था प्रसारण। तो फिर हमने लेखन करवाया उन दिनों में। त्रिपुरारी शर्मा थी, बहुत बड़ा नाम था उस समय उनका, बहुत नाटक की रंगमंच की रही है। तो उन्होंने लिखा 26 एपिसोड लिखे, पर उसने मुझे ये बताया कि हर विधा हर माध्यम की अपनी एक जरूरत होती है। तो आकाशवाणी का लेखन और रंगमंच का लेखन दो अलग चीजें हैं। तो उस स्क्रिप्ट्स को काफी रिवाइज करना पड़ता था आकाशवाणी के हिसाब से। और फिर जो प्रतिक्रिया श्रोताओं की आई तो मेरे लिए तो उससे ऊंची कोई चीज नहीं होती थी। तो ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है,
2: छोटा भारत है वो,
0: बिल्कुल छोटा भारत है
2: जी,
0: बिल्कुल।
2: और हम जो कहते हैं कि हमारा ध्येय वाक्य जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको असल में आपने बहुत ही आसानी से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से चरितार्थ कर दिया।
0: मुझे लगता है आकाशवाणी की अगर आप मुझसे एक पूंजी पूछें
2: जी,
0: बहुत ऊंचे बहुत बड़े काम है आकाशवाणी के, राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका जो है ना वो अतुलनीय है। मैं ये कहूंगी कि लोक सेवा प्रसारण में और विकास संचार में विश्व के अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में आकाशवाणी है
2: जी।
0: और आकाशवाणी ने ये अर्जित किया है, बड़ी मेहनत से अर्जित किया है, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो श्रोताओं का विश्वास, उनका दिल जीत पाए, उनके दिलों की बातें की, उनके दिलों से जुड़ गए, तो ये बात होती है।
2: मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने रेडियो का बदलता हुआ दौर भी देखा है, क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि रेडियो किसी चुनौती का सामना कर रहा है?
0: समय तो बदलता है
2: जी,
0: आपका समय और हमारा समय, आज का डिजिटल युग सिर्फ तकनीकी की वजह से नहीं पर तकनीक होने की वजह से चीजें बदलती हैं, समाज बदलता है। तो आज मैं सोचती हूँ जीवन सौरभ में वो जो मुझे इंटरैक्टिव करना होता था चिट्ठियों के जरिए, और पता बुकलेट्स छपवाई थी मैंने जीवन सौरभ 2 के लिए, अगर सोशल मीडिया उस समय मेरे हाथ में होता तो मुझे ये सब मेहनत भी ना करनी पड़ती और सब तुरंत फुरत होता, तो शायद लोग ज्यादा अच्छे से जुड़ते। हर बदलते समय की अपनी मांग है, वो चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे संस्थागत जीवन हो या संस्था का जीवन हो, आपको बदलना होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
2: और आज के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता जो है, मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्थान आप कहाँ पाती हैं?
0: सवाल ये है कि आप क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसका प्रसारण कैसे करते हैं और श्रोताओं से कैसे जुड़ते हैं
2: जी।
0: आज आपके आगे चुनौतियां हैं, भाषा बदल चुकी है, लेकिन अगर आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसको नहीं बदलना है
2: जी,
0: जिन चीजों के लिए आपका मान सम्मान था, हमने ये भाषा जो बोल रही हूँ मैं, ये मेरी भाषा नहीं है
2: जी,
0: मैं इसके साथ बड़ी नहीं हुई, ये भाषा हिमाचल की भाषा नहीं है, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, पर हिंदी और तरह की हिंदी
2: है, बिल्कुल
0: ठीक है ना। तो जो जिसकी वजह से आपका एक शिखर पर नाम था, लोगों ने उसको सुना, कितने हमारे डिप्लोमेट हैं, कितने बड़े लोग हैं जो युवाणी से बने हैं
2: जी,
0: तो उसको बनाए रखना है लेकिन परिवर्तन के साथ। जब रेडियो आया था तो बोला जी अखबार खत्म हो जाएंगे, जब टेलीविजन आया कि रेडियो खत्म होगा, खत्म कुछ नहीं होता। आज सोशल मीडिया है, खत्म कुछ नहीं होता, इंसान की कम्युनिकेशन की नीड्स हमेशा रहेंगी, लेकिन बदलती तकनीक और इतनी तेजी से तकनीक

0: बदल रही है कि उसमें आप अपने आप को बनाए रखना और अपनी आभा को बनाए रखना एक चुनौती है, और चुनौती ही तो नई चीजें करने के लिए जी आपको प्रेरणा देती है ना
1: जी। बहुत रोचक बातचीत आपसे रही और इतनी सारी बातें हमने सुनी हैं। आपके बहाने आज एक दौर को फिर से हमने जिया है, और क्योंकि हम यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, यही दरो दीवार हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, आपके बहाने आज हमने एक नए अंदाज में इनको देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को तो कुछ नया मिला ही है आपसे बातचीत करके, लेकिन हम प्रसारण कर्मियों को भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ यादों को नहीं जिया है, आने वाले समय के लिए भी खुद को हम तैयार कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि खुद को बदलना है लेकिन अपनी परंपरा को भी बनाए रखना है, उस संजीदगी को भी बनाए रखना है। चलते चलते कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
0: शमशाद बेगम का
1: जी,
0: गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांक रहे।
1: हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आज हमारी विशेष हस्ती थी उषा भसीन जी। उषा जी, आप आज स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। श्री मोदी आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमण में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन

0: और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री की दर्ज की गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरान श्री खनाल विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का पूल ए में 9 अंक के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में मेजबान जापान के खिलाफ एकमात्र हार के बाद चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है।

0: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी के पाठ्यक्रमों तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में अक्टूबर 2027 में आरंभ होने वाले पाठ्यक्रमों पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती हेतु 13 सितंबर 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026। वेबसाइट का पता है upsc.gov.in। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upsconline.nic.in। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीशियन ग्रेड 1 ग्रुप 2 पदों की कुल संख्या 30 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पात्रता शर्तों, आरक्षण की स्थिति और नियम और शर्तों आदि के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.cimfr.res.in। इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी परिशिष्ट संशोधन अथवा अधिसूचना केवल इस वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार पिलानी राजस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीकी अधिकारी समूह 3 कुल 8 पद उपलब्ध हैं। तकनीशियन ग्रेड 1 समूह 2 कुल 14 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन योग्यता अनुभव और वेतनमान आदि से संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.ceeri.res.in। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पुस्तकालय का एक पद रिक्त है जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरा जाना है। संपूर्ण विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप और अन्य विवरण के लिए देखिए कृपया दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 जून 2026। नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत वित्त अधिकारी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी उपकुल सचिव सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अन्य गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है nagalanduniversity.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है आज उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदान की गतिविधियों की भी जानकारी हम आपको प्रोग्राम में देंगे। साथ ही आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी एक नज़र हम डालेंगे। कार्यक्रम के आखिर में

0: end, we will pay our heartfelt tributes to distinguished personalities whose contributions they have left a lasting impact on the society. So without any further delay, well, it is our way of telling us you have to be with us, listeners, for the next 30 minutes. First, we are beginning with the headlines, shall we?
1: जी, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.
0: सेंटर ग्रांट्स टैक्स एग्जेम्पशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑन कैपिटल गेन्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज.
1: रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर बनाए रखा है. चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया.
0: World Environment Day being observed, the government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. So listeners, this is our discussion segment, Dateline India, and well, we told you in the beginning, we will be discussing about World Environment Day. So let's begin.

0: नदियां, पर्वत, सागर, पेड़, पत्ते, जी हाँ, ये पृथ्वी किसी चमत्कार की मांग नहीं कर रही है हमसे, बस थोड़ी सी देखभाल चाहती है। हमें किसी दूसरे ग्रह की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी इस खूबसूरत पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना बंद करना है।
1: वेल दैट इज ट्रू। सो द अर्थ इज ऑलरेडी स्पीकिंग टू अस थ्रू रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स, मोर इंटेंस वाइल्ड फायर्स, एक्सट्रीम स्टॉर्म्स एज वेल। एंड आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ अ क्वोट व्हिच महात्मा गांधी शेयर्ड, What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves. How profound, right?
0: और पर्यावरण की सुरक्षा क्यों जरूरी है? हम अपनी इस हरी भरी धरा को ज्यादा से ज्यादा कैसे सेहतमंद बना सकते हैं और इसके लिए हम कौन से आसान कदम उठा सकते हैं?
1: So, exactly, World Environment Day, it is being celebrated across the globe. It has been observed on 5th June every year. Well, delving into the history, since 1973 and as part of the United Nations Environment Programme, and this builds awareness to save life on earth.
0: शगुन, पर्यावरण की जब बात होती है तो हम केवल पेड़ पौधों, जंगलों या वन्य जीवों तक ही इसको सीमित करके देखते हैं।
1: Exactly.
0: जबकि सच ये है कि पर्यावरण जो है एक बहुत ही व्यापक एक एक एक एक तंत्र है और इसमें हवा है, पानी, मिट्टी, नदियां, जैव विविधता और जलवायु सब कुछ शामिल है और इसी पर हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पीढ़ियों का भविष्य भी निर्भर करता है और इसी साझा जिम्मेदारी और चिंता को देखते हुए हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि ये याद दिलाने का एक मौका भी है कि विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाकर हमें देखना होगा।
1: सो विशाल, आई टोटली अग्री विद यू। कम्युनिटीज आर एक्चुअली रिस्टोरिंग इकोसिस्टम्स, यंग पीपल आर ड्राइविंग चेंज एंड वेल आवर एनवायरमेंट needs these kind of initiatives and clean energy is transforming cities and homes, don't you think so?
0: जी, और सबसे पहले मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि प्रकृति से हमें रोजाना शगुन क्या मिलता है?
1: Well, I don't have to think hard about it. We get clean air to breathe, also water to drink, food to eat, as well as the beautiful surroundings that we watch and we enjoy and we be there with our family and friends, right? In the environment.
0: हाँ, आपने beautiful surroundings की बात की, अपने आसपास का जो एक सुंदर वातावरण होता है उसकी बात की, और लेकिन दुख की बात यहाँ पर यही है कि प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई हो रही है और बहुत ज्यादा कचरा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है।
1: Well, the situation is dire and that's why

0: right? World Environment Day reminds us that every individual has a responsibility to protect nature, don't you think so?
1: जी, ये ये ये केवल केवल एक सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है पर्यावरण संरक्षण.
0: Right, our micro habits.
1: जी.
0: And so now let us share some simple yet very effective steps to conserve the environment. Should we start with it? So first one, we should plant more trees. Trees absorb carbon dioxide and provide oxygen in turn. And even planting one sapling, it can make a difference. It can make a huge difference.
1: जी, और कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें चीजों को, रिसाइकिल करें. किसी भी चीज को फेंकने से पहले सोचें कि क्या उसे दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सकता है.
0: 3 hours, right? And third one, we should save water. And it's quite simple actually. We can turn off the taps when not in use and while brushing or while cooking as well. If there is wastage of water, we can avoid that. We can avoid wasting this precious resource.
1: जी, और हम बिजली बचा करके भी पर्यावरण को बहुत कुछ हम योगदान कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए. जब जरूरत ना हो तो लाइट, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देनी चाहिए.
0: Also, the fifth one, we all have read it someplace or the other. We should say no to single-use plastic. We can carry cloth bags instead, reusable bottles whenever it's possible.
1: जी, right? और अपने आसपास की जगह को साफ रखना हमें सीखना होगा. हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें.
0: Exactly. So protecting the environment in all does not require big actions, very small, really micro practices, minimal practices, small efforts by millions of people. It can create a huge impact. Well, delving on this particular fact that India is emerging as a global leader in environmental conservation and sustainable development. Wow.
1: बिल्कुल सही कहा शगुना आपने. पर्यावरण बचाने की वैश्विक अभियान में भारत ने पिछले 12 वर्षों में अपनी खास नीतियों और लगातार किए गए कामों के जरिए जबरदस्त तरक्की की है. और जब आप पर्यावरण सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल यही आता है, पेड़, नदियां, वन्य जीव.
0: True, and all of them actually. And the good news is that India has made significant strides in each of these areas. Forest and tree cover have expanded, while wetlands, mangroves and coastal ecosystems, they have been restored.
1: नदियों की बात करें तो हम सभी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा.
0: Right.
1: और इस कार्यक्रम ने गंगा को फिर से जीवंत करने और प्रदूषण का स्तर कम करने में अहम भूमिका निभाई है.
0: Also, cleaner rivers, they mean healthier ecosystems and better lives for millions of people, right?
1: जी, और अब एक सवाल हमारे सुनने वालों से भी कि भारत में किस जानवर को अक्सर सफल वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है?
0: So, if our listeners and even you and even me, if we have guessed it right, it is actually tiger.
1: Bag.
0: Along with tigers, populations of lions, elephants, rhinos and several other species, they have also increased in recent years.
1: जी, और अपने आप में एक बहुत
0: so great.
1: एक अच्छी खबर भी है. इससे पता भी ये चलता है कि जब संरक्षण के प्रयासों को प्रतिबद्धता और समुदाय की भागीदारी का समर्थन मिलता है तो सकारात्मक बदलाव आते ही हैं.
0: And India has also strengthened its environmental management systems, solid waste processing rates, they have improved circular economy practices, they are being promoted through extended producer responsibility or EPR frameworks as well, Vishal.
1: आसान शब्दों में कहें तो कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को ही कचरा कम करने, ज्यादा रिसाइकिल करने और संसाधनों का, रिसोर्सेस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
0: And that's not all. Green skills, environmental awareness and the use of technology for conservation, they're helping all of this together, they're helping create a more sustainable future.
1: Kya aaj hum sab koi ek aisa chota kadam utha sakte hain jisse kachra kam ho aur sansadhanon ki bachat ho?
0: We can do that, right?
1: Mm-hmm.
0: And the steps they should include carrying a reusable water bottle, planting a tree, switching off unused lights, switching off those and taps as well, or avoiding single use plastics altogether.
1: Ji, har chota kadam maane rakhta hai aur jab desh ke nagrik apna is abhiyan mein, is paryavaran sanrakshan ki muhim mein apna yogdan dein to Bharat jo hai nishchit taur par vaishvik manch par apni gehri chhap paryavaran sanrakshan ki

0: दिशा में एक निश्चित तौर पर अपना एक जगह बना रहा है।
1: सो टुडे पीएम मोदी कॉल्ड फॉर रिन्यूड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल ग्रोथ। He extended wishes to the countrymen on World Environment Day. In a social media post, Mr. Modi said that this day reaffirms the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. He noted that numerous efforts of the government over the last decade highlight its work in this direction.
0: जी, उन्होंने बताया कि भारत की कुछ अहम कामयाबियों में हरियाली का दायरा बढ़ाना और कई जानवरों की आबादी में बढ़ोतरी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने हर साल लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ने में अहम योगदान दिया है।
1: In fact, the numbers, they suggest it's great. And Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today stressed the need for greater awareness on environmental protection and expanding green cover across the country.
2: Prime Minister Narendra Modi has encouraged us to plant one tree in the name of our mother, Ek Ped Ma Ke Naam. It is truly a divine blessing for me that I could plant a tree in my mother name in the Tirumala Balaji Hill.
0: और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया है।
1: इट्स ट्रूली वंडरफुल। एंड इन आकाशवाणी प्रेमिसेस आल्सो समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन प्लांटेड अ सैपलिंग अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन Well, here in the premises of Akashwani in New Delhi. So, talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to the citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, planting trees, and protecting and conserving them.
3: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to Maa Ka Naam Ek Ped Lagane Ke Liye. Importance of the environment. We have to save the water and we have to plant that.
1: So, listeners, remember. The earth is not just our home, it is a treasure we must preserve for future generations, Vishal.
0: तो इस पर्यावरण दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक ज्यादा हरे भरे, साफ सुथरे और स्वस्थ संसार के निर्माण के लिए काम करें। और अब कार्यक्रम में समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं कि आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं?
1: Well, we are now heading to Ladakh. So Ladakh once used to be landlocked during the winter months due to heavy snowfall at passes, and this will now have all weather connectivity as the Zhojila tunnel is near completion. This tunnel, which is 13.15 kilometers, is strategically significant as it will be all weather connectivity linked for Ladakh with the rest of the country through Jammu and Kashmir, and it is set to achieve a major milestone on June 9th as Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari will trigger the breakthrough blast. On this day, the team Teams excavating at both ends of the tunnel will meet. Well, our lay correspondent has filed more on it. Listen in.
4: Zhojila Tunnel is one of the most ambitious road project in the country, and it will create history as it will become the longest single tube bidirectional road tunnel at an altitude of 11,500 feet in Asia. It is expected to significantly boost connectivity, mobility and economic activity in the strategically significant region of the country. The tunnel is equipped with CCTV surveillance, radio control and uninterrupted power supply and ventilation system. Not only Ladakh will have all weather connectivity, but it will eliminate all the challenges that a traveler while traveling from Sonamarg to Taraz on the Leh Srinagar National Highway have to pass through the Zhojila Pass, which is considered extremely challenging due to snowfall and inclement weather. Zhojila Tunnel is said to be completed by February 2028. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
0: कल्पना कीजिए कि बिहार का एक युवा जिसके पास एक अभिनव सोच है, नया विचार है, कुछ अलग करने का जज्बा है और सपने भी बड़े हैं, लेकिन संसाधनों की कमी जो है उसे आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ वर्ष पहले तक ऐसे अनेक सपने अक्सर सोच तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। क्या तस्वीर बदल रही है? हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और उससे जुड़ी विभिन्न पहले युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने का अवसर दे रही हैं। उद्देश्य केवल नौकरी पाने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो स्वयं रोजगार सृजित करें और दूसरों के लिए भी अवसर बनाएं। बिहार स्टार्टअप

0: नीति 2022 के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमी रामाशीष कुमार भी ऐसे ही युवाओं में शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी सहायता के बल पर अपने विचार को एक सफल उद्यम का रूप दिया।
1: बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत हमें जो है 10 लाख रुपए का फंडिंग ग्रांट हुआ है और मैं दिल्ली छोड़ के बिहार में आज स्टार्टअप कर रहा हूं। और मेरा भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, मैंने भी बहुत सारी जगह पे कॉर्पोरेट में काम किया है। और बिहार स्टार्टअप जो है, आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो थोड़ा उतना ज्यादा ये नहीं था ट्रेंड, आज के टाइम में बिहार से बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं।
0: सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि काम करने के लिए बेहतर माहौल भी तैयार किया जा रहा है। पटना के मौर्यलोक परिसर में विकसित 154 सीटों वाले को वर्किंग स्पेस में वर्तमान में 65 से अधिक स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। रियायती शुल्क पर यह उपलब्ध सुविधा नए उद्यमियों को कार्यालय, प्रशिक्षण और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। तकनीक आधारित स्टार्टअप चला रहे उद्यमी रोशन का कहना है कि ऐसी सुविधाएं उद्यमियों के लिए व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है।
2: बिहार में जो इनिशियल स्टार्टअप्स हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी जो आपको इनिशियली 10 लाख की फंडिंग देती है और सीड स्टेज में अगर आप जाते हैं तो 15 लाख की फंडिंग और मिलती है। इसके साथ आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा थ्रू वर्किंग स्पेस।
0: एक और सरकार स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवा भी नए अवसरों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में यही पहले बिहार को एक सशक्त स्टार्टअप केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिक्रमा के लिए पटना से सत्यम कुमार के साथ निधिश्री की रिपोर्ट।
3: The Mizoram government has launched Khet Bachao Abhiyan. This is an initiative of the center's Agriculture and Farmers Welfare Ministry to curb soil degradation. More from our correspondent.
4: The initiative, which aims at promoting balanced soil test-based fertilizer application and natural farming methods, was launched by State Governor General Vijay Kumar Singh at Lok Bhavan. Speaking on the occasion, Singh expressed concern over the excessive use of chemical fertilizers and pesticides in pursuit of higher crop yields, which he said adversely affected agricultural land and human health. He called for greater efforts to protect agricultural land through soil conservation, balanced fertilizer use and natural farming practice. Highlighting Prime Minister Narendra Modi's national mission on natural farming, Governor stressed the importance of gradually shifting towards the natural agricultural practice to safeguard both environmental and the quality of agricultural produce. He said that regular soil testing is essential to identify nutrients deficiencies and ensure crops receive appropriate nutrition. Governor urged agricultural scientists and experts to actively support farmers in adopting sustainable farming practice. Noting that agriculture remains the backbone of Mizoram economy, the governor said that the state could achieve self-sufficiency in food production and maximize farmers' income through coordinated efforts by experts and Krishi Vigyan Kendras. He also pointed out that Mizoram crops are unique due to continued practice of jhum cultivation on hilly slopes where maintaining nutrients balance is particularly challenging. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News.
5: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हुए और हरियाणा के वन तथा पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशेष अतिथि इस समारोह में रहे। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन पायलट परियोजना का भी उद्घाटन किया।
6: श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम गुरुग्राम नगर निगम के पार्कों में शोधित अवशिष्ट जल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन परियोजना और सेक्टर 109 में मटेरियल रिकवरी सुविधा का शिलान्यास भी किया। विशिष्ट अतिथि राव नरवीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, स्वच्छता अपनाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मंत्रियों सहित उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
3: So on Environment Day today, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashvani ke saath, we bring you an interview with Akash Gupta, who has worked for reviving Manorama River in his village in Uttar Pradesh.
7: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया था। ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: To listen to the conversation, tune into Akashwani 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m. Now, in some business news, benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The BSE Sensex dropped 117 points to close at 74,243. The NSE Nifty slipped 50 points to settle at 23,367. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
5: और अब आइए याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पूरे जीवन को होम कर दिया।
9: वी रिमेंबर फ्रीडम फाइटर मौलवी अहमदुल्ला शाह, हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। अ रेजिडेंट ऑफ फैजाबाद उत्तर प्रदेश, शाह प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट्स and fought against the British forces at Faizabad, Lucknow and several other places in the Awadh region.
10: Under Shah's command, the independence activists inflicted heavy losses on the British army and the company Raj declared a reward of 50,000 rupees for his capture. Repulsed from Shahjahanpur, he appeared on the 5th of June 1858 near Awadh Rohilkhand border. He was shot dead near Awadh Rohilkhand border by the British Allied forces on the 5th of June 1858. The brutal British forces cut off his head and sent it to the British officials at Shahjahanpur for exhibiting it at the Kotwali. Even his body was burnt and the ashes were thrown into the river. AIR News pays tributes to the great freedom fighter Maulvi Ahmadullah Shah.
9: We pay tributes to Manipuri freedom fighter Thoding, who was martyred on 5th of June 1875. A resident of village Rakmanpara, the Garo Hills, Meghalaya, Thoding took part in the last Garo resistance movement of 1875 against the British Army.
10: Thoding, along with other Garo warriors, fought continuously for 3 weeks to resist the British occupation, but was captured by the English army from the battlefield. Thoding was tried and sentenced to death. The brave Manipuri fighter was executed at Tura on the 5th of June 1875. We salute the great son of the soil. We also remember revolutionary freedom fighter Harendra Lal Chakraborty, who was martyred on the 5th of June 1934. A resident of Chittagong, now in Bangladesh, Harendra Lal was involved in the Chittagong youth movement and participated in revolutionary activities.
9: Harendra Lal was involved in a bomb attack on Peter Cleary, the superintendent of police of Chittagong, at the Paltan Maidan. When the attack failed and two young revolutionaries were killed in the firing by the orderlies of the officer, Harendranath, along with Krishna Kumar Chaudhary, attempted to throw multiple bombs at him. However, the bombs failed to explode. The duo escaped the firing from the orderlies but were apprehended later.
10: Harendra Lal was tried by the special tribunal and sentenced to death. The sentence was confirmed by the High Court on the 18th of April 1934, and Harendra Lal was executed.

0: executed on the 5th of June 1934 in Medinipur Central Jail.
1: We also remember revolutionary freedom fighter Mrinal Kanti Roy Chaudhary, who died on the 5th of June 1932. A resident of Joshua Town, Kolkata, Mrinal was born in 1903 to Durga Roy Chaudhary. He was a member of the Anushilan Samiti and was arrested for revolutionary activities on 10th of October 1930. He died during internment on 5th of June 1932 in the Devli Camp Jail. We salute the great martyr.
2: और अब बात उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जयंती। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने है मास्टर मदन का। आज इनकी पुण्यतिथि है। बहुत ही प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे। मास्टर मदन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में किशोर के रूप में ख्याति हासिल करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1940 के दशक में ही स्वर्गवासी हो गए थे। और कहा यह भी जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और उस समय की अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए बहुत ऊंची रकम दी जाती थी। और मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल के बहुत करीब थे। और कारण इसका एक ही था कि दोनों ही जालंधर के निवासी थे। और इनके जीवन में केवल इनके 8 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए हैं जो आज उपलब्ध हैं। इन्हीं का रिकॉर्ड एक गाना आइए सुनते हैं।

और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट ने कई बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की। फिल्म निर्माता के तौर पर मुकेश भट्ट की पहली फिल्म जुर्म थी, और इसके बाद इन्होंने गुलशन कुमार के साथ मिलकर आशिकी फिल्म बनाई, और इसके जिसका निर्देशन उनके भाई महेश भट्ट ने किया था, और आशिकी फिल्म का संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था।

0: और अब हम आपसे यहीं अनुमति लेना चाहेंगे, समय खत्म हो रहा है कार्यक्रम का, तो इजाजत दीजिए विशाल शर्मा और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है।

0: है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपलू सूरत मजा माने तू शू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस मजारू चित्र बनाई देते हैं। जरा SP जना लोको आप भाई के भेट आप मांगे थे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर

0: दिखाया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग आकर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप

0: पर आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां आप बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
0: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
0: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 5 जून है, कितनी अच्छी बातचीत अभी सुनी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं भारतीय दर्शन में, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो जो बाहर घटित होता है वही मेरे शरीर के अंदर भी घटित होता है। एक छोटा सा ब्रह्म, एक छोटी सी यूनिवर्स है मेरा अपना शरीर। तो अब बात ये आती है कि भाई शरीर को कैसे पुष्ट किया जाए, मौसम की बात की कि मौसम अच्छा होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, फसल अच्छी हो तो कैसे खाद आदि डालनी चाहिए। अब सफाई की, बाहरी सफाई की बात तो हम पर्यावरण के संदर्भ में बहुत करते हैं, हमें बात ये भी करनी होगी मनोमार्जन की, मन की सफाई की, है ना। हमारे मन में जो जाले लगे होते हैं ना, हमारी कई ऐसी धारणाएं होती हैं लोगों के बारे में। जैसे मुझे कई बार लोगों ने कहा कि अरे पता है मैं तो तुम्हारे बारे में ये सोचती थी, तुम तो ऐसी निकली। तो ये जो है, अब जो भी ऐसी धारणाएं होती हैं उन्हें हटाना चाहिए। और हटाने का तरीका पता है क्या है, सिर्फ एक ही है कि आप मन में जो जो जो मिट्टी है ना, मिट्टी अगर गीली होती है ना तो उसमें बीज अच्छा जाता है ना, अच्छा फलित होता है। वो जो मिट्टी है ना वो प्रेम की होनी चाहिए, सौहार्द की। मेरी बात सुनो, सौहार्द की। हम हरेक से अगर प्रेम न भी कर पाए तो एक सौहार्द, एक कंपैशन, करुणा हरेक के लिए होना चाहिए, है ना, कि मैं जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है इस ईश्वर ने सामने वाले को भी बनाया। तो वो जब आपके अंदर होता है ना तो बड़ी सुंदर स्थिति पैदा होती है, तब पैदा होती है मैत्री भावना दुनिया के लिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल स्वदर्शन 1 सुन रहे हैं आप, गाते गुनगुनाते में आपके साथ हम रूमी मलिक, स्वागत है।

गए वापस हैं। कुछ लोग जो अभी जोड़े हैं, लेट लतीफो डांट लगाऊं तुमको। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लोग कितना मैचिंग करते हैं ना, मेरा शू, मेरा पर्स, मेरी ड्रेस, मेरा बैंड, मेरे इयररिंग्स, सब मैचिंग हो। वैसे लड़कियों को ज्यादातर ये शौक होता है, पर मैंने देखा है कोशिश होती है आजकल तो कपल्स की भी, और ये मैंने टीवी सीरियल्स में भी देखा कि एक सीन है तो सारे के सारे जेंट्स पीले कुर्ते में, लेडीज पीली साड़ी में, कुछ इस तरह का ऐसा ट्रेंड बना हुआ है। पर हम कभी ये सोचते हैं कि हमें दिल मैचिंग होना चाहिए, दिमाग मैचिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन दिल मैचिंग हो तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाए ना। किसी से जब प्यार होता है तो कैसी लगती है ना दुनिया।

एक हमारे दिलो दिमाग का गणित होता है, पता नहीं क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या चीज ऐसी होती है कि वायलिन बजने लगते हैं पीछे पीछे से कोई आता है, दिल के तारों की झनकार हो जाती है ना। एंड आपको पता है लव प्यार का कुछ लेना देना नहीं है, आप कितने पतले हो, कितने मोटे हो, कितने गोरे हो, कितने सांवले हो, नथिंग। तो इसलिए ये शर्तें मत रखो और अपने अपने हीन भावना मत रखो। फिल्मी पर्दे पे जो आप देखते हो ना, है ना, वो हीरो और हीरोइन, वो काम ही उनका काम ही यही है भाई, टू मेक लव लुक नाइस। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं। ये थोड़ी है कि आप जिम नहीं करते तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगी। अरे जरूर करेगी, हो सकता है एक ही नजर में कर ले।

गाते गुनगुनाते कितने अच्छे गाने सुनवा रही हूँ ना मैं आपको, है ना, कितना पुण्य कमा रही हूँ मैं। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया, पर एक नजर में भी प्यार होता है ना। हाँ हाँ, हो जाता है। अब एक तो मैथमेटिक्स होता है, एक गणित होता है जो हमें किताबों में सिखाया जाता है।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। और हमने एक बार कहीं पढ़ा था कि अगर अगर आपको कुछ बहुत बुरा करना हो ना दुनिया में, तो आप नफरत कीजिए, वरना प्यार से ही सारे काम हो जाते हैं। और विश्वास मानिए, ये बात इतनी सच है, इतनी सच है। मतलब वो कितनी पहले कह के गए थे ना तुलसीदास जी, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहूं और, वशीकरण ये मंत्र है तजदे वचन कठोर। वाकई में इंसान वशीकरण, आपके वशीभूत हो जाएंगे लोग मीठा बोल के। तो देखो कुछ लोगों की तो आवाज़ ही इतनी सुंदर होती है। मैं कविता पाठ के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे है हमारी कवियत्री, मतलब इतनी इतनी प्यारी मीठी आवाज़, आवाज़ में विनम्रता हो, स्वाभाविक मिठास हो, अय हय क्या कहने क्या कहने। एक बार देख लो किसी की तरफ, बस कायल हो जाएगा आपका।

गाते गुनगुनाते का सफर यूं ही चल रहा है। आज बहुत दिल था प्यार भरे गाने आपको सुनाने का। कैसा माहौल बदल जाता है ना, मन का माहौल, इसकी बात कर रही हूं मैं। आपके बाहर कुछ भी चल रहा है उसे आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो तो अपने मन को। तो इसलिए संगीत और गीत का और प्रेमिल संगीत का बहुत बहुत महत्व है जीवन में, सचमुच में। पता है, हम छोटे थे तो दोनों हाथ की हथेलियां मिलाते थे और उसमें दोनों हथेलियों में जब एक गोल सी आकृति बनती थी आधे चांद वाली, तो कहते थे अरे अरे तेरा होने वाला या होने वाली पति या पत्नी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि चांद से उपमा दी जाती है किसकी सुंदरता की, प्रेम की, कोमल भावनाओं की, कलात्मक प्रवृत्ति की। और ये गीत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आप भी सुनिए मेरी पसंद।

और इसी दुआ के साथ कि आपके जिंदगी में भी ऐसा कोई हो जिसे आप देखते ही रह जाएं, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, जिंदगी खूबसूरत हो, गुलशन हो, गुलजार हो, इसी उम्मीद के साथ हम रूमी मलिक आपसे लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड खरा सोना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: करणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट बॉर्डर रणनीतिम इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे, ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है।
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रेपि विश्वे आमाद्यते। पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अंतर्गतं अयं दिवसः प्रतिवर्षं आयोज्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह देशवासिभ्यः शुभाशंसाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्र वृद्धौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत्। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षणं सतत विकासं च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्रि दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य, आन्ध्रप्रदेशस्य, कर्णाटकस्य च केषुचित् भागेषु, तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां आ 18 वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Subodh Mishra.
1: धन्यवाद अनुभा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नज़र डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध. थैंक यू अनुभा.
1: पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा.
0: थैंक यू सुबोध. Indian economy grows by 7.7% in financial year 2026. Fourth quarter growth pegged at 7.8%. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged, cuts GDP growth projection for current financial year to 6.6%, and benchmark domestic indices end on negative note. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 23,400.
1: वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की वृद्धि दर का अनुमान. चौथी तिमाही में बढ़ोतरी की दर रह सकती है 7.8%. सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में कैपिटल गेन

0: You today, of course, listeners, we will be telling you all about it and discussing it with our expert. But before that, you have to know something very important. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now, Subodh, the top story.
1: Ji ha, pehli khabar ye hai, desh ki arthvyavastha ne pichle vitt varsh yani 2025-26 mein mazboot raftaar बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 7.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 7.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक जीडीपी के प्रोविजनल अनुमान और इस वर्ष जनवरी से मार्च तिमाही के अनुमान जारी किए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कृषि और मत्स्य क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा। विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से जुड़ी सेवाओं तथा रियल एस्टेट क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में दहाई अंकों की वृद्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च अवधि में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है। वास्तविक और नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है। विशाल आंकड़े आए हैं और कुछ उत्साहजनक हैं। देश की हालत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी दृष्टि में क्या तस्वीर बनती है?
2: देखिए सुबोध जी, जो 7.7% के आंकड़े आए हैं, प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बात प्रोजेक्शन में 7.1% की हो रही थी, और ये आंकड़े 7.7% की जिसे कहा जाए कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है वो बताते हैं। एक चीज इससे जो साफ है वो ये है कि जिस तरह का वैश्विक माहौल इस वक्त है, और केवल यहां हम जो इस वक्त दो प्रमुख लड़ाइयां जो चल रही हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले लगभग साल भर से ज्यादा का समय देखें और उसमें जिस तरह से ट्रंप टैरिफ्स को लेकर जो उथल पुथल हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में भी, तो मोटे तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि भारत पर उसका उतना असर नहीं पड़ा है जिस तरह की उम्मीद शायद की जा रही थी कि असर पड़े।
1: जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि पिछले एक साल में या पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें अगर हम, तो कोई ना कोई नकारात्मक, कुछ नेगेटिव चल ही रहा था जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने उसको झेल के भी ये प्रदर्शन किया है।
2: जी बिल्कुल, और इसका फायदा हमें आगे चलकर होने वाला है, क्योंकि अब जो समय है वो थोड़ा सा कठिन समय है, और ये आप और जो आगे खबरें बताएंगे उसमें भी साफ जाहिर होगा। लेकिन सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी, जिस तरह के इंडिकेशंस हैं और जिस तरह के मेजर्स लिए गए हैं वो ये दर्शाता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी, और जो सेंट्रल बैंक है वो भी, उनको पूरी तरह से अंदाजा है कि आगे का रास्ता उतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो 7.7% का आंकड़ा है ये वो मजबूती प्रदान करता है कि जो आगे का मुश्किल रास्ता है उसको थोड़ा सा आसान कैसे बनाया जा सके।
0: विशाल, यू नो व्हेन वी लुक एट द नंबर्स वी ऑल्सो सी दैट द प्राइमरी सेक्टर has a like Subodh just read, primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by performance of agriculture and fishery sectors. And then we've seen double digit growth in manufacturing, trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting and real estate sectors. So actually speaking, it's an all-round performance that we're looking here. It's not just one or two sectors, you know, that have contributed to the 7.7% figure. So that's also a very heartening fact here.
2: Indeed, you know, that's why I said, Anubha, earlier that, you know, the kind of holistic growth which has been achieved here, it's not riding on just one or two sectors.
0: Yes.
2: In fact, you know, it would not be wrong to say that there is a uniform performance by almost every important sector here. And that is where the fundamentals are further strengthened, the fundamentals on the basis of which we have to now navigate rough waters. Everybody is navigating.
0: Yes.
2: It's not just about us. The entire world is navigating those rough economic waters, and you know, especially driven by the energy एनर्जी प्राइसेस

0: the flow of foreign capital into the country. The Reserve Bank of India's decision to increase the limit for investment by NRIs and OCIs in equity instruments will also help India attract foreign capital. Both the decisions should help soften the pressure on rupee.
1: विशाल, अभी हमने सुना ए के भट्टाचार्य की बात भी सुनी, उनका रिएक्शन सुना, और उससे पहले जो खबरें पढ़ी है मैंने और अनुभा ने, जो दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से बाजार को ये चिंता लगी हुई थी कि हमारे यहाँ से पैसे निकल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, जो फैक्टर्स काम कर रहे थे उसको लेकर, क्या इन कदमों से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन अब बेहतर होंगे हमारे?
2: देखिए, मैं हम सब के वरिष्ठ सहयोगी भट्टाचार्य जी ने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मोटे तौर पे इसको समझने की जरूरत है। आज कई बड़ी बातें हुई, कई बड़े फैसले हुए, कुछ का असर केवल कल देखने को मिल सकता है या सोमवार को देखने को मिले, और कुछ का असर अगले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो नहीं लिए गए क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए वो एक गुंजाइश बनाकर रखी जाए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फैसले लिए जाएंगे। तो सबसे पहले उसी फैसले से शुरुआत करते हैं, जो रेपो रेट जो अनचेंज रखा गया है, उम्मीदें ऐसी ही थी, क्योंकि देखिए आरबीआई चाहे तो चाहता तो आज वो रिलैक्सेशन दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने एक लार्जर आउटलुक रखी, एक ग्लोबल आउटलुक के हिसाब से देखा, और उनको लगा कि इस वक्त जो स्थिति है वो उतनी गंभीर नहीं है कि उसमें ऐसा कदम उठाया जा सके, इसमें कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, और रेपो रेट को चेंज करने का जो फैसला है उसे शायद आगे के लिए बचाकर रखा जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि सुबोध ने बताया कि भाई, और भट्टाचार्य जी भी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स को लेकर फैसला, यहां दो तरह के फैसले किए हैं, एक फैसला आरबीआई ने किया है, सेंट्रल बैंक ने, दूसरा फैसला केंद्र सरकार ने किया है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और इससे निश्चित रूप से सुबोध जी, जैसा कि आपका सवाल था कि जो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेश जिसे कहा जाए, उसमें जो थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी चल रही थी वो वॉलिटिलिटी थोड़ी सी कम हो सके, और क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन समय है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, मार्केट्स के एस्पेक्ट से, तो उसमें जो विदेशी निवेशकों का जो जिसे कहा जाए भरोसा बरकरार रहे, और उन्हें भी लगे कि अगर वो एक रुपया भारत में निवेश कर रहे हैं तो उसमें से उनको भी कुछ फायदा मिले, तो इसलिए वो टैक्स ब्रेक सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया, कुछ रिलैक्सेशन आरबीआई की तरफ से अनाउंस किया गया, तो ये तरीका है, एक टैक्टिक है इंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रहे, उसमें कोई खास कमी ना आए। हाँ, एक डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जिसे मैं कहूंगा आरबीआई की तरफ से, जो मॉनेटरी पॉलिसी पे मोटे तौर पर नजर डाल के देखें, वो ये कि केवल ये फैसला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से नहीं लिया गया है, ये फैसला इन्फ्लेशन को भी कैसे कंटेन किया जाए उसके लिहाज से भी लिया गया है, और आरबीआई जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं कि देव नॉट यू नो sort of left no stone unturned in both action and in terms of words as well. They've not kept anything hidden. They have ensured that, you know, the real truth is there. They're not playing with numbers. They've, you know, clearly come out and said that earlier our projection was 6.9%. Now it is going to be 6.6% given the current situation. Yes. And as far as inflation is concerned, this might also cross the 5% mark and go up to 5.1%. So it's like giving a clear picture to the people and then moving ahead with the steps which need to be taken. Not all of them at once. You don't fire all your arrows at once. Yeah. You need to keep some also with you.
3: Right. Vishal, beyond the foreign inflow and the currency support, of course, that the government's center's decision today will provide, how will this policy decision, the one taken by the government regarding the foreign investors, how will it contribute to the long-term attractiveness of the Indian debt market when we compare it to the other emerging markets or even, you know, other debt markets of the world?
2: See, with the tax break, by just back of the hand calculation, you know, if I look at it that way, now the Indian debt market will be at par with the other major, debt markets in the global economy. So of course, it's going to be as lucrative for the FIIs to invest in the Indian, government bonds and securities as it is for them to invest elsewhere, say American bonds or, you know, maybe some other major economies as well. So largely, we're putting ourselves out there saying that, yes, our position and our standards and our

0: taxes are at the same level as it is for the other economies as well. You're most welcome. So basically, we're adding one more choice to the investors' basket. And I think when we do another comparison between these economies and our own economic fundamentals and the way our economy has performed so far, there is plus one there as well, because we've performed much better than these other economies in the past 1.5 or 2 years, and that is something which will add more value to the foreign investors when they sit on the table and they take a decision as to where should we invest.
1: जी अनुभव ये हाँ अब सरकार ने तो जो कदम लेने थे और जो आरबीआई ने कदम लेने थे उन्होंने तो ले लिया है. अब देखते हैं कि बाजार कितना आकर्षित कर पाता है.
2: सोमवार को पता लगेगा, पर उसके पहले लेट्स टेक अ रिएक्शन कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री बॉडी. इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम हैज सेड दैट द आरबीआईज डिसीजन टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड विल स्ट्रेंथन ग्रोथ एंड बिजनेस सेंटिमेंट्स. सेक्रेटरी जनरल एसोचैम सौरभ सान्याल सेड दैट द डिसीजन रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल इंश्योरिंग इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट रेंज. He said the unchanged rate signals confidence in the domestic economy while preserving room for timely action in response to evolving macroeconomic and financial conditions.
1: जी और देखते हैं अब शेयर बाजार का क्या हाल रहा है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर. देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 74,243 पर बंद हुआ. एनएसई का निफ्टी 50 अंक नीचे 23,367 पर आ गया. एनएसई के मिड कैप 100 सूचकांक में 0.3% का नुकसान रहा और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में भी हल्की गिरावट देखी गई. वैसे आज कारोबार की शुरुआत में रुझान सकारात्मक थे, लेकिन दोपहर में मुनाफा वसूली और निवेशकों के सावधान रुख की वजह से सूचकांक गिरने लगे.
2: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The BSE Sensex dropped 117 points to close at 74,243. The NSE Nifty slipped 50 points to settle at 23,367. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 fell over 0.3% and the small-cap 100 index settled marginally lower. After a positive start, indices lost momentum during afternoon trade and turned negative as profit-taking and cautious investor sentiment weighed on the market.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में नुकसान रहा. सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें. ट्रेंड के शेयर 2.2% नीचे आ गए. टीसीएस और टाटा स्टील दोनों में 1.8% गिरावट रही. इसके उलट हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 2.1% उछल गए. अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.8% और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.7% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
2: In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, hospitals rose over 1.4%, utilities rose 0.6%, PSU banks as well as realty climbed almost 0.6%. Conversely, metal emerged as the biggest drag, dropping over 1.6%, followed by telecommunication, which shed over 1.5%. Meanwhile, commodities index also dropped over 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative.
1: जी विशाल, आज अगर हम शेयर बाजार पर देखें तो आज जो आरबीआई से और जो सरकार की ओर से जो घोषणाएं थी उनका कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि शायद अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स अभी बहुत अंतर्राष्ट्रीय कारक जो है वो बहुत भारी पड़ रहे हैं. अभी
0: देखिए भारी अभी पड़ रहे हैं. और दूसरा एक चीज और समझने की जरूरत है कि मार्केट रिएक्ट जरूर करता है, लेकिन जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जाएं तो थोड़ा सा एक सोच समझ के रिएक्शन आता है. और एक चीज और है कि आज शुक्रवार का दिन था, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आया तब तक लगभग आधा दिन जा चुका था. और उस आधे दिन को देखें तो उसमें गेंस थे और फिर उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा रुख मोड़ा. निश्चित है जब इस तरह के आंकड़े बाजार के सामने आखिरी 1-2 घंटे में आए कि भाई जो आउटलुक है वो महंगाई को लेकर क्या है, आरबीआई ने जो 4.6 से 5.1 की बात कही है, ग्रोथ फॉरकास्ट अगर जो है 6.9 से कम करके 6.6 करें, तो वो बड़े बड़े आंकड़ों को देख के. लेकिन लार्जली मेरा मानना है कि सोमवार से कुछ असर जो है इन फैसलों का जरूर बाजार पर देखने को मिलेगा. हालांकि सीधे तौर पर अगर कहें तो सरकार और आरबीआई को जो फैसले लेने थे वो उन्होंने ले दिए हैं. अब उनका इस बात पर

0: कोई प्रभाव नहीं है कि कल बाजार किस तरह
1: जी
0: सोमवार को बिहेव करेगा, क्योंकि बाजार का एक अपना तरीका है। और केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी
1: जी
0: हैं। एक बार फिर
1: फिर
0: से
1: से जंग शुरू होने
0: जंग
1: लगी
0: शुरू हो
1: है।
0: गई है, एक बार फिर से जो उम्मीद की जा रही थी कि आखिर इसका कोई कोई शांतिपूर्ण हल निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा माना जा सकता है कि उस पर भी सबकी नजर रही होगी। इसलिए मेरा कहना है कि बाजार किस तरह से बिहेव करेगा और बाजार में क्या असर देखेगा, उसके लिए शायद मुझे लगता है कि सोमवार नहीं, शायद अगले 2-3 दिन तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो FIIs को लेकर, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उसका भी कुछ असर, पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है।
1: यानी कि ऑल यू से व्हाट यू सेइंग इज दैट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट आल्सो एट सम पॉइंट यू नो एट सम लेवल द वॉलिटिलिटी इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द मार्केट्स।
0: या बट आई बिलीव इट शुड बी अ लिटिल लेस देन व्हाट वी हैव विटनेस्ड इन द
1: ओके
0: पास्ट 15-20 odd days, एट लीस्ट इन दिस वीक ओनली। इफ यू लुक एट द नंबर्स, यू नो निफ्टी आई गेस इज लॉस्ट अराउंड 2,000 points स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, नॉट बट मच ऑफ अ चेंज इन सेंसेक्स, बट देन यू नो देर इज बिन अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट एज वेल। विद दीज डिसीजंस व्हाट आई बिलीव इज दैट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोथ फॉरन एंड डोमेस्टिक विल बी एबल टू गो अहेड एंड मेक मोर इन्फॉर्म decisions in the days to come, and that you know that kind of path which will be taken by DIIs and FIIs will eventually reflect on the retail investors as well.
1: जी,
2: और देखें रुपए का क्या हाल रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 85 पैसे बढ़कर 94.94 रुपए पर बंद हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश के नियमों में छूट और पूंजी प्रवाह बढ़ाने के उपायों की घोषणा से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.21 पर कारोबार कर रहा था। और एशियाई बाजारों का भी आज हाल कुछ बेहाल ही रहा है। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली और पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से निवेशकों की सावधानी का प्रभाव बना रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.5% से अधिक, जापान का निकेई 1.3%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% से ज्यादा, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.7% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.35% नीचे आ गया। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार भी तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.5% और लंदन का फुटसी 0.4% ऊपर था। जर्मनी के डैक्स में मामूली गिरावट देखी गई।
1: लेट्स मूव ऑन टू द यूएस मार्केट्स। मेजर यूएस स्टॉक इंडेक्सेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड यस्टरडे। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सर्ज्ड ओवर 1.7% टू सेटल एट अ रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई ऑफ 51,562, लेड बाय नॉन टेक स्टॉक्स। The S&P 500 reversed early losses and gained 0.4%, while the tech-heavy Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. A very quick comment from you, Vishal. We've been seeing a rally in the Asian markets, you know, thanks to the their dominance in the AI sector. But today, losses all across.
0: Yeah, because of what is happening as far as the Iran-US front is concerned, and you know the markets do react very quickly to the situations of conflict, and that is why you know that impact was slightly visible on the Indian market as well. But globally, you know, whatever positive indicators were coming in as far as peaceful resolution of
1: yes.
0: the conflict, that seems to have gone out for a toss, and that is something which is not taken kindly by any market across the world anywhere, be it European markets or Asian markets.
1: Right.
0: And I think we might see the same similar situation as far as Dow Jones or you know the US markets are concerned as well.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices edged lower today. Brent crude was trading 0.2% down at $94.85 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 0.1% down at $92.95 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the prices of gold and silver. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% down at 1,58,190 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,60,890 rupees per kilogram a short while ago.
2: जी, और एमसीएक्स में जून अनुबंध वाला सोना लगभग 1% नीचे 1,54,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.8% गिरकर 2,59,999 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। विशाल, जैसा अभी अनुभव बता रही थी क्रूड

0: प्राइसेस थोड़े ठंडे हो रहे हैं और सोने चांदी की चमक भी थोड़ी कम होती दिख रही है।
1: देखिए, ये सब तो उतार चढ़ाव जरूर चलेगा, क्योंकि खास तौर पे मैं सोने चांदी से ज़्यादा क्रूड की कीमतों पर ज़्यादा मेरी नज़र है, क्योंकि
0: जी, उस
1: सोने
0: पर तो
1: चांदी की
0: सबकी
1: अपनी एक चाल है
0: नजर
1: और वो चाल हमेशा बरकरार रहेगी। अब बाकी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो क्रूड हो या फिर और मेटल्स हो, उनको थोड़ा सा पेस अप करना पड़ता है और उन पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। सोना हमेशा सोना ही रहेगा, और जहाँ तक चांदी की बात है, उससे ज़्यादा उम्मीदें ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो चमकती भी है उतनी ही तेज, और फिर उसके बाद उसकी चमक जल्दी फीकी भी पड़ती है।
0: हालांकि
1: पर आप अभी
0: जी
1: जैसा कह रहे थे, व्हाट अबाउट द क्रूड, यू सेइंग दैट यू आर यू नो यू मॉनिटर और रादर योर आइज आर ऑलवेज ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। वेयर डू यू सी द ट्रेंड लाइक गोइंग राइट नाउ?
0: आई थिंक इट माइट टेक यू नो अ यू टर्न अगेन, बिकॉज गिवन द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज वेयर द एंटायर ट्रैप लाइज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी।
2: बस यही उम्मीद करें कि अगले 2-3 दिन में मामला कुछ शांत होने की दिशा में बढ़े तो शायद सब कुछ शांत रहे।
1: जी बिल्कुल,
2: जी
1: उम्मीद पे ही दुनिया कायम।
2: जी विशाल, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। इंडियन इकोनॉमी ग्रोज बाय 7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2026, फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ पेग्ड एट 7.8%। Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged, cuts GDP growth projection for the current financial year to 6.6%, and benchmark domestic indices end on negative note. Sensex slip drops over 100 points, Nifty settles below 23,400. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Prime Minister is scheduled to visit Daman later today to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. These projects include major healthcare and aviation infrastructure. He will also lay foundation stone for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said, "Government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth."

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रीमती गुप्ता के कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लगने की घटनाओं, बिना मंजूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन और लोगों की जान खतरे में डालने वाले दूसरे मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जिनके तहत दोषी पाए गए अधिकारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुग्राम के जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गुरुग्राम जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
4: DIPRO के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संस्थानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता की जांच, आपातकालीन निकास व्यवस्था का निरीक्षण और फायर अलार्म सिस्टम तथा सुरक्षा प्रावधानों का सत्यापन किया जाएगा। DIPRO ने बताया कि नियमों का उल्लंघन

0: मिलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना सुबह 2:47 पर प्राप्त हुई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मौके पर 11 गाड़ियां भेजी और सुबह लगभग 7 तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। इस दौरान 2 दमकल कर्मियों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने आज एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में इस कंपनी की 1000 ईवी टैक्सी से सेवाओं की शुरुआत हुई है और अगले एक वर्ष में दिल्ली एनसीआर में इनकी संख्या 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज से शकूर बस्ती रेल सेक्शन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं और प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, मेंटेनेंस स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों से संवाद भी किया। उत्तर रेलवे ने बताया कि श्री वैष्णव ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ रेल अधिकारियों को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से गौर करने तथा उनके त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के जखीरा अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड के अधिकारी उन सभी जल भराव के प्वाइंट पर लगातार काम कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष मानसून के दौरान जल भराव हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले मानसून को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को बारिश के दौरान कोई भी असुविधा न हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: दिल्ली में पिछली बारिश में जहां जहां हमको वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स मिले, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी निरंतर हर पॉइंट पर जाकर देख रहे हैं। सारी व्यवस्था अभी से हो चुकी है, हमारे सारे पंप स्टेशन, सारे अधिकारी और वो एकदम से मुस्तैद हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसके पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर किए गए साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बोर्ड ने बताया कि यह पोर्टल इस महीने की 2 को शुरू किया गया था, जिस पर पिछले 3 में बार बार सुनियोजित साइबर हमले किए गए। एक रिपोर्ट।
3: CBSE के अनुसार इन हमलों की प्रकृति, पैमाने और सुनियोजित तरीके को देखते हुए उसने विस्तृत जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए ये शिकायत दर्ज की है। CBSE ने इस बात पर बल दिया है कि इन प्रयासों के बावजूद उसके सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीम के सहयोग से लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से इन हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,300 14 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। 13 को 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्त अंकों से असंतोष व्यक्त किया था और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत मूल्यांकन की सटीकता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के कार्यान्वयन और खरीद संबंधी पहलुओं की समीक्षा शुरू की। जवाबदेही और विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया और प्रशांत लोखंडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि JEE एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक

0: रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत बनाए रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जबकि नीतिगत रेपो रेट को तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार सुगमता लाने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ भी किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने नागरिकों से न केवल पेड़ लगाने बल्कि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पोषित और संरक्षित करने का भी आग्रह किया।
2: दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। नमो पार्क को दिल्ली को समर्पित किया गया है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक पेड़ मां के नाम पे जरूर लगाएं। आपके द्वारा ये किया गया कार्य पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होगा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष राजधानी में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया।
3: 15 लाख पेड़ इस साल लगाने हैं। सैपलिंग हम देंगे, जगह भी बताएंगे, पर पेड़ सब मिलकर के लगाएंगे। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो गया है। हम लोग इस बार पॉल्यूशन रिलेटेड सभी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। हम ऑलरेडी दिल्ली की सभी सड़कों को वॉल टू वॉल कार्पेटिंग के लिए प्लान कर चुके, इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
4: Observing that World Environmental Day, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji.
5: हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने हमेशा पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया है और देश को इसके प्रति जागरूक किया है। हमें पानी बचाना है, पेड़ लगाने हैं और लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करनी है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ही आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।
4: एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा

के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री ने आज दमण में भी लगभग 2,970 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परियोजना अंतिम चरण में है। श्री शाह ने कहा कि अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई हालिया आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की

0: योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और गैर परिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के विकास में सहयोग के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. Later, Prime Minister reached Daman, where he inaugurated and laid the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26, with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth. Union Home Minister Amit Shah has said Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving complete development. He highlighted that it is equally crucial to keep the youth away from drug abuse and to thwart all attempts to damage the national economy through fake currency. Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today announced that natural gas has been discovered at the Sri Vijayapuram 3, about 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands. In a social media post, Mr. Puri said, the

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर वक्त हुआ है 8:11 और ये वक्त कहता है कि आप जुड़ जाइए उस महफिल से जिसका नाम है मधुरिमा। मधुरिमा की महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय रागों और उन पर आधारित गीतों की। तो आज जिस शास्त्रीय राग पर आधारित गीत लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो राग है राग जनसम्मोहिनी। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री।

राग जन सम्मोहिनी दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में आया एक बहुत ही मधुर और रंजकतापूर्ण राग है। ये मूलतः राग कलावती में ऋषभ रे स्वर लगाने से बनता है, जिसे खमाज थाट के अंतर्गत माना जाता है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के

0: 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफलाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

राग जन सम्मोहिनी की बात कर रहे हैं हम। इसमें जिसका थर्ड जो है वो खमाज है और इसमें गंधार गा पंचम पा धैवत धा और निषाद नी शुद्ध प्रयोग होते हैं। कोमल निषाद को छोड़कर बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। आरोह और अवरोह में ऋषभ रे का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है।

इस गीत के साथ ही आज की महफिल मधुरिमा यहीं पर समाप्त होती है। संजीव को दीजिए इजाजत, लेकिन सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा। आज पहले दिन 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हारी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने हमवतन बी गुकेश को हराया, खिताब की दौड़ में शामिल। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल मडगांव में भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।

0: तो शुरुआत योगासन के साथ। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत का दबदबा रहा। भारत के योगासन खिलाड़ियों ने दौ पर लगे 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। योगासन का सीनियर पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के अभय बर्मन ने जीता। रजत इंडोनेशिया के अर्कन रियांतो ने अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक उज्बेकिस्तान के एलन के नाम रहा। सीनियर महिला वर्ग में भारत की रितु मंडल पहले स्थान पर रही, कजाकिस्तान की एजहन कोआन याशोबायवा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तीसरा स्थान हांगकांग की लैम एनगा ने जीता। सीनियर ए पुरुष वर्ग में सिंगापुर के नथानियल तान लियांग एन पहले स्थान पर रहे, रजत पदक तंजानिया के कारिमुस्वाफी को मिला, भारत के सुमीर तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर ए महिला वर्ग में भारत की रितु ठाकुर को स्वर्ण, अर्जेंटीना की नबीला सोल बराजा को रजत, जबकि कीनिया की अबूओर सोलिना को कांस्य पदक मिला। सीनियर बी पुरुष वर्ग में भारत के रोशन थापा ने स्वर्ण पदक जीता, बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू को रजत और किर्गिस्तान के डेनियल रायकोव को कांस्य पदक मिला। ट्विस्टिंग बॉडी के सीनियर बी व्यक्तिगत वर्ग में भारत की ज्योति देउरकर को स्वर्ण पदक, ओमान की ओलिमुथु नवामानी को रजत और जापान की सारू क्यूई को कांस्य पदक मिला। तो ये थी बात योगासन की, और अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। जापान के काकामिगहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। खिताब के लिए कल भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर जीत के बाद निश्चित रूप से भारतीय टीम का हौसला आसमान की बुलंदियों पर होगा। अब उसका लक्ष्य चैंपियन बनना है।

0: स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में अली शाहरुख ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया और महज 2 मिनट के बाद मोहम्मद फरहान असलम ने गोल कर स्कोर को 2-2 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच में पहली बार बढ़त हासिल की जब 42वें मिनट में उजैर अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को 3-2 से आगे कर दिया, जहां पाकिस्तान की टीम का दबदबा दिख रहा था। लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। आशीष तानी ने पहले भारत को बराबरी दिलाई और फिर 53वें मिनट में अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इस गोल ने भारत को 4-3 की बढ़त दिला दी और पाकिस्तान दबाव में आ गया। मैच खत्म होने से पहले तानी ने अपना 4था गोल भी दाग दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। उनके 4 गोलों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। आशीष टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए, उन्हें फाइनल भी जीतने का भरोसा है।
1: काफी अच्छा खेले हम लोग और मेरी टीम ने काफी मेहनत किया और एफर्ट मार रहे थे और आज हम लोग का सेमीफाइनल था पाकिस्तान के साथ और हम लोग उसमें विन किए हैं। अब हम लोग का फाइनल है कल, तो हम लोग उसमें भी विन करेंगे।
0: हालांकि खिताब के लिए टक्कर कांटे की होगी क्योंकि सामने मेजबान टीम होगी। सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ियों की मलेशिया के खिलाफ 8-1 की जीत से हौसले बुलंद होंगे, लेकिन भारतीय टीम अगर आज की तरह कल भी एकजुट होकर खेलने में कामयाब रही तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं होगा। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ आज भारतीय खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने बेहद दमदार प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि हॉकी हमारी ताकत है। इस खेल में हमारा दबदबा क्यों है, क्योंकि जूनियर वर्ग से ही हम इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं। और जब हॉकी की बात आती है तो जाहिर है उसके बाद बात क्रिकेट की भी आती है। आईपीएल के फटाफट अंदाज के बाद अब टेस्ट के जरिए भद्रजनों के इस खेल के सबसे कठिन और लंबे फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों की परीक्षा होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का हिस्सा नहीं है, फिर भी मुकाबला जोरदार रहेगा। मुकेश से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत के पास अपने टीम संयोजन को आजमाने का ये अच्छा मौका है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल और उपकप्तान KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। दोनों का हालिया फॉर्म शानदार रहा है। राहुल ने इस IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 593 रन बनाए थे। दूसरी ओर जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 427 रन बनाए। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच कड़ा मुकाबला है। कर्नाटक के कप्तान पडिक्कल ने पिछले रणजी सत्र में 5 मैचों में 532 रन बनाए थे, जिसमें उत्तराखंड के खिलाफ 232 रन की पारी भी शामिल थी। दूसरी ओर IPL में 722 रन बनाने वाले साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर सके हैं। फिर भी टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि साई सुदर्शन टीम की पहली पसंद होंगे।
4: He's only played what? Handful of test matches and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place. And he's had a phenomenal run in IPL as well and we got to give him a fair chance.
3: Wicketkeeper बल्लेबाज ऋषभ पंत का नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना लगभग तय है। हालांकि पंत के लिए इस बार IPL उनके करियर के सबसे खराब सीजन में से एक रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में पंत ने 2018 में शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम के 2 प्रमुख ऑलराउंडर हो सकते हैं। सुंदर ने पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी लगातार अपनी गेंदबाजी में सुधार कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प भी देगी। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को आराम दिए जाने के बाद भारत को लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर की तलाश है। टीम में नए खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। ऐसे में विदर्भ के हर्ष दुबे, राजस्थान के मानव सुधार में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसका संकेत टीम के सहायक कोच रियान टेन की बातों से भी मिलता है।
5: Look, I think the chance of both of them playing in the test are probably pretty small. We haven't finalized the combination, but I'd imagine, you know, Kuldeep will play and Washi will play, and then one of those two will play.
3: Washington Sundar के साथ कुलदीप यादव दो मुख्य स्पिनर होंगे. मानव के साथ हर्ष दुबे के भी अंतिम 11 में जगह बनाने की संभावना है. चीफ कोच गौतम गंभीर ने कहा भी है कि वे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज से पहले चार स्पिनर को तैयार करना चाहते हैं.
4: This probably is the only test match where we can think of or looking at someone who could be a fourth spinner, because after this we go to Sri Lanka and we might have to carry four spinners as well.

0: So this is an ideal opportunity to try someone who could be a long-term fourth spinner as well.
1: अफगानिस्तान ने 2018 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, जिसे मेजबान टीम ने दो दिन के भीतर ही जीत लिया था। इसके बाद से जून 2026 तक अफगानिस्तान ने 11 और मैच खेले हैं। इसी अवधि में भारत ने 67 टेस्ट मैच खेले हैं। 2018 की टीम से केवल केएल राहुल ही वर्तमान भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा है, जबकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी और बल्लेबाज अहमद शाह भी उस मैच में खेले थे। ये मैच जून के महीने में उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा और इसमें दोनों टीम की शारीरिक फिटनेस की भी कड़ी परीक्षा होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: योगासन की बात हो गई, हॉकी की बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई और अब माइंड गेम शतरंज की बात। दरअसल ओस्लो में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन और हमवतन डी गुकेश पर क्लासिकल बाजी में शानदार जीत हासिल करके नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के खिताब की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। प्रज्ञानंदा इस जीत के बाद शीर्ष पर काबिज अमेरिका के वेस्ली सो से सिर्फ आधा अंक पीछे रह गए हैं। अब सिर्फ एक बाजी होनी है और वो निर्णायक साबित होगी। क्या कुछ रहा प्रदर्शन प्रज्ञानंदा का नवी बाजी में और क्या है संभावना फाइनल को लेकर, सुनते हैं विशाल से।
3: शह और मात के इस खेल में प्रज्ञानानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए शुरुआत में ही बेहद मजबूत निम्जो इंडियन सैमिश सेटअप को चुना। दूसरी तरफ सफेद मोहरों से खेल रहे विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शुरुआती चालों से आक्रामक शुरुआत की और बोर्ड के सेंटर पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रज्ञानानंद ने सीधे तौर पर गुकेश की डबल सी पोन संरचना की कमजोरी को निशाना बनाया। इस मुकाबले में गुकेश की आक्रामकता का जवाब प्रज्ञानानंद ने संयम से दिया। वे लगातार विश्व चैंपियन की का सटीक जवाब देते रहे। ऐसे में धीरे धीरे गुकेश की सफेद मोहरों के जरिए बनाई गई आक्रामकता खत्म हो गई। खेल की 34वीं चाल तक प्रज्ञानानंद ने पोजीशन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था, जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए गुकेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। प्रज्ञानानंद ने गुकेश को क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। इससे वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 9वें दौर के बाद प्रज्ञानानंद 15 अंकों के साथ अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के 15.5 अंक से सिर्फ आधा अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। इस जीत के बाद प्रज्ञानानंद ने अपनी 9वीं बाजी के बारे में बताया।
4: I was of course very happy with it because tournament situation kind of demanded me to fight. I was looking forward to a fight and I knew that he will go for it and I thought at some point he was probably playing too rash. I felt like I was just going for it in a position which I didn't really see a compensation for him. He sacked the rook and then I think I consolidated and converted.
3: फ्रांस के अलीरेज़ा फिरोजा भी 14.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। जाहिर है अब बचे सिर्फ एक राउंड में 3 खिलाड़ियों के पास खिताब जीतने का मौका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी खिलाड़ी खिताब जीतेगा वो पहली बार नॉर्वे शतरंज चैंपियन बनेगा। प्रज्ञानानंद निर्णायक दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर का सामना करेंगे, जबकि वेस्ली सो का मुकाबला अलीरेज़ा से होगा। महिला वर्ग में मौजूदा विश्व ब्लिट्ज चैंपियन बिबिसारा असा उबायेवा ने एक राउंड शेष रहते हुए निर्णायक बढ़त लेकर खिताब अपने नाम कर लिया। उनके 16.5 अंक हैं। भारत की दिव्या देशमुख 10 अंकों के साथ 5वें और कनेरु हम्पी 9 अंकों के साथ सबसे नीचे 6ठे स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में इस समय चेक गणराज्य के जैकब मैसी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के साथ चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल इटली के दो खिलाड़ियों मेटियो अर्नाल्डी और फ्लेवियो कोबोली के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल पोलैंड की माया खोलिंस्का और रूस की मीरा एंड्रीवा ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेन्स डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा कर्णन की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की जोड़ी को मलेशिया के गोह जेफेई और नूर इजुद्दीन ने आसानी से 12-21, 10-21 से हराया। फुटबॉल की भी बात करते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल भारतीय महिला टीम गोवा के मडगांव में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। भारत क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6 खिताब जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम लगातार 5 खिताब जीतने के बाद पिछले 2 अवसरों पर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। बांग्लादेश ने 2022 और 2024 में दोनों मौकों पर नेपाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 4थे एशियाई एथलीट बन गए हैं। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान की ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत की

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई थ्रोअरों में शामिल हैं। कुआलालंपुर में द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत ने महिला और पुरुष वर्गों में कांस्य पदक जीता। आज समाप्त हुई चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण और श्रीलंका ने रजत पदक जीता। महिला वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के करीब 200 पैरा खिलाड़ियों ने शिरकत की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की

0: तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों

0: के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमण, और पूरी

0: YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Current Affairs.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। मई माह में भारत के यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग की आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है।

0: Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Dr. Jaishankar will hold talks with his Nepalese counterpart tomorrow. In hockey, India defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan, to set up a title clash against the hosts. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की। IAEA ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली आपूर्ति लाइन की मरम्मत के लिए यूक्रेन और रूस के बीच अस्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत की और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर Under-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता समी दीन बलूच ने बलूच कवित्री हबीबा पीरजान के कथित जबरन लापता किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूच महिलाओं को मनमाने ढंग से हिरासत में ले रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में समी बलूच ने कहा कि हबीबा पीरजान को इस वर्ष 25 मई को कराची में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया था। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। समी बलूच ने स्थिति को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और मामले पर ध्यान देने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच के दौरान दुनिया की कुछ समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि रूस अभी भी भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने पहले रूस के साथ लगभग $5 अरब का समझौता कर 5 S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने का फैसला किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवी नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है।
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष अब तक 1076 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रवासन और लोगों की आवाजाही को लेकर बातचीत जारी है। नेपाल के विदेश

0: मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर सक्रिय रूप से इसका नेतृत्व कर रहा है। आज सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई बुनियादी ढांचा परियोजना की शुरुआत करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अकेले गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है, जो देश की हरित ऊर्जा हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण पांचवा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन और रूस के बीच अस्थायी स्थानीय युद्ध विराम पर बातचीत की है ताकि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली एक महत्वपूर्ण लाइन की मरम्मत की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि क्षेत्र में व्यापक बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के बाद दोनों पक्षों के टेक्नीशियन द्वारा अब 750 किलो वोल्ट की क्षतिग्रस्त निप्रोवस्का बिजली लाइन की मरम्मत शुरू किए जाने की संभावना है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने चक्रवात तूफान दित्वा से हुए व्यापक नुकसान के बाद भारत सरकार के अनुदान से पुनर्निर्मित उत्तरी रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। ये पुनर्निर्माण कार्य भारत द्वारा श्रीलंका के राहत कार्यों के लिए दिए गए 45 करोड़ अमरीकी डॉलर के व्यापक पुनर्निर्माण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख अमरीकी डॉलर के भारतीय अनुदान से किया गया। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई एथलीट बन गए। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने कहा है कि अमेरिका चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर सदन की विज एंड मींस समिति की सुनवाई के दौरान समिति के अध्यक्ष जेसन स्मिथ ने कहा कि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की। और भारत पाकिस्तान

0: ये आकाशवाणी है। प्रसारण की प्रतिध्वनियां। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
1: भारत जमीन के किसी टुकड़े का नाम नहीं, बल्कि नाम है तहजीबों और धर्मों के संगम का, अलग अलग रंगों और खुशबुओं के गुलशन का। यहाँ के हर बाशिंदे के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और उमंग से होती है। भोर की ताजगी भरी हवा में चिड़ियों के मधुर कलरव के साथ एक और आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज है आकाशवाणी के कार्यक्रमों के शुभारंभ की।

0: लेकिन आकाशवाणी की यहां तक पहुंचने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। ये उस समय की बात है जब देश में अपना संविधान लागू हुआ था।
1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आरंभ में लिखा है, हम भारत के लोग। आजादी मिलने के बाद संविधान के इन शब्दों ने एक तरफ जहां हमें नया लोकतंत्र दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का अथाह सागर भी। यहां शिक्षा, सामाजिक विकास और स्वावलंबन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी था।
0: इस बीच भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास भी कर रहा था। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 1956 में भारत आए, बाद में उनके दो प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए। हमने सभी का खुले दिल से स्वागत किया।

0: घर आए अतिथि का हमने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर खुले दिल से स्वागत किया, किंतु चीन ने हमारे स्वागत का जवाब 1962 में भारत पर हमला करके दिया। चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया। ये युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला।
1: भारत इस युद्ध के लिए तैयार न था। परिणाम ये हुआ कि भारत के अनेक जवानों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। देशवासियों के दिलों पर इसका गहरा असर हुआ।
0: एक महीने तक चले इस युद्ध के संकट काल में आकाशवाणी ने सैनिकों और आम जनता का मनोबल बढ़ाने का काम किया।

0: देश को एकजुट करने में तो आकाशवाणी के योगदान को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, चाहे 1962 का चीनी आक्रमण हो या 1965, 1971 और 1999 का पाकिस्तान से संघर्ष हो, या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कोविड आपदा। आकाशवाणी की ध्वनि तरंगे डोर बनकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती रही हैं।
1: आकाशवाणी में विभिन्न दायित्वों के साथ साथ आपदा प्रबंधन का लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं,
2: जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी आपदा में आमतौर पर सबसे जो अधिक पहला नुकसान होता है वो ये होता है कि बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाती है तो कई जो हमारे आजकल लोकप्रिय हो चुके भी माध्यम हैं संचार के, वो काम नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया भर में ये बात मानी जाती है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा घट रही होती है उस समय जो सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम ऐसा है जो आपदा के साथ उसमें बचाव, राहत और पुनर्वास के काम में योगदान दे सके तो वो रेडियो ही होता है।
1: 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही का असर पश्चिमी पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पड़ा। आकाशवाणी के प्रसारणों का प्रभाव उत्साहवर्धक था। आकाशवाणी जयपुर में उस दौर में कार्य कर चुकी प्रसारण कर्मी दमयंती कछवाहा बताती हैं।
3: बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने वहाँ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा हुआ था। सन 1971 में पाकिस्तानी सेना और इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बीच चलने वाले प्रतिदिन के युद्ध का वर्णन आकाशवाणी जयपुर से लड़े सूरमा आज जी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7 बजे की न्यूज के बाद प्रसारित होता था। इस कार्यक्रम में पहले दिन के घमासान युद्ध का वर्णन होता था। आकाशवाणी जयपुर पर श्री गणपतलाल जी डांगी राजस्थानी संगीत के कंपोजर थे। कार्यक्रम संगीतमय और बहुत कर्णप्रिय होता था। डांगी जी स्वयं ही कविता के रूप में इसकी रचना करते थे। मुख्य स्वर डांगी जी का होता था। इनका साथ श्रीमती रंजना चौधरी देती थी। ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था। लोग बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते थे, अर्थात लड़े सूरमा आज।
4: आकाशवाणी संवाददाता अजीत सिंह भारत पाक युद्ध के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुए शिमला समझौते के समय शिमला में थे। वे बताते हैं,
5: शिमला समझौते के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ आए थे। इसकी कवरेज भी एक अनूठा अनुभव था। मैंने देखा कि रेडियो पत्रकार होने के नाते मैं ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह बन रहा था। यह सिलसिला बहुत दूर जाने वाला था।
4: एक रेडियो श्रोता सुशील बुडाकोटी ने आकाशवाणी से प्रसारित युद्ध समाचारों के बारे में बताया।
6: राष्ट्रीय स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक शीघ्र सशक्त और प्रामाणिक समाचारों सूचनाओं के लिए एकमात्र विकल्प होता था रेडियो। 1965 में भारत पाकिस्तान के दूसरे युद्ध में सितंबर माह में रोज रात 8:45 बजे रेडियो के पास लोग जुड़ते यह जानने के लिए कि कश्मीर सीमा पर से बमों को, बंदूकों को और तोपों के कारण न मालूम किस फौज के कितने जवानों की शहादत का समाचार आ जाए।
4: पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती जैसलमेर जिले के सांगड़ गांव के श्रोता मोहन दान चारण ने बताया,
7: 65 का युद्ध देख लो, फिर ये जो 71 का युद्ध कर देख लो, फिर ये कारगिल का युद्ध देख लो, या वर्तमान में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन सब में रेडियो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये जो जैसलमेर की धरती है या बाड़मेर की धरती है, जो राजस्थान का पश्चिम इलाका जो पाकिस्तान बॉर्डर से साथ लगता है, यहाँ के लोगों ने हमेशा अपना बलिदान दिया है।

0: सुविधा या उसका जो एक तारतम्य, किसी भी चीज को अपन जो उत्सुकता रहती है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर था, तो जो बॉर्डर इलाका में जहां टावर नहीं है या जहां नेटवर्क नहीं है, तो वहां पर रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उससे हमें यह भी प्राप्त होता था, 1964 की लड़ाई हो, कारगिल युद्ध हो, तो यहाँ के अनेक लोग सेनाओं में भी, बॉर्डर पास में कब कहां से कौन आ जाए, तो इन सारी चीजों की जानकारी हमें रेडियो से प्राप्त होती है।
1: केवल 1962 के चीन आक्रमण के कारण ही नहीं, बल्कि 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के कारण भी देश में अनाज की कमी हो गई थी। उस समय देश में अमेरिका से अनाज का आयात किया जाता था।
2: देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से अन्न बचाने का आग्रह किया। उनके इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने। उस समय शास्त्री जी ने कहा था,
3: ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जोर बोलिए जोर से, क्या धीमी आवाज से बोलते हैं आप, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
2: प्रधानमंत्री के इस प्रेरक संदेश का देशवासियों पर गहरा असर हुआ। 70 के दशक में अनाज की कमी से उबरने का पुरुषार्थ जगाया कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन ने। उनकी हरित क्रांति की पुकार का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर

0: देश में हरित क्रांति लाने में आकाशवाणी का योगदान भी स्मरणीय है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे आकाशवाणी के खेती गृहस्थी कार्यक्रम के योगदान को बता रहे हैं फार्म रेडियो रिपोर्टर से निदेशक पद तक कार्य कर चुके सेवानिवृत्त बीसी पवार।
1: खेती और गृहस्थी यानी खेती और घर F&H यूनिट की स्थापना की गई। शुरू में इसको कुछ चयनित केंद्रों पर यानी 10 केंद्रों पर इसका आरंभ किया गया। विधिवत रूप से कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी कृषि में उपयोग बढ़ाने के लिए जोर दिया गया यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो दाता थे MS स्वामीनाथन 1966 के अंदर इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए काफी कार्य किया गया। MS स्वामीनाथन को इसका जनक मानते हैं और उन्हीं के कारण कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही हमारे साथ देश के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन जो वर्गीस कुरियन 1970 के अंदर, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अरुण कृष्णन, और इसी तरह से गोल्डन रिवॉल्यूशन इसको हम कह सकते हैं फ्रूट प्रोडक्शन के ऊपर, विशेष रूप से एप्पल के ऊपर क्रांति लाई गई, और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड, और इसी के साथ साथ जैसे राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के

0: जो इस तरह से क्रांति आई है कृषि के क्षेत्र में, तो वो रेडियो का ही इसमें विशेष योगदान रहा है। जहां हम प्रसारण की बात करते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध की जानकारी की बात करते हैं, प्रसारण को उसको देखते हुए 1985 तक देश में FNH की 64 यूनिट का विस्तार किया गया, और ग्रामीण प्रसारण की उपयोगिता को देखते हुए सभी जितने भी हमारे देश में केंद्र थे वहाँ FNH यूनिट की स्थापना की गई। खेती और गृहस्थी जो कार्यक्रम है, उन्होंने देखा कि कृषि का ही विकास नहीं, जब तक सभी रूप से विकास नहीं होता, यानी महिलाओं की हम बात नहीं करें तो भी अधूरा है, और ग्रामीण बच्चों की बात नहीं करें तो भी अधूरा है, ग्रामीण युवाओं के लिए अलग, तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग है जो जो कार्यक्रम शुरू किया गया है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में देश में कभी अलग अलग कैरेक्टर दिया गया, कहीं जो भूम जी का रूप के नाम से, तो कहीं चौधरी जी के नाम से, कहीं मास्टर जी के नाम से, ताकि जो किसान है वो उसको देखे जो हमारा जो करेक्टर है, हमारे बीच के ही व्यक्ति है, हमारे साथ में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हमारी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो ज्यादा प्रभावी रहा है। कृषि का जैसे कार्यक्रम जहाँ भी होता है प्रसारण होता है, लैब टू लैंड, जो किसानों लैब के अंदर अनुसंधान होता है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए ग्रामीण प्रोग्राम का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। लैब टू लैंड, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसको लैंड तक, किसान तक पहुंचाने के लिए यही कार्यक्रम है जो कि ज्यादा प्रभावी रहा है।
1: भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उन रेडियो प्रसारकों का योगदान समाज भूल गया जिनकी बातें किसानों को प्रभावित करती रही थीं। बलबीर सिंह सहरावत उर्फ मुंशी भाई बताते हैं।
2: सन 1970 से लेकर लगभग 44 साल तक मैं अपने ग्राम संसार कार्यक्रम, कृषि जगत कार्यक्रम, कृषि चर्चा, इन कार्यक्रमों के जरिए आप के साथ में बातचीत हमारी होती रही है। और इसमें जो नई जानकारी आप लोगों के संबंध में हमारे पास पहुंचती थी, वो वैज्ञानिकों के जरिए, किसी विभाग के जरिए, वो हम आप तक पहुंचाते थे। और रेडियो ही एक ऐसा साधन रहा है, जब कुछ भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं, रेडियो ही एक ऐसा साधन था जो आप लोगों तक नई नई जानकारी पहुंचाता था।
3: किसानों को उन्हीं की भाषा में वैज्ञानिक खोजों की जानकारी देने वाले आकाशवाणी के खेती बाड़ी और किसानों से संबंधित कार्यक्रमों को श्रोता भूले नहीं होंगे। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले इन पात्रों को रेडियो की भाषा में स्टॉक कैरेक्टर कहा जाता है। आकाशवाणी जोधपुर से खेती बाड़ी कार्यक्रम के पूर्व सूत्रधार गोविंद त्रिवेदी उर्फ भोल जी के प्रसारण का एक नमूना सुनिए।
4: राम राम सा नमस्कार आप सब ने भोल जी रा घणे मान राम राम नमस्कार। ओ हो, देखो तावड़ तपे कोई तपे जन बट्टी होगी है अपना राजस्थान, खासकर ना अपना आथुना राजस्थान की अगर बात करो, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर अड्डे तो कोई जाने लाए पड़े है, बस मत पूछो। तो विद्वान लोग जी यार हाथ उठू बैठो मैं वे कई बार तरकीब बतावे कि पानी बचत की कर सकता हूँ, जो कम पानी में हिनान करनी है, फिजूल पानी ढोलना कटे, जो कोई गाड़ियां धोए है, कोई लुगे लुके है पानी आवे देना, आंगना धोना कटे, जो नल खुलो है तो खुलो छोड़ देने, उठे आप रे आगे जाप रहा तो वो पानी बचत नहीं हो, पानी आप नल देखो जटी बंद कर देना, कर दे यूं पानी छुड़ते हुए तो एड़ा एड़ा छोटे छोटे उपाय जीका है भाई, अगर करो तो अपने पनीर बचत री उपाय हो सके भाई, जीका जानकार आदमी मार तो बहुत बुद्धि है जड़ी है। तो मैं तो देखो सा मारी हाथों आ जाऊं पतो करूं कि भाई सोलर प्लांट लगाना है मारे, आप ही पतो कर फटोफट सरकारी इन योजना फायदा उठाओ, ठीक है सा राम राम नमस्कार मोहन जोश हमारा।
1: कुछ अन्य प्रसिद्ध स्टॉक कैरेक्टर यानी पात्रों के नाम इस प्रकार हैं जो उस दौर में लोकप्रिय रहे। जोधपुर के नारायण सिंह भाटी उर्फ भोम जी, पटना के रामेश्वर सिंह उर्फ लोहा सिंह, लखनऊ के चंद्रभूषण द्विवेदी उर्फ रमई काका, रायपुर के बिसाऊ भैया, जालंधर के जानकी भारद्वाज उर्फ ठंडूराम, जयपुर के नंदलाल शर्मा उर्फ गुणी उस्ताद, इंदौर के नंदाजी भैराजी और उदयपुर के इंद्र प्रकाश श्रीमाली उर्फ पटेल जी।
3: ग्रामीण श्रोताओं को प्रसारण के इन चरित्रों पर इतना विश्वास था कि ये लोग प्रसारण के दौरान उन्हें जो भी जानकारी देते थे सभी लोग उसे सच मानकर उसका ही अनुसरण करते थे। ये चरित्र केवल रेडियो के प्रसारक ही नहीं बल्कि श्रोताओं के हितैषी मित्र भी थे। जाने माने विज्ञान कवि यशपाल यश अपने ही अंदाज में रेडियो की यादें ताजा करते हुए ग्रामीणों के लिए इसकी प्रासंगिकता बताते हैं।
5: आकाशवाणी को हुए पूरे 90 साल, आई अपने गांव की याद मुझे चौपाल। बचपन के दिन गांव के सीधे सादे नेक, और था पूरे ही गांव में सिर्फ रेडियो एक। सन 1965 में छिड़ गई हिंद पाक में जंग, सबके ऊपर था मुखर देश प्रेम का रंग। कितने हुए शहीद या किसने तोड़ा टैंक, गांवों में चर्चित हुए सेनाओं के रैंक। शाम और दोपहर को जब खबरों का वक्त, मेले सा माहौल था भरे खाट और तख्त। और जैसे जैसे हम बढ़े कुछ यौवन की ओर, जैसे जैसे हम बढ़े कुछ यौवन की ओर, ट्रांजिस्टर करने लगे गली गली में शोर। और घर घर में बजने लगा फिल्मों का संगीत, विविध भारती से हुई हर पीढ़ी को प्रीत। हॉकी हो या हो क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल, सुना रहा था रेडियो आंखों देखा हाल। और कैसेट प्लेयर का नया फिर आया एक दौर, कैसेट प्लेयर का नया फिर आया एक दौर, गीत गजल चुनकर सुनो चुनकर लता किशोर। और टीवी को घर में मिला कोना सबसे खास, लगा रेडियो हो गया बस कल का इतिहास। लेकिन जो बदलाव को कर लेते स्वीकार, वो जीवन के जंग में नहीं मानते हार। FM चैनल आ गए बदल गया सब सीन, और लगा कार में स्टीरियो समा हुआ रंगीन। पुनः रेडियो हो गया निज गौरव को प्राप्त, PMB करते यही अपने मन की बात। PMB कहते यही अपने मन की बात, PMB कहते यही अपने मन की बात।
3: भारतीय जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदिकाल से रहा है, किंतु परिस्थितिवश एक समय ऐसा भी आया जब समाज अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंस गया।
1: समाज को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर विज्ञान के प्रकाश में लाने का कार्य किया आकाशवाणी ने। बालकों, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रसारित इसके विभिन्न कार्यक्रमों में ज्ञान और विज्ञान की बातें प्रसारित की गईं। आकाशवाणी में विज्ञान प्रसार अधिकारी से लेकर अपर महानिदेशक तक प्रसारण की पूरी व्यवस्था की जानकार अपर्णा वैश बताती हैं।
6: व्यापक जन चेतना की महती आवश्यकता देखते हुए देश के शीर्षस्थ जन प्रसारक आकाशवाणी ने यह बीड़ा उठाया। 70 के दशक में जन जन तक वैज्ञानिक चेतना और तार्किक विमर्श के प्रसार के लिए नियोजित तरीके से विज्ञान कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। प्रमुख उद्देश्य था लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो। चल रेडियो का जमाना आ गया था जब ट्रांजिस्टर के जरिए रेडियो की आवाज घर, खेत, दुकान और सड़क तक पहुंच रही थी। विज्ञान प्रसारण का मकसद नई खोजों, नए प्रयोगों, नई उपलब्धियों की जानकारी से इतर हर भारतीय की सोच को प्रभावित करना था, अंधविश्वासों को खंडित करना था। जो रूढ़ियां समाज में चली आ रही थी उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार करने के पहले उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना था, सवाल पूछने की आदत को प्रोत्साहित करना था, प्रयोग और निरीक्षण के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचने की पद्धति को बढ़ावा देना था। देश की अनुसंधान शालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों से आम जनता का परिचय रेडियो के माध्यम से कराना एक महत्वपूर्ण कार्य था। सरल भाषा में विभिन्न अनुसंधानों की जानकारी देने का उद्देश्य था यह बताना कि इन खोजों के जन सरोकार हैं।
3: आपको याद होगा 3 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोयुज T-11 के माध्यम से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। वे 7 दिन 21 घंटे

0: और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राकेश शर्मा से बात की।
1: स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
2: जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा।

0: उपलब्धियों का आसमान बढ़ता गया। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद जून 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियोम मिशन में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला।
1: और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की, जिसे आकाशवाणी ने सजीव प्रसारित किया। उसका एक अंश आप भी सुनिए।
2: अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या है आपको?
3: प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती, फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं।

कार्यक्रम के अगले अंक में आकाशवाणी की 90 सालों की गौरवशाली यात्रा के ऐसे ही कुछ और ध्वजवाहकों की जानकारी दी जाएगी। तब तक ऐसी सभी विद्वान प्रतिभाओं को नमन जिन्होंने आकाशवाणी को जन जन के दिलों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

प्रसारण की प्रतिध्वनियाँ। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that instead of seeking employment, now they are giving employment. So this has really pulled the Gen Z, the new generation, into the fold of this MSME ecosystem. And I feel the government's proactive policies have been a big enabler in this direction.
1: So agar hum entrepreneurship ki baat kare and we talk about MSMEs in that regard, Bharat Khera ji, how do you see the role of human resources and finance, especially trade finance?
0: आप देखें, किसी भी एंटरप्राइज के लिए सबसे क्रिटिकल जो पेन पॉइंट रहा है वो रहा है एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप और इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज टू इक्विटी. सो प्रोबेबली दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस. एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़ करके आ सकें. और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है. इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है. पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेस में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं. तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेस के लिए. जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से.
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोज स्टार्टअप वेंचर्स, दे आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. अलोंग विद दैट, बैंकिंग का क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप एंटरप्राइजेस?
0: देखिए, बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है पर्टिकुलरली फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट. बैंक्स आर जनरली इंसिस्टेंट ऑन कोलैटरल्स व्हेनेवर समबडी सीक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक. So banks normally are cautious that it should not become a non-performing asset tomorrow. The money should not be wasted away. So that is the reason why they exercise due diligence to make sure that they are loaning it to the right party and for a right project. So they usually insist on taking a collateral also. Now, these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral. It's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem, for them, it generates confidence because the government is backing it. So this has made a significant and transformational impact, I would say.
1: A business requires human resources. You need skilled labor. You also require top management, middle-level management who know what they are doing with skilled labor itself. How do you see Skill India playing a very important role across sectors where the opportunity has now come for labor-intensive industries with businesses weaning away from China and now to South Asia?
0: You know, as we have moved from having labor-intensive industries like textiles, auto, electronics, towards those sectors which are the new technology sectors, like electric vehicles, for example, robotics, we have use of automation in almost all sectors, health, advanced healthcare. So in these sectors, there is a different kind of skill set that is required from the young generation. And that is where Skill India has been a very important critical enabler. And besides Skill India, there are skill development schemes and programs which are being operated by various other ministries of the government. And government has made a conscious effort to ensure convergence among all these schemes. So, in fact, even Ministry of MSME has a very important role to play in developing skills, particularly industry-grade training. And we have technology centers located pan-India, which are running these courses for from 6 weeks to 6 months, sometimes even for a year. And they provide industry-grade training to the young generation. It offers them good opportunities of placement also thereafter.
1: ने भी देखा है कि काफी परिवर्तन आया है इन द लॉ व्हेन इट डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज. इफ यू लुक एट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द न्यू इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस फॉर इंस्टेंस, यू हैव रिविजन ऑफ द मिनिमम रेट फॉर इंस्टेंस, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज अप एंड द एंटरप्राइज इज पेइंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉई

का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 11:46 तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। गीत जो है उसे संगीत पद किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है याराना। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

11:51 और 2 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। और अब आप सुनेंगे शैलेंद्र की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम है बॉबी।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत आप जो सुनेंगे वो होगा आरती मुखर्जी की आवाज़ में, और गुलजार का लिखा ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है मासूम। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दें इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 17,800 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा लोगों को संतुलित खाद के इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत के प्रबंधन और खेती के वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता को बेहतर बनाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts. Accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city.

वक्त हुआ है 12:10, वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मोहब्बत की दास्तान कोई किताब का किस्सा नहीं होती, ये तो दिल की उन धड़कनों में लिखी जाती है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। कभी एक मुस्कान से शुरुआत होती है, कभी एक नजर से, और फिर धीरे धीरे कोई अनजाना शख्स जिंदगी का सबसे अपना बन जाता है। इस दास्तान में खुशी के रंग भी होते हैं, इंतजार की रातें भी, मिलने की खुशबू भी और बिछड़ने का दर्द भी। कभी दिल उम्मीदों के लिए जलता है तो कभी यादों की चादर ओढ़कर चुपचाप बैठ जाता है। मगर सच्ची मोहब्बत की खूबी यही है कि वो हर हाल में दिल को रोशन रखती है।

ना खुदा फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। तुम्हारी पलकों की चिलमन में क्या छुपा है, सितारों जैसा कोई राज है क्या? जब भी नजरें उठती हैं तो लगता है जैसे रात का आसमान झिलमिला उठा हो। उन झुकी हुई पलकों के पीछे शायद कोई अनकहा ख्वाब बसा है, या फिर किसी के लिए संजोया हुआ एक मासूम सा एहसास। जो भी है, इतना जरूर है कि उसकी चमक सितारों से कम नहीं।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम हूं,

कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिव हरी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे ख्यालों की रह गुजर से देखिए वो गुजर रहे हैं, जैसे किसी खामोश शाम में यादों के काफिले उतर रहे हों। ना कोई आहट ना कोई शोर, फिर भी दिल की हर धड़कन उनकी मौजूदगी का एहसास कर रही है। वो सामने नहीं मगर ख्वाबों और तसव्वुर की दुनिया में आज भी उतने ही करीब हैं। आपने सुना फिल्म ये इश्क नहीं आसान, फिल्म का गाना अनवर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, मोहब्बत के हर सबक को पढ़ा मगर हासिल कुछ अधूरा है। जिन्हें दिल की किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय समझा, वक्त ने बताया कि वो बस एक खूबसूरत फसाना था। फिर भी इस दिल को शिकायत नहीं, क्योंकि प्यार का एहसास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है।

सागर फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। लहरों का शोर, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ नीला पानी भी तुम्हारी कमी को भर नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे इस विशाल दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं। हर आती जाती लहर तुम्हारी याद लेकर आती है और हर ढलती शाम तुम्हारे इंतजार को और गहरा कर जाती है। तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है।

लावा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में आपने गीत सुना। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 47 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद गीत सुहाने आप सुनेंगे मेरे साथ। और फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण

0: के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
2: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

ससुराल फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने पुराने गाने सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू, मोहब्बत की मासूमियत और जिंदगी की सादगी बसी होती है। जब भी कोई पुराना गाना कानों में पड़ता है, दिल अनायास ही उन दिनों की ओर लौट जाता है, जहां छोटी छोटी खुशियों में भी एक अलग ही सुकून था। इन गीतों की मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर नए एहसास जगा देती हैं।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। सुहाने पुराने गाने समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। उनकी धुनों में एक ऐसा जादू होता है जो बरसों बाद भी दिल को उसी तरह छू जाता है जैसे पहली बार जब उसे सुना था। कभी वो किसी भूली बिसरी मोहब्बत की याद दिलाते हैं तो कभी जीवन के उन सुनहरे पलों को जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं।

आखिरी खत फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। छेड़ो कोई दास्तान, कोई ऐसा फसाना सुनाओ जो दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे। कोई ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत की खुशबू हो, इंतजार की कसक हो और मिलन की मीठी सी मुस्कान भी। ऐसी दास्तान जो बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दे और यादों के चिराग एक एक करके रोशन कर दे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। एक पल की उस मासूम सी निगाह ने दिल पर ऐसा असर किया कि फिर खुद पर हमारा कोई इख्तियार ना रहा, न कोई वादा हुआ न कोई इजहार, मगर तेरी आंखों ने जो बात कही उसे दिल ने उम्र भर के लिए अपना लिया। उस एक नजर में जाने कैसा जादू था कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी लगने लगी। हर तरफ बस तेरा ही ख्याल, तेरी ही तस्वीर और तेरी ही यादों का सिलसिला नजर आने लगा। दिल ने लाख कोशिश की संभलने की, मगर तेरी निगाहों के तीर इतने गहरे उतर चुके थे कि बच निकलने की कोई राह न बची।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।

चंगेज खान फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया हंसराज बहल ने।

बाबरे नैन फिल्म का गाना आपने सुना राजकुमारी की आवाज में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जब शाम ढलती है और हल्की हल्की हवा चलती है, तब कोई पुराना गीत सुनना ऐसा लगता है जैसे यादों की किताब का कोई प्रिय पन्ना फिर से खुल गया हो। उन मधुर स्वरों में बीते दिनों की हंसी, कुछ अधूरे ख्वाब और कुछ अनकहे अफसाने धीरे धीरे दिल में उतरने लगते हैं।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये पुराने गाने हर दौर में हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर इन गीतों की मिठास और इनका असर हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है।

ठोकर फिल्म का गाना आपने सुना तलत की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ए गमे दिल, अगर तू ना होता तो शायद मोहब्बत की गहराई का एहसास भी ना होता। दर्द ही तो है जो खुशी की कीमत समझता है, और जुदाई ही तो है जो मिलन की अहमियत बढ़ाती है। इसलिए अब तुझसे लड़ना नहीं, तुझे समझना सीख लिया है, क्योंकि जिंदगी की हर खूबसूरत दास्तान में थोड़ा सा गम भी शामिल होता है।

छाया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत और लता की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। वक्त हुआ है 1:55, वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकूर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकूर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and well.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

लहू के दो रंग फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार की आवाज में फारूख कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। गीतों से भरी ये रात सुरमई है, हवा में जैसे किसी पुराने प्यार की खुशबू घुली हुई है। चांद की चांदनी खामोशी के पन्नों पर उतर आई है और मन के किसी कोने में भोली बिसरी यादों की महफिल सज गई है। ऐसे में हर धुन दिल को छू जाती है, हर गीत कोई अनकही कहानी कह जाता है।

अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। चांद मुस्कुरा कर बोला, मेरी चांदनी में चमक तो बहुत है पर तेरे यार जैसी कशिश नहीं। सितारे लाखों हैं इस आसमान में मगर उसके जैसा नूर किसी में नहीं।

कभी कभी फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुम्हें मेरी जिंदगी की हर अधूरी दुआ का जवाब बनाकर रचा गया हो, जैसे तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबहों की रोशनी हो और तुम्हारा साथ मेरी शामों का सुकून। तुम्हें देखकर यूं लगता है कि किस्मत ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा होगा, वरना किसी अजनबी का यूं दिल की धड़कनों में बस जाना इतना आसान कहाँ होता है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:36 और ठीक 8 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जी हां, रात सुरमई है, चांदनी नरम नरम सी बिखरी हुई है, हवाओं में खामोश एक सुंदर सा संगीत खुला हुआ है और सितारे आसमान पर जैसे कोई प्रेम गीत लिख रहे हों। ऐसे सुहाने पल में दिल बस यही चाहता है कि कोई अपना पास बैठे, कुछ न कहे और फिर भी हर बात समझ में आ जाए।

तेरी बातों में वो सुकून है जो बिखरे हुए ख्यालों को भी सजा देता है। तेरे साथ चलते हुए यूं लगता है मानो हर रास्ता मंजिल बन गया हो और हर लम्हा एक खूबसूरत याद। दुनिया की भीड़ में भी दिल यही कहता है, तेरा साथ है तो जिंदगी कितनी हसीन है।

जांबाज फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और सपना की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कितना प्यारा है ये साथ, जैसे ठहरी हुई शाम को कोई मधुर सहारा मिल गया हो।

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती जनाब, ये तो वो आईना है जिसमें हर कोई खुद को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि अल्फाज में सच्चाई हो, वरना बढ़ा चढ़ाकर कई कही गई बातें दिल तक नहीं पहुंचती।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे

सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को

0: अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Singh has Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath on Mr. Modi said, "This amazing success associated with the Ek Ped Maa Ke Naam campaign shows that today people

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और एक प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चे प्यार की दुआएं अक्सर रात की तन्हाइयों में निकलती हैं, और शायद ऊपर वाला भी उन्हें मुस्कुराकर सुनता है।

जब कोई दिल में उतर जाए, जब कोई दिल में उतर जाए तो फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है, और कब वो दिल में बस जाते हैं पता ही नहीं चलता।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं बस एक पुकार से महसूस होता है, जब दिल किसी अपने की आवाज सुन के बेचैन हो जाए, तब हर खामोशी भी

मोहब्बत, मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर सपना हकीकत जैसा लगने लगता है। दिल यही दुआ करता है कि हर प्रेम कहानी को उसका खूबसूरत मुकाम मिले और हर इंतजार खुशियों में बदल जाए।

जब दिल किसी की चाहत में खो जाए, जब दिल किसी की चाहत में खो जाए तो हर रास्ता उसी की ओर जाता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही है जब किसी की मुस्कान में अपनी सारी खुशियां नजर आने लगे।

आज की सुहानी रात में प्यार की उन मधुर भावनाओं को महसूस कीजिए, जहाँ एक दिल पुकारता है और दूसरा दिल उसकी धड़कनों में जवाब देता है।

और इन्हीं प्यार भरी लाइनों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। जल्द हाजिर होंगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे मैं ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर

0: बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने के 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4 विधायकों का न्यूनतम समर्थन नहीं है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने के 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Mr. Modi said, "On this amazing success associated with the Ek Ped Ma Ke Naam campaign shows that today people are completely committed to environmental protection." He expressed confidence that such initiatives will be very helpful in realizing the green future of Uttar Pradesh as well as the entire country. He added that it will inspire every countryman. Sharing a social media post of Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, who informed the people of Assam planted over 1.02 crore plants on Environment Day, the Prime Minister congratulated the people of Assam, especially the Nari Shakti of the state, for taking the lead in this effort aimed at building a sustainable planet. He said it's a commendable feat.

एक बार फिर से हाजिर हो लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की। इस प्यारे से गीत के साथ, गीत है फिल्म रानी रूपमती से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार एस एन त्रिपाठी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। अगला गीत सुनते हैं फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। गीतकार भरत व्यास, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दीवाना से, अलका याग्निक, कुमार सानू और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार जतिन ललित।

और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत स्वदेश फिल्म से, उदित नारायण हरिहरन कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

जाने से पहले बस यही कहूंगी कि 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर भोर सुहानी। आप सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में आयोजित किए गए प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देशभर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुआंग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम

में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने की 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघारा में कल खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम को सेमीफाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और एक बार फिर से हाजिर हो लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ। भोर की पहली किरण जब धरती को सुनहरी चादर ओढ़ती है तब मन भी नई उम्मीदों की धुन गुनगुनाने लगता है। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

भोर की पहली किरण हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे मन और विचारों में होती है। जब मन दृढ़ हो, वाणी मधुर हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तब हर कठिन राह भी आसान लगती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम चल रहा है भोर सुहानी। कोयल की मधुर कूक प्रकृति का संदेश है कि अपने जीवन में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता के स्वर खोलिए। मीठे बोल केवल दूसरों का ही नहीं, अपना जीवन भी सुंदर बना देते हैं।